सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। सुबह के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, देते हैं हम आपको अब हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। अक्षय निधि कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:10 से। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं अक्षय निधि कार्यक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। आज आप सुनेंगे सूक्त 159। भक्ति संगीत कार्यक्रम लेकर आएंगे आपके लिए 7:20 से। 8:00 आप सुनेंगे हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग। ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा दादा भाई नौरजी की पुण्यतिथि पर। 8:30 में आज बात करेंगे भूमि मिट्टी और प्रकृति की सुबह 8:30 पर। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे 6:30 से। सुबह 9:00 होगा कार्यक्रम योग संवाद, जिसमें आज आप सुनेंगे योग वाशिष्ठ काल का प्रभाव और जीवन की अनिव्यतता। 9:00 में आज आप सुनेंगे शिव भाई गुप्ता का निमाड़ी गायन। प्रसारण समय होगा 9:30 से। दिन में 10:00 सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें हम आपको देंगे भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक कार्य गतिविधियों की जानकारी। कार्यक्रम आजाद हिंद, इसे आप सुनेंगे 10:30 से। आज का आकर्षण होगा अमरचंद भाटिया। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दिन में 11:00 से। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। विषय विशेषज्ञ होंगी त्रिषा कौशिक। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आज इस कार्यक्रम का 85वां भाग हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।

0: लेकिन फिर भी मुझे ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है, और तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी आसानी से ये मजबूत ताला कैसे खोल देती हो? चाबी ने मुस्कुराकर ताले से कहा कि तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं ताले के अंदर तक जाती हूँ, उसके अंतर मन को छूती हूँ और घूमकर ताले से निवेदन करती हूँ और ताला खुल जाया करता है। कितनी गूढ़ बात कही है चाबी ने। मैं ताले के अंतर मन को छूती हूँ। हम जब तक लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर मन को नहीं छुएंगे, तब तक उनसे प्यार और आदर नहीं पाया जा सकता। कई बार बड़े बड़े काम शक्ति से नहीं बल्कि प्यार या आदर से ही हो जाते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 159 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं द्वावा पृथ्वी, छंद है जगती।
5: प्रद्यावा यज्ञैः पृथ्वी ऋता वृधा मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसः देवेभिर् ये देवपुत्रे सुदंस सेस्था धिया वार्याणि प्रभूषतः। देवपुत्रियां द्यावा पृथ्वी और अन्य देव शक्तियां मिलकर अपने श्रेष्ठ कर्मों और विचार प्रेरणाओं से सबको श्रेष्ठतम ऐश्वर्यों से विभूषित करती हैं। यज्ञीय भावनाओं के पोषक, यज्ञीय विचारों के प्रेरक पृथ्वी और द्युलोक की हम स्तुति मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। उत मन्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्ध वीमभिः सुरेतसा पितरा भूम चक्र तुरुरु प्रजाया अमृतम वरीमभिः। हम विद्वेष रहित पृथ्वी और आकाश के रूप में माता पिता के सबल एवं महान मन को स्तुति द्वारा प्रसन्न करते हैं। पराक्रमशील माता और पिता अपनी श्रेष्ठ सामर्थ्य से प्रजाओं की रक्षा करते हुए उन्हें प्रगतिशील बनाते हैं। ये उनके सर्वोत्तम कार्य प्रशंसनीय है। ते सूनवः स्वपसः सुदंससो मही जग्युर्मातरा पूर्वचित्तये स्थातुश्च सत्यं जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः। श्रेष्ठ कर्मशील तथा गुण संपन्न संताने पृथ्वी द्यावा रूप माता पिता की प्रारंभिक विशेषताओं से परिचित हैं। द्युलोक एवं पृथ्वीलोक दोनों स्थावर और जंगम सभी विद्रोह रहित संतानों का भली प्रकार से संरक्षण करते हुए अपने सत्य रूप श्रेष्ठ पद को सुशोभित करते हैं। ते माइनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना

0: समोकसा नव्यन्नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः। द्युलोक रूप आकाश गंगा के बीच विद्यमान सूर्य की क्रांतदर्शी ज्ञान युक्त किरणें नित्य नए नए ताने बाने बुनती हैं। ये किरणें सहोदर बहिनों के साथ एक स्थान से उत्पन्न होती हैं, परस्पर सहयोग भावना से एक ही घर में निवास करने वाली ये किरणें द्यावा पृथ्वी को नाप लेती हैं। तद्राधो अद्य सवितुर्वरेण्यम् वयम् देवस्य प्रसवे मनामहे अस्मभ्यम् द्यावा पृथ्वी सुचेतुना रयिम् धत्तम् वसुमन्तम् शतग्विनम्। हम आज श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाह के लिए संपूर्ण विश्व के उत्पादक प्रेरक सूर्य देव से श्रेष्ठ ऐश्वर्यों की कामना करते हैं। द्यावा पृथ्वी अपनी उत्तम प्रेरणाओं से हमारे लिए श्रेष्ठ आवास तथा पशुधन प्रदान करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 159 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। आप समय मिला सकते हैं, 7:14 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

कलौ केशव कीर्तनात, अर्थात कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही फल मिल जाता है। भागवत पुराण कहता है कि जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से मिलता था, वो कलयुग में हरि कीर्तन से मिल जाता है। मन भटके तो भी हमारी जीभ प्रभु का नाम ले सकती है।

प्रेम बदों प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, अर्थात प्रेम इतना शक्तिशाली है कि पत्थर से भी भगवान को निकाल दे।

भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने कितना सताया, किंतु उनका नाम जप नहीं रुका, क्योंकि उनके मन का दरवाजा अंदर से बंद था, जहां पर सिर्फ भक्ति थी, बाहर की दुनिया नहीं।

रेडियो आजाद हिंद से भक्ति संगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली और अंतिम भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, वतन का राग। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा दादा धर्माधिकारी की, जिनके बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि दादा के बारे में क्या कहा जाए। एक छोटे से बच्चे से कोई पूछे कि उसकी माँ कैसी है, तो हो सकता है उसकी माँ बहुत सुंदर हो, लेकिन बच्चा ये नहीं कहेगा। हो सकता है उसकी माँ विद्वान हो, लेकिन बच्चा ये भी नहीं कहेगा। वो तो बस यही कहेगा कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। दादा के बारे में भी यही कह सकेंगे कि दादा बहुत प्रेमी हैं। दादा धर्माधिकारी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक थे। मानव मात्र के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें सबके हृदय में बिठा दिया। उन्हें गांधी युग का प्रकाश पुंज कहा गया, तो वहीं पत्रकारों ने उन्हें लोकतंत्र का शिल्पी माना। उनका जन्म 18 जून 1899 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलतापी यानी मुलताई नामक स्थान पर हुआ था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम मूलतापी पड़ा और कालांतर में इसे मुलताई कहा जाने लगा। दादा धर्माधिकारी का मूल नाम शंकर त्रयंबक धर्माधिकारी था, लेकिन आगे चलकर वो दादा धर्माधिकारी के नाम से ही पुकारे गए। उनका बचपन होशंगाबाद जिले में बीता। बचपन से ही पढ़ने लिखने में उनकी गहरी रुचि थी। वो कहा भी करते थे कि उन्होंने अनेक किताबें पढ़ी। इस अध्ययन वृत्ति से ही उन्हें व्यापक संस्कार मिले और भौगोलिक सीमाओं से परे उनके मन में मानवीय प्रेम जागृत हुआ। उन्हें हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वो कहा करते थे कि मुझे मनुष्य प्रिय हैं, इसीलिए मनुष्यों की सारी भाषाएं मुझे प्रिय हैं। वो अपने हॉस्टल के अधीक्षक कुमारेंद्र चटर्जी से अत्यधिक प्रभावित थे, जो उन्हें इतिहास और भूगोल पढ़ाया करते थे। अध्यापन के दौरान ही वो महान देशभक्तों के त्याग और साहस की चर्चा भी करते, जिसका गहरा प्रभाव दादा धर्माधिकारी के मन पर पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब दादा धर्माधिकारी ने उनके विषय में काफी कुछ पढ़ लिया था। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेद से जो विषमता फैली हुई थी, उससे दादा धर्माधिकारी बहुत आहत थे और उन्होंने महसूस किया कि ये विषमता गांधी जी को भी बहुत अखरती है। यही कारण है कि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने लगे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उस समय दादा धर्माधिकारी नागपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांधी जी ने उस समय कहा कि असहयोग बुराई के साथ हो, न कि बुराई करने वाले व्यक्ति या समाज के साथ। जीवन की नीति तो सहयोग की ही हो सकती है। असहयोग नैमित्तिक प्रतिकार का साधन मात्र है और बिना तलवार के भी अपना राज आ सकता है। असहयोग सफल हो सकता है। दादा धर्माधिकारी कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के इन विचारों ने उन्हें इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद वो कभी भी कॉलेज नहीं गए।

दादा धर्माधिकारी को गांधीवादी मूल्यों ने गहरे तक प्रभावित किया था। जब वो सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने युवाओं को संगठित करना आरंभ किया। उन्होंने दो संस्थाओं का गठन किया, एक आर्योतेजक समाज और दूसरा मूलतापी में तप्तेश्वर मंडल। इसके साथ ही वो हस्तलिखित समाचार पत्र भी निकालने लगे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया, तब अपने चुने हुए 78 लोगों के साथ उन्होंने दांडी की ये यात्रा आरंभ की। दादा धर्माधिकारी की ये इच्छा थी कि उन चुने हुए लोगों में गांधी जी उन्हें भी शामिल करें, लेकिन परिस्थितिवश ये संभव नहीं हो सका। तब दादा धर्माधिकारी ने नागपुर में धंतोली पार्क में विद्यार्थियों को भाषण दिया। इस उद्बोधन को सुनकर अनेक विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी और इस आंदोलन में वो कूद पड़े। दादा धर्माधिकारी को अंग्रेजों ने अपने लिए खतरा माना और 29 जुलाई सन 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल में बंद कर दिया। उन्हें एक साल की सजा हुई। 30 के दशक के अंतिम वर्षों में दादा धर्माधिकारी ने काका कालीलकर के साथ मिलकर सर्वोदय मासिक पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला। वो सर्वोदयी समाज के लिए प्रतिबद्ध एक सिपाही की तरह प्रयत्नशील रहे। वो सर्वोदय के एक समर्थ आचार्य और भाष्यकार थे। उनका मानना था कि समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दादा धर्माधिकारी वर्धा में भी रहे। वो गांधी सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी से छूटने के बाद वो मध्य प्रांत असेंबली के सदस्य चुने गए। दरअसल उन दिनों ये विचार जन्मा कि गांधीवादी विचार के कुछ लोगों को भी विधानसभा या संसद में जाना चाहिए, लेकिन दादा धर्माधिकारी ने पहले इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैंने देखा है कि हमारे देश में पहला स्थान लेने वालों की कोई कमी नहीं है, दूसरा स्थान लेने वाले योग्य आदमियों की बहुत कमी है। सत्ता और सम्मान से अलिप्त रहकर सेवा करने वालों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने विचार पूर्वक दूसरा स्थान लेने का निश्चय किया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद गांधी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, ये मेरा निर्णय है, तुम अपनी इच्छा से तो नहीं जा रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, इसे तो मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूं, ऐसे लोगों को तो जरूर जाना चाहिए। बापू के इतना कहने के बाद दादा धर्माधिकारी कुछ कह नहीं सके। वो मध्य प्रांत में 1945 से 1951 तक विधानसभा के सदस्य रहे। दादा धर्माधिकारी संविधान परिषद के सदस्य भी थे। इस तरह संविधान निर्माण में भी उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत किया। वो कहा करते थे कि समाज में परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन आवश्यक है।

दादा धर्माधिकारी ने अपने जीवन का लंबा समय दलितों और महिलाओं के उत्थान में लगाया। वो कहा करते थे कि इस देश का सबसे बड़ा रोग जातीयता है। वो भारतीय समाज को मनुष्य के आधार पर संगठित करना चाहते थे। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो सामंजस्य प्रधान हो। वो वर्ण व्यवस्था को तिलांजलि देते हुए कहते थे कि धर्म तो एक ही है और वो सार्वदेशिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। धर्म का उद्देश्य मनुष्यों को एक दूसरे के साथ संबद्ध करना है, उनका एकत्र धारण करना है। यही प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरीय राज है, यही गांधी जी का राम राज्य है और आदर्शवादियों का आदर्श समाज है। उनका कहना था कि जो मनुष्य को संयुक्त करता है, जोड़ता है, वो धर्म है। जो उन्हें विभक्त करता है वो अधर्म है। यानी समत्व की विद्या और संयोग की कला का नाम ही धर्म है। वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां सब धर्मों का, सब जमातों का, सब जातियों का, यानी जाति धर्म वर्ण निरपेक्ष सामान्य जन का राज होगा। यही उनका संकल्प था और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। स्त्रियों की दशा से उन्हें हमेशा असंतोष रहा। वो कहा करते थे कि हमारे समाज में स्त्री सहधर्मिणी रही है, वो कभी भी मुख्य धर्मिणी नहीं रही। वो सहजीवनी है, जैसे उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ हो ही नहीं। स्त्री की भूमिका सदा गौण और दोयम रही है, जबकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों ने ही धर्म, परंपरा और सदाचार को जीवित रखा है। उनका मानना था कि स्त्रियों के उत्थान से ही देश और समाज का उत्थान संभव है। दादा धर्माधिकारी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनकी संख्या लगभग 2 दर्जन है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया, क्रांति शोधक, गांधी जी की दृष्टि, नए युग की नारी, नागरिक विश्वविद्यालय एक परिकल्पना, मानवनिष्ठ भारतीयता, मैत्री, युवा और क्रांति, लोकतंत्र, विकास और भविष्य, समग्र सर्वोदय दर्शन आदि। उनके लेखन में एक कलाकार सी सौंदर्य दृष्टि और साहित्यिक प्रतिभा दिखाई देती है। अति क्लिष्ट संकल्पनाओं को भी उन्होंने सहज सरल शैली में अभिव्यक्त किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दादा ने अपनी डायरी में लिखा, जहां मेरी मृत्यु हो वहीं या पास की किसी जगह पर मेरे शरीर का दहन किया जाए, शव को कंधे पर न ढोया जाए, जुलूस न हो, भाषण न हो, दहन में चंदन कपूर घी का उपयोग न हो, मेरी मृत्यु पर शोक सभाएं न की जाएं, मेरा कोई स्मारक न हो। इस तरह गांधीवादी विचारों को जीते हुए 1 दिसंबर 1985 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM। कार्यक्रम है प्रकृति की पुकार। मैं हूं धरा।
2: मैं हूं बादल।

0: एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में सोया। उसी बीज के अंतर में था नन्ना पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली जब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही उसने अद्भुत पाया।
1: वाह वाह धरा वाह, कितनी सुंदर कविता है ये, हमने बचपन में शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ी थी।
0: हाँ हाँ बादल, बिल्कुल, लेकिन तब हमने इस कविता को सिर्फ पढ़ा था और रट लिया था, पर इसमें छिपी गूढ़ बातें अब समझ में आई हैं।
1: हाँ हाँ ये सही है कि प्रकृति से हमें वो सभी संसाधन मिलते हैं जो एक तरह से हमारी मदद करते हैं, ये हमें बढ़ने और विकसित करने में हमें सहयोग देते हैं।
0: यदि प्रकृति से बल्कि हमारी इस धरती से हमें वो सब मिलता है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है।
1: धरा, एक कहावत हम अक्सर कहते हैं, मिट्टी के मोल, लेकिन ये कहावत प्रकृति से मिले लाभ के लिए है, पर उस मिट्टी को चरितार्थ नहीं करती।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अगर प्रकृति ने हमें भूमि आदि मिट्टी अगर नहीं दी होती तो हम अपना पेट कैसे भरते, और इस मिट्टी से उपजी हर फसल पृथ्वी के हर प्राणी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए।
0: पृथ्वी से अपनी फसल के लिए ऋग्वेद में कहा है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि खेत में पैदा अनाज का क्रम से बंटवारा किया जाना चाहिए।
1: अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं?
0: हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है।
1: देखो, पहला हक जमीन में 4 उंगल भूमि गेहूं की बालों के नीचे पशुओं का, ठीक है। अब फसल की पहली बाली अग्नि की और गेहूं के दानों को अलग करके मुट्ठी भर दाना पक्षियों का,
0: और इसके बाद आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुंधा हुआ आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की,
1: और घर में तैयार खाने की पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर अपनी थाली, और फिर आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए।
0: हाँ, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि प्रकृति में अन्य जीवों और प्राणियों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है।
1: हाँ, हमारी भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम कभी वानिकी और खनन में करते हैं।
0: बिल्कुल, देखा जाए तो भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग, व्यापार, आना जाना, मनोरंजन सभी कामों में है। तो इतने कामों के इस संसाधन का उपयोग हम ऐसे करें कि इससे नुकसान ना हो।
1: हमें खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है।
0: हाँ, परंतु अब के समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांगें बढ़ रही हैं, और इस कारण वन भूमि और खेती की भूमि का दोहन हो रहा है, इससे प्रकृति की दी हुई नेमत कम होती जा रही है।
1: बिल्कुल सही धरा, और इसके साथ ही कम स्थान में अधिक और जल्दी पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है, इससे हमारी भूमि की प्रकृति नष्ट हो रही है।
0: खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और तूफान सक्रिय हो रहे हैं।
1: पहाड़ी स्थान में भूस्खलन आए दिन होते रहते हैं, ऐसा लंबे समय तक लगातार वर्षा होने के कारण होता है। ये एक ऐसी आपदा है जो चिंता का मुख्य विषय है।
0: भूमि के उपयोग में मानव द्वारा किया गया परिवर्तन, जैसे कृषि भूमि, वन भूमि का कम होना, शहरीकरण के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना है, हमारी भूमि को प्राकृतिक परिदृश्य से बिगाड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही धरा, और ये बदलाव पर्यावरण, समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, भूमि के उपयोग का परिवर्तन से हमारी जैव विविधता भी प्रभावित होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: इसीलिए भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी खतरनाक प्रक्रिया है जिसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं।
0: जी हाँ, देखा जाए तो मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ भूमि में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, और वनस्पति में कमी आती जा रही है।
1: हाँ, तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, वनों की कटाई निरंतर जारी है, सिंचाई के तरीकों का गलत उपयोग, ऐसी गतिविधियाँ मरुस्थलीकरण को बढ़ा रही हैं।
0: शहरीकरण के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत, जिसमें पौष्टिक व भरपूरता होती है, नष्ट होती जा रही है, भूमि बंजर हो रही है।
1: इसका परिणाम फसल का उत्पादन कम होने के कारण खाद्य पदार्थों में कमी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
0: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। बेहतर सिंचाई तकनीक और जल संरक्षण के उपाय अपनाकर हम मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं।
1: हम अपने कार्यकलापों में परिवर्तन कर इस सिकुड़ती भूमि को बचा सकते हैं। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है।
0: ये एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें हमारी उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में मरुस्थल ऐसी विशेषताएं विकसित हो रही हैं, इससे वहाँ के रहवासी घबरा कर पलायन भी कर रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में जमीन की उत्पादन क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी खत्म होती जाती हैं।
0: मरुस्थलीकरण ये न केवल मानवीय जीवन बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित कर रहा है। भूमि के बंजर होने से कृषि भूमि क्षेत्र कम हो रहे हैं।
1: हाँ धरा, यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में खाद्यान्न संकट गंभीर रूप ले सकता है। इससे निपटने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ, भूमि की कमी नदियों के कटाव से प्रभावित होती है, हवा से भी मिट्टी के कटाव पर असर होता है।
1: वनों की कटाई मरुस्थल बढ़ने का प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों और वनस्पतियों को काटा जा रहा है। इस कारण कमल जंगल छोटे होते जा रहे हैं और मरुस्थल का बढ़ावा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
0: और इससे बचने के लिए सबसे पहले वृक्षारोपण तेजी से बढ़ाना है और वनों की कटाई एकदम से रोक दी जानी चाहिए।
1: हाँ, और इसके साथ ही मरुस्थली क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाया जाए, मिट्टी के कटाव को रोका जाए
0: और कृषि कार्यों के अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग को भी रोका जाए। सिंचाई में भी मरुस्थली क्षेत्र के अनुसार काम किया जाए।
1: इसके साथ खनन गतिविधियों को तुरंत आवश्यकता से अधिक न किया जाए।
0: बिल्कुल, इस समस्या पर सबसे जल्दी नियंत्रण तभी हो सकता है जब वृक्षारोपण की दर को तेजी से बढ़ाया जाए, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
1: परंतु देखने में आता है कि संसाधनों की कमी हम मनुष्यों को प्रतिस्पर्धा में घसीटती है और जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो संसाधन अपने आप ही कम से कमतर होते जाते हैं।
0: किसी भी संसाधन का उपयोग हमारे हित में हो या आर्थिक क्रिया के रूप में, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति संभव हो, पर इसकी उपयोगिता हमारे वास्तविक उपयोग से जुड़ी हुई होना चाहिए।
1: नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, अकाल और बाढ़ का प्रकोप बना ही रहेगा। इससे भूमि का दुरुपयोग या वैज्ञानिक तरीकों की अनदेखी विनाश का आमंत्रण है।
0: हाँ, पर ये वातावरण तहरीली की समस्या का अभी भी समाधान हो सकता है, लेकिन तब तक बिना समय गवाए संसाधनों को रोककर हम व्यवस्थित होकर अपनी दिनचर्या और अन्य कार्यों को रोकने में कड़े अनुशासन को अपनाएं।
1: पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित कर उसका सही उपयोग करें। वन क्षेत्र जितने भी बचे हैं उन्हें सुरक्षित कर लुप्त वनस्पति एवं जीव जंतुओं को संरक्षित करने में सहायता करें।
0: ईंधन की आवश्यकता होने पर अंधाधुंध वनों की कटाई ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। पौधारोपण को बढ़ावा दें। बंजर भूमि है उसे ठीक कर पौधे लगाएं। सड़क या नदी तालाब के किनारों पर पेड़ लगाएं।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। सौर ऊर्जा का विकास कर ऊर्जा की समस्या भी हल की जा सकती है। इससे काफी हद तक लकड़ी का उपयोग कम होगा और ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रहेगा।
0: इस तरह स्वयं तो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, साथ ही औरों को भी ऐसा ही करने को कहें और इसके महत्व को समझाएं। इन बातों पर अमल करके ही हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे।
1: अगर अभी भी घर नहीं चेते तो पर्यावरण के गिरते स्तर का परिणाम हमें जल्दी ही और अधिक विभिन्न रूपों में भुगतना होगा।
0: हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो इससे हम मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की समस्त क्रियाएं अपनी विपरीत दिशा की ओर न सिर्फ कदम उठा रही हैं, बल्कि आगे और तेजी से बढ़ती जाएंगी।
1: हाँ, प्राकृतिक आपदाएं तभी आती हैं जब प्रकृति के प्रतिकूल दशा होती है। जैसे जो मिट्टी या भूमि उर्वरा होती है वो उत्पादन करना बंद कर देती है।
0: जो वर्षा समय पर होती है वो कम या अधिक होने लगती है, या फिर समय से पहले या समय निकलने के बाद भी नहीं होती। यानी दोनों ही सूरत में हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।
1: पृथ्वी का तापमान भी सामान्य ना होकर कम या ज्यादा हो जाता है, और ये सभी प्रकृति की गतियाँ हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं।
0: हाँ, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी आवश्यक संसाधनों को भी नहीं जुटा पाएंगे और अनेक विपदाएं जन्म लेती रहेंगी।
1: पर्यावरण में आए इस असंतुलन को पुनः नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों का उपयोग इतना अधिक कर रहे हैं, वे सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं।
0: यदि हम इनका इस तरह से दोहन करते रहे तो ये प्राकृतिक संकट स्वयं नहीं आता, बल्कि हम मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा इसे आमंत्रण दे रहे हैं।
1: हाँ, अपने विकास के लिए हम प्रकृति का खुलकर उपयोग करते हैं, लेकिन अब हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि संसाधन समाप्ति की ओर हैं। हमने ही इनका शोषण किया है और हम ही प्रकृति में इस असंतुलन के उत्तरदायी हैं।
0: हमें अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाकर इस सुकुड़ती भूमि को बचाना है। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। सूखा पड़ने की स्थिति तो और भी भयानक होती है। गांव की तस्वीर बड़ी ही हृदय विदारक हो जाती है। किसानों के पास कोई काम नहीं होता।
1: घर के पालतू जानवरों के भोजन की व्यवस्था न होने के कारण या तो वे खत्म हो जाते हैं या फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और तब लोग शहर की ओर रुख कर लेते हैं।
0: निसंदेह सूखा और अकाल एक हृदय विदारक और गंभीर संकट है। इस तरह बाढ़ भी एक ऐसी ही प्राकृतिक विपदा है जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। बाढ़ तो केवल प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर ही संभव है। इसके लिए बांधों का आवश्यकता अनुसार निर्माण बहुत जरूरी है।
0: इसी तरह भूस्खलन को भी प्राकृतिक विपदा ही माना जाता है, परंतु ये हम मानवों द्वारा किए गए खनन और वृक्षों की कटाई के कारण ही है।
1: और भूस्खलन की आए दिन होने वाली घटनाओं के कारण जिन स्थानों की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटक पर ही टिकी होती है, वो भी अब बहुत डगमगाने लगी है।
0: पर्यावरण के प्रभाव में मिट्टी का भी प्रमुख रूप से योगदान होता है। इसे अगर यूं कहा जाए कि मिट्टी परिस्थिति की जननी होती है तो गलत ना होगा, क्योंकि जो भी व्यवस्था स्थापित होती है उसका आधार मिट्टी तो होती ही है बादल।
1: हाँ धरा, जीव जंतु पौधे वनस्पति और मानव सभी मिट्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक दिशाएं भी मिट्टी से ही संबंधित होती हैं। ये मिट्टी भी एक प्राकृतिक तत्व है।
0: मिट्टी जब अपने पोषक तत्व भौतिकीय बनावट और रासायनिक संरचना खाने लगती है तो मिट्टी का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भूमि का क्षय होता है।
1: ईश्वर ने हमें सब कुछ बहुत सुंदरता से देखने के लिए बनाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस प्रकृति के रिश्ते के साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ, अगर हमें स्वस्थ और चिंता मुक्त बढ़ना है तो अपने स्वार्थी और गलत कामों को रोकते हुए अपने ग्रह पृथ्वी को, अपनी धरती की सुंदरता को बचाना होगा और इसकी बिगड़ती प्रकृति को बेहतर करना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति के असली उपयोगता तो हम ही हैं, तो इसे बचाना भी होगा। वो कहते हैं ना, जितना गहरा जोते खेत, बीज पड़े फल उतने देत।
0: यानी कि जितना गहरा हम खेत जोतेंगे और तब उसमें बीज डालेंगे तो फसल उतनी ही अच्छी होगी। आज हमने ढेर सारी बातें की प्रकृति के संरक्षण, मिट्टी के बचाव के बारे में, और निश्चित तौर पर आपको हमारी ये बातें बहुत ही काम की लगी होंगी। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का।
1: तो दोस्तों, मैं था आपके साथ बादल,
0: और मैं धरा।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़,
2: ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का।
1: मैं था आपके साथ दीपक निमा,
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। तो अब चलते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM।
1: नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन को ओस की बूंद की तरह कहा गया है जो सूर्य की एक किरण के साथ विलीन हो जाता है। आकाश में उमड़ते मेघ, नदी की बहती धाराएं, वृक्षों से झरते पत्ते और ऋतुओं का निरंतर परिवर्तन, प्रकृति का प्रत्येक दृश्य मानो एक ही सत्य का उद्घोष करता है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। काल का चक्र निरंतर घूम रहा है, वो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, किंतु उसके स्पर्श से यौवन वृद्धावस्था में बदल जाता है, वैभव स्मृति में बदल जाती है और आज बीतकर इतिहास में विलीन हो जाता है। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम इसी गहन सत्य पर चिंतन करते हैं। वो देखते हैं कि जीवन जल पर खींची हुई रेखा के समान है, क्षणभंगुर है और काल की अथाह धारा में समस्त सांसारिक उपलब्धियां तिनकों की भांति बह जाती हैं। उनका ये चिंतन उस शाश्वत सत्य की खोज का आमंत्रण है जो परिवर्तन और विनाश से परे है। तो आइए योग संवाद आरंभ करें और योग वासिष्ठ के आलोक में काल के प्रभाव तथा जीवन की अनित्यता के विषय में मनन करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: इन दिनों योग वासिष्ठ ग्रंथ हमने खोला हुआ है
1: जी।
0: और इसके वैराग्य प्रकरण में जो कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा होगी काल के प्रभाव की और जीवन की अनित्यता की। तो इस बिंदु पर भगवान श्री राम ने पराधीनता की बात की, मनुष्य की पराधीनता की, कि मनुष्य पराधीन है और कुछ कारण बताए हैं। तो क्या देख रहे हैं भगवान और पराधीनता से आशय क्या है?
1: पराधीनता से आशय है कि काल की ही स्मृतियां हमें होती हैं। आप देखें तो हम पूरे समय में जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अगर उसको हम समग्रता से कहें तो वो किसी काल की ही स्मृति कर रहे हैं। भले उस काल में कोई घटना हो, कोई व्यक्ति हो, आपके सुख दुख से जुड़ी कोई स्मृति हो, तो काल के ही अधीन हम रहते हैं। जो स्वाधीनता शब्द है, इसका अर्थ वास्तव में लोग जानते नहीं है। स्वाधीनता कोई विचार नहीं है। स्वाधीनता अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या योग के दृष्टिकोण से देखें तो वो स्व के अधीन होना यानी स्व को उपलब्ध होना है, जबकि स्व अनुपलब्ध नहीं है। स्व के साथ आप इसलिए नहीं है कि आप निरंतर किसी न किसी काल का चिंतन कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब बताइए कि इस संसार नामधारी प्रपंचों में मेरे जैसे लोगों का क्या आस्था हो। कहते हैं, हे मुने, आदमी प्रारब्ध कर्म के वशीभूत होकर सुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित होकर किसी न किसी बिके हुए दास अथवा वन में मृग की भांति पराधीन हो रहा है। अब आप देखिए कि सुख दुख को हम लोग कहते हैं वो प्रारब्ध कर्म का भोग है। सुनते हैं हम सामान्य शब्दों
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: प्रारब्ध कर्म को भोगा ही जा सकता है, प्रारब्ध को आप टाल नहीं सकते। ऐसा भी हमारे जो गुणी जन हैं या जो ज्ञानी जन हैं वो कहते हैं कि प्रारब्ध को भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कई संतों के बारे में आपने सुना होगा कि उनको अगर असाध्य बीमारियां हुई तो उन्होंने उन बीमारियों को ठीक करने के लिए कभी अपने आराध्य से याचना नहीं की, क्योंकि कहा ये मेरा भोग है, इसको भोग करके,
0: हाँ
1: बिल्कुल जी, भोग करके इसे हम समाप्त करें, ये उनकी जागृति थी। तो ऐसे में राम जी कहते हैं कि जब ऐसा प्रारब्ध है कि जब इसको बिना भोगे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो अंततः व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है और जी रहा है वो तो प्रारब्ध के अधीन हो गया
0: जी जी।
1: तो पराधीन ही तो है, वो कहां स्वाधीन है। तो कहते हैं कि ये काल ही व्यक्ति को पराधीन करता है। ये राम जी का गूढ़ चिंतन है कि वो काल को इस रूप में देखते हैं कि काल व्यक्ति की पराधीनता का कारण है और स्वाधीनता पर जो आवरण और विक्षेप नामक माया का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से वो ग्रसित इसलिए है कि वो काल के स्वरूप को पहचानने में असमर्थ है। वो बार बार उसी काल का चिंतन करता है, काल के प्रभाव में रहता है, काल को भोगने का प्रयास करता है। तो इस दृष्टिकोण से राम जी ने कहा कि यहाँ सभी लोग पराधीन है, और गोस्वामी जी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाहीं। तो ऐसे में अब जब काल व्यक्ति को पराधीन किए है तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, इसीलिए संसार को दुख का आलय कहा गया। ये तमाम ऋषियों के मतलब आध्यात्मिक अनुसंधान है।
0: अच्छा, भगवान श्री राम ने काल को निर्दयों का राजा भी इसमें कहा, क्यों कहा?
1: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान राम ने कहा कि काल निर्दय, जैसे कहते हैं ना कि जिसको दया ना हो, तो ऐसे समय किसी को बकसता नहीं है। लोग बाग ये सोचते हैं ना कि मतलब हम अपने अनुसार चीजों को कर लेंगे, ये सच ये नहीं है। वो काल उनके अनुसार किया हुआ है, बस इतनी सी बात है, और उनको लगता है ये हमने किया है। जबकि काल की जब गति घूमती है तो आप देखते होंगे कि राजा कैसे रंक बन जाता है, कैसे सारी संपन्नता के बाद भी व्यक्ति विपन्न होकर के विलाप करता है। तो काल इतना निर्दय है कि एक पल के लिए भी वो सोचता नहीं है, या उसके पास क्षमा जैसी चीज नहीं है। वो आपका प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध कैसे आपको मुक्त कर सकता है? प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए काल को भगवान राम ने कहा, काल मेरी दृष्टि में निर्दयों का राजा है, वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। यानी आप देखिए कि जब सारे पुरुष अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं और प्रारब्ध जो है वो काल व्यक्ति को पराधीन कर रखा है, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो स्वाधीन दुर्लभ हो गया है जो कम से कम काल के प्रभाव से अपने को मुक्त जाने। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सब पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, और सारे जो भूत हैं मतलब जो काल के प्रभाव में हैं।
0: जी अच्छा शशिकांत जी, ये बताइए कि वैभव का जो स्वरूप है और उसके भोग का परिणाम क्या है?
1: हाँ, वैभव का स्वरूप राम जी कहते हैं कि वैभव अल्प एवं तुच्छ है। व्यक्ति को लगता है कि हम निरंतर वैभवशाली हों, हम लोग आशीर्वाद भी देते हैं। राम जी कहते हैं दृष्टि में कि कोई ऐसा वैभव नहीं है जिस वैभव के साथ हमेशा आप

0: दुख देने वाले हैं।
1: अच्छा।
0: जबकि व्यक्ति भोग के रूप में सुख चाहता है और वो कहते हैं कि आप देखिए कि सुख की चाह नहीं तो व्यक्ति को दुखी किया है, या कह सकते हैं सुख की चाह जिसे है वो अपने को दुखी भी घोषित कर रहा है एक न एक रूप में। तो कहते हैं कि ये जो भोग का स्थान है वहां पर वो भयंकर है, वो भयानक है, क्योंकि वहां सुखी किसी कोई नहीं हुआ। और हम लोग कहते भी हैं कई बार कि जिस स्थान पर जाकर के आपको सुख का अनुभव या अनुभूति होने की संभावना दिखाई दे रही है उन स्थानों पर तो बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, आप उनको देखिए क्या वो सुखी हैं?
1: वो सुखी हैं बिल्कुल,
0: तो वो नहीं है। तो जब देखते हैं तो कहते हैं ये भोग है, ये भयंकर है, ये देख के डर लगता है। जो अज्ञानी लोग हैं भले इस भोग के पास में बंधे हों, लेकिन जो ज्ञानी है जिसको विवेक है वो इस भोग को भयंकर देखता है और भोग का परिणाम अंततः दुख ही मिलता है, और उसको राम जी कहते हैं कि दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाला है भोग।
1: अच्छा।
0: जी, ऐसा भी दुख नहीं है जो मतलब जिसका अंत हो जाए, वो देर तक उसका अंत नहीं होगा, आप उस दुख को भोगते रहेंगे।
1: जी, जी। अच्छा, मनुष्य के बंधन का कारण क्या बताया है इसमें?
0: बिल्कुल सुंदर आपने कहा। राम जी कहते हैं कि मनुष्य जैसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद अभी वो किसी बंधन में नहीं है, देखे तो देह है उसके पास और देह की आवश्यकताएं हैं, उसके बाद वो संसार का कोई भी ज्ञान या संसार के संबंधों का ज्ञान नहीं रखता। लेकिन जैसे ही थोड़ा वो समझदार होता है और लोगों को पहचानने लगता है तो वो पहचानने नहीं लगता, वो वहीं से बंधना शुरू हो जाता है। तो राम जी कहते हैं कि बंधु बांधव या जो परिवार है ये सब बंधन के कारण है, इन्हीं में जीव बंधता है। और इसको राम जी तो कहते ही हैं, एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं रूसो, जो कहते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो बंधन जकड़ा हुआ है। तो राम जी यही कहते हैं कि ये बंधु बांधव, संसार की पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, यही तो जीव का बंधन है, व्यक्ति का बंधन है, इसी बंधन में वो बंधा है, जबकि वो अपने लिए उसे आवश्यक समझता है। आश्चर्य देखिए कि वो हमारे लिए बंधन भी है और उस बंधन में रह करके हम मुक्ति भी चाहते हैं, है ना? उस बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते, बंधन में रहते हुए मुक्ति चाहते। कितनी बड़ी बात, मुझे आश्चर्य होता है। एक महात्मा थे तो उनके पास कोई व्यक्ति गया, वो कहा कि मैं क्रोध से, आसक्ति से और जो जितने भी मन के दोष हैं इन दोषों से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने, वो मंदिर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मंदिर का जो वो पिलर है उसको जोर से पकड़ लिया और कहा कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो वो कहने लगे ये क्या कह रहे हैं आप? कहते जो तुम्हारी दशा है उसी को तो बयां कर रहा हूं मैं, कि पकड़ा तुमने है और तुम कह रहे हो कि मैं मुक्ति कैसे चाहिए। तो ऐसे में जो हमारे लिए बंधनकारी है उसी में रहते हुए हम मुक्त होने का ख्याल करते हैं। कितनी बड़ी ये व्यवस्था है। राम जी जैसा विवेकवान पुरुष इसको देखता है कि व्यक्ति का जो बंधन है वो बंधु बांधव और उसके अपने ही हैं।
1: अद्भुत है,
0: अद्भुत है जी,
1: कि हम स्वयं बंधे हुए हैं
0: जी,
1: और वो बंधन हमें पसंद भी है, हमें मुक्त भी हो जाना है
0: जी।
1: तो ये दृष्टि आम मनुष्य की है
0: जी,
1: जिसको भगवान देख रहे हैं
0: जी।
1: अच्छा, ये बताइए कि आत्मा का भी कोई शत्रु हो सकता है क्या?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे स्मृति में आया कि यद्यपि आत्मा न किसी की शत्रु है न मित्र है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आत्मा का कोई शत्रु नहीं हो सकता। आपके अंदर शत्रुभाव न हो, निर्भयता की स्थिति आपने साध ली हो, लेकिन संसार आपसे बैर कर सकता है जी। तो वो कहते हैं कि आत्मा का जो शत्रु है वो बिना जीता हुआ मन है, जिस मन पर आपने स्वामित्व अर्जित नहीं किया, यानी मन के स्वामी आप नहीं बने, तो वो मन कभी भी आत्मोन्मुख नहीं होने देगा, आपको विषयोन्मुख बनाएगा। मन मुखी जो व्यक्ति होता है वो विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि मन ही आत्मा का शत्रु है, क्योंकि वो हमेशा विषयों के चिंतन में आपको भोग की तरफ, विलास की तरफ आकर्षित करेगा। तो ऐसे में जो उस मन को जीत लेता है वो व्यक्ति विषयों का त्याग करके आत्मोन्मुखी हो जाता है। लेकिन जो लोग मन को अपने वश में नहीं कर पाए हैं, जिनका मन पर नियंत्रण नहीं है, वो हमेशा विषयोन्मुखी होते हैं, बल्कि वो आत्मा को भी विषय बनाकर उसका चिंतन करते हैं। यहां आश्चर्य की बात मैं कर रहा हूं कि बड़े बड़े आप देखेंगे साधकों को ये भ्रम सा हो जाता है कि वो आत्मा को ही विषय बना चुके हैं, कि आत्मा को पाना हमारा लक्ष्य है। इस पर मैं फिर एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि एक गुरु ने अपने शिष्य को भेजा कि आप जाओ इस महात्मा के पास, तुम्हें वो बोध कराएगा। तो वो शिष्य महात्मा के पास गया, सोचा कि हमारे गुरु जी से भी ये श्रेष्ठ महात्मा होंगे। तो देखा तो उस महात्मा ने तो कभी न भगवान की स्मृति की, न कभी पूजा किया, न पाठ किया, वो ऐसे ही संसार के कार्य करते थे।

0: एक बार भी भगवान को याद नहीं किया। काफी दिन हुआ, देखते देखते जब काफी दिन बीत गया तो उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरु जी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, इससे तो श्रेष्ठ उनका व्यवहार रहा, इनके पास तो कोई मतलब ऐसा व्यवहारिक सद्कर्म नहीं है जिसके वजह से मैं इनको जानूं कि ये परमात्मा भी इनके लिए मूल्यवान हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक दिन कहा कि मेरे गुरु जी ने आपके पास बोध के लिए भेजा है और मैंने कभी परमात्मा के लिए एक पल भी आपको विचार करते हुए देखते नहीं देखा, तो ऐसे में मैं क्या समझूं, मुझे क्या सिखाना चाहते हैं आप। तो उन्होंने जो कहा वो बहुत ही सोचने योग्य है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं परमात्मा के बारे में सोचूं, समझना कि उसी दिन मेरा पतन हो गया, क्योंकि मैं कभी उससे दूर हो ही नहीं सकता और जिससे दूर होने का कोई उपाय नहीं है उसके बारे में सोचने का भी कोई उपाय नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसे में ये जो आपने एक प्रश्न किया कि परमात्मा से आप कभी दूर हुआ ही नहीं जा सकता और जो दूर होने की बात समझ रहे हैं वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम के शिकार हैं, अज्ञानता के शिकार हैं, जिसको कबीर साहब कहते भी हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को इंतजारी क्या। तो परमात्मा इंतजार अलग होने का विषय नहीं है, वो आप में ही है। तो आत्मा पाने का विषय नहीं है, लेकिन लोग आत्मा को भी पाने का प्रयास करते हैं, ये मन का खेल है। मन समझिए मन की चालाकी है, वो अपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार में आपको उलझा देता है और वो आत्मा और ब्रह्म को भी विषय बना देता है, जबकि वो विषय नहीं है, वो तो सत्ता है आपकी, उसे कैसे विषय बना सकते हैं। विषय तो मन के हो सकते हैं और मन से जब आत्मा का चिंतन करेंगे तो मन आत्मा कब विषय बन जाएगा इसको खोज पाना आसान नहीं होगा।
1: आसान नहीं, बिल्कुल। अंतःकरण में जो व्याकुलता है क्या कारण उसका होता है?
0: उसका कारण है दूषित बुद्धि। और यहाँ फिर आपको पूछना चाहिए कि दूषित बुद्धि का क्या कारण है। तो दूषित बुद्धि तभी होती है जब मन किसी सुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में राग कर ले और किसी दुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में द्वेष कर ले।
1: अच्छा।
0: तो राग द्वेषात्मक जो उसकी प्रवृत्ति होगी और उस प्रवृत्ति में संलग्न जो बुद्धि होगी वो दूषित बुद्धि होगी। तो ऐसी दूषित बुद्धि अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न करती है। आप संसार में देखिए लोग व्याकुल दिखाई देते हैं आपको, भागते दिखाई देंगे, जैसे लगता है कितनी दूर कहां जाना है और क्या पाना है, जबकि सच ये है कि संसार में क्या ऐसा प्राप्तव्य है। राम जी कह भी रहे हैं कि यहां जो कुछ भी पाने योग्य है सब छूट जाता है। जब ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के शक्तिहीन हो जाती है, संतुलन खो बैठती है, तो ऐसे में इस संसार में कोई ऐसा मूल्यवान वस्तु नहीं है सिवाय आपके कि आप अपने चिंतन को करने के बजाय, स्वाधीनता को पाने के बजाय आप जो पराधीनता है, वो पराधीनता जो काल आपको बना रहा है, पराधीन कर रहा है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। जिसको कहते हैं गोस्वामी जी, नाचई सभी नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। तो ये स्थिति है कि हर आदमी जो है बंदर की तरह नाच रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जो आत्मा है, जो राम है, आत्मा राम, उसको आप नहीं जान रहे हैं और राम को आप यहां वहां भटक के घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। तो बुद्धि की मलिनता का मूल कारण है, मतलब अंतःकरण के व्याकुल होने का कारण है बुद्धि की दूषित होना, और बुद्धि का दूषित होना है मन के साथ बुद्धि का बहाव।
1: आपने कहा कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनके साथ हमारा एक मोह बने और हम किसी सुख की कामना के साथ इच्छाओं को चाहें,
0: जी,
1: तो ये भी दूषित बुद्धि है।
0: दूषित, आप कभी देखिए ना, इच्छाओं को आज तक भाई हमारी बहुत सारी इच्छाएं हमने पूरी की, लेकिन पूरी करने के बाद क्या इच्छाओं ने हमें छोड़ा? इच्छाओं ने तो हमें बांधा ना, हम हमेशा इच्छाओं के गुलाम होते चले गए और हम कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाए। तो आज भी आप देखिए पूर्व का जो अनुभव है उस अनुभव से हम नहीं सीख रहे हैं। विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने वाला मनुष्य आज भी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इच्छा एक प्रकार का बंधन है जो व्यक्ति को बांध रही है और बुद्धि को दूषित कर रही है।
1: जिस राग और द्वेष की आपने बात की है उससे मुक्ति के लिए एक संक्षेप में एक बात कहें कि किस तरह से, क्या दृष्टि हो
0: इसके मुक्ति के लिए? मन पर विजय पाना, जो कहा ना कि आत्मा के शत्रु ना बल्कि आप आत्मा के मित्र बने। मित्र तभी होंगे जब मन की जो व्याकुलता है, मन का जो विचलन है, मन की जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर आप रोक लगा पाए, निरोध कर पाए। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, क्योंकि मन हमेशा वृत्तियों के पीछे भागता है और वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं करेंगे तब तक योग नहीं होगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो वही महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र का परिभाषा है वही किसी रूप में परिभाषित हो रहा है कि मन को जीत करके आप अपने आत्मा के मित्र हो सकते हैं। आत्मा तो आप में है ही, ब्रह्म स्वरूप आप है ही। शिवोहम शिवोहम आदिगुरु शंकराचार्य कही रहे हैं कि न हमारा जन्म है, न हमारी मृत्यु है, न हमारा बंधन है, न हमारा मोक्ष है। तो ऐसे में कब ये ऐसा है, जब हम आत्मोन्मुखी हों या आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हों। और ये तभी होगा जब हम मन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिना जीता हुआ मन आत्मा का शत्रु बन जाता है और मनुष्य के अंतःकरण की व्याकुलता का कारण बनता है,
1: कारण बन जाता है।
0: जी
1: अच्छा, इसमें बताया कि जो काल है वो प्राणियों को अज्ञात स्थान पर ले जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझाइए, क्या आशय है इस पंक्ति का?
0: हाँ, इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो काल है जिसमें व्यक्ति सारे समा रहे हैं, जैसे कहा हमने पिछली बार शायद इस बात पर बात की थी कि काल का ग्रास ये जगत है।
1: हाँ।
0: तो यहाँ जो भी प्राणी जन्म लेता है वो इस जगत में ही विलीन हो जाता है। तेरा तुझको अर्पण, पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाती है और उसको जाना नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये कहते हैं ना कि आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम काल के गति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भगवान ने यहाँ साफ कहा कि ये अज्ञात जगह पर व्यक्ति को ले जाता है। ये जो प्राणी समुदाय है, प्राणियों की जो परंपरा है, जगत में जो जगत में प्राणी दिखते हैं, प्राणवान दिखाई दे रहा है, काल उसे निरंतर अपना ग्रास बना रहा है। और कहाँ बना रहा है ये किसी को पता नहीं है। आपको एक उदाहरण मैं दूंगा। श्रीमद् भागवत कथा में जब नारायण ने हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्यास का वध कर दिया तो उससे वो तपस्या करने लगा कि मैं अब नारायण को मारूंगा, नारायण को मिटाऊंगा। यानी काल को नारायण भी कहा गया, भगवान ने कहा गणना में मैं काल हूं, विभूत योग में देखें। तो ये सब एक कोड में इसको डिकोड करना बहुत आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं ऐसा करेंगे कि हम नारायण को ही मारेंगे, यानी काल की व्यवस्था को या काल को हम जीत लेंगे, ऐसी बात उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। और वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और वर मांगते हैं कि मेरा कहीं भी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी सृष्टि में तो मृत्यु का विधान है, हर प्राणी जन्म लेता है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि कैसे वो अज्ञात काल में जा रहा है, तो उसको जाना ही पड़ता है। यहाँ तो मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो भी चालाक था, फिर उसने क्या किया कि आप देखिए उसके वर मांगने की विधा, कैसे बुद्धि का कौशल प्रयोग किया उसने कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, धरती पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, वानर से नहीं मरूं, पशु पक्षियों से नहीं मरूं। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसने मृत्यु को जीत लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि उसने पूरी बुद्धि जो है काल के बाहर जाने का तो प्रयास किया, लेकिन अंततः काल में एक नया स्वरूप ले लिया, नरसिंहावतार, जो कहते हैं जो नर भी नहीं है और पशु भी नहीं है, और वो जो गोधूल के बेला में उन्होंने, तो ये कथानक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि राम जी इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से काल सारे प्राणियों को अज्ञात स्थान में ले जाता है, दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। भाई अज्ञात का मतलब हुआ कि जहां उसके दिशाओं का भी पता ना चले। और यहाँ आदमी काल को जानने के लिए कितना उत्सुक रहता है कि अपने भविष्य काल को जान ले, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं काल का ये भी प्रभाव है, ये भी काल का ही प्रभाव है, माया का प्रभाव है। जबकि वो हम गाते हैं ना भजन में कि तेरी माया का न जाने कोई पार, वो माया रानी तू ही जाने। तो ये जो काल की जो पत्नी कालरात्रि है वो वही जानती है कि क्या है, उसको कौन जान सकता है। तो ऐसे में अज्ञात स्थान में ले जाता है जहाँ दिशाएं भी नहीं पाती दिखाई देती हैं ताकि आप जान पाएं।
1: अच्छा, भगवान श्री राम तो स्वयं परमात्मा हैं।
0: जी,
1: परमात्मा के संबंध में क्या कह रहे हैं वो योग वासिष्ठ में?
0: परमात्मा के संबंध में वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा तत्व जो है वो निर्गुण निराकार है। और उसकी व्याख्या शास्त्रों में जो की गई है राम जी वैसे ही कह रहे हैं जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक उस परम निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा ही है। यानी कहते हैं कि ये जो माया का जो उत्पादक है वो माया से अलग है, वो माया की तरह दिख नहीं सकता। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम परमात्मा की भी मूर्ति बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी आदत है, हम उसी रूप में देखना चाहते हैं। हम अभी कहें किसी निराकार का चिंतन करें आप, तो निराकार का चिंतन ही नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चिंतन से मुक्त हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग निर्विचार होना। क्योंकि चिंतन तो विचार में होगा, दृश्य में होगा, सुन करके होगा, कह करके होगा। और वो कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद आनंद घन परमात्मा का विचार नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा, इसके लिए तो उपनिषदों में काफी गहरी चर्चा है जिसमें अन्वय और व्यतिरेक ये दो साधन अपनाए गए हैं कि ये सब कुछ उसी में है और ये कुछ भी वो नहीं है, इस तरीके के मतलब ऋषियों ने प्रयास किया है, इशारे किए हैं ताकि आप, चूंकि वो कहा तो जा नहीं सकता, सुना जा नहीं सकता, लेकिन जो जिज्ञासु है वो कहने सुनने के ही आकांक्षा से आप तक आया है तो वो एक व्यवस्था है, इशारा है, लेकिन वो इशारा है। तो राम जी वही कहते हैं कि वो वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है जो माया का उत्पादक है, जो वाणी से कहा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, दृश्य आंख से देखा नहीं जा सकता, इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं।
1: अच्छा, इस संसार में सुखी कौन है?
0: इस संसार में सुखी कौन है, इन्होंने कहा महात्मा की शीतल बुद्धि, ऐसे महात्माओं की शीतल बुद्धि जिनकी बुद्धि अब उनके चित्त को व्याकुल नहीं कर पाती। जैसे हमने कहा ना कि जो बिना जीता हुआ मन, ये आपकी बुद्धि की शीतलता समाप्त कर देगा और जीता हुआ जो मन है वो बुद्धि को शीतल बनाएगा, बुद्धि में कभी व्यग्रता नहीं है, उष्णता नहीं आएगी,
1: पूरा रोग जो है वो व्याकुलता का है।
0: व्याकुलता का है। वो कहते हैं कि जो दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, शीतल बुद्धि ऐसी है, और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी हो सकता है, और कोई सुखी नहीं हो सकता इस जगत में। यानी आत्म शांति को प्रदान करने वाली जो बुद्धि है वो शीतल बुद्धि है। इसीलिए आपने सुना होगा एक मंत्र जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये शीतल बुद्धि में उपजा हुआ एक प्रार्थना है। और जो क्या कहते हैं, जो ऐसी बुद्धि जिस पर मन शासन करता है वो कैसी होगी? वो ये कहेगी कि जो कुछ भी हो संसार में मेरे लिए ही, वो अपने को केंद्र में रखकर।
1: जी, तो सर्व की कामना, सर्व का कल्याण हो ही नहीं सकता ऐसी बुद्धि में। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि जो संसार, हमने बुद्धि की बात की, तो जो संसारी मनुष्य है उसकी बुद्धि कैसी होती है?
0: राम जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है।
1: अच्छा।
0: उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते रहते हैं और कहते हैं, देखिए वो बुद्धि क्या कहती है, कहते हैं कि आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करना चाहिए, वे लोग हमारे भाई बंधु हैं, यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है, इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। ये संसार की गति है। और देखें तो संसारी व्यक्ति निश्चित ऐसी ही बुद्धि के साथ संसार को देखता, विचार करता और जीता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए विवेक के साथ जो बुद्धि विकसित होगी, गोस्वामी जी कहते हैं अबलो नसानी अवना नसही हो, तो हम, ऐसा नहीं है कि संसार के व्यवहार में हम व्यवहारिक जगत का तिरस्कार कर रहे हैं, हम व्यवहारिक जगत को जीते हुए पारमार्थिक सत्य का भी चिंतन करें कि हमारा स्वरूप क्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, आचार्य शंकर जो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत झूठ नहीं है। एक बार क्या होता, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जगत को नकारने की बात की जा रही है। जगत को नकारने की बात नहीं की जा रही है, जगत के सत्य के साथ व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को जागृत किया जा रहा है।
1: हाँ, वही मैं कहने ही जा रही थी कि काल के प्रभाव की हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन की अनित्यता की बात कर रहे हैं, फिर जीवन में लय होने की, रमने की बात भी होती है, उसे छोड़ना भी नहीं है। तो दृष्टि क्या हो संसार में, हमारी दृष्टि क्या हो
0: संसार में, दृष्टि हमारी इस संसार में रहते हुए कैसे हम अंतःकरण को व्याकुल किए बिना और अपने मन को वश में रखते हुए शांति और संतुष्टि के साथ जीवन जिएं। यही बात आगे चल करके जब राम जी के वैराग्य की स्थिति को जानने के बाद गुरु लोग उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार करता है, वो किसी कर्म का त्याग नहीं करता। और ये देखिए, राम जी की कहानी सभी को मालूम है, लेकिन राम जी के चित्त की ये दशा आम लोगों को नहीं पता,
1: नहीं पता है।
0: और अगर राम जी के चित्त की दशा शांत न हुई होती तो ऐसे में राम जी का जो व्यवहार होता वो सांसारिक लोगों की तरह हो सकता था।
1: जी।
0: तो इस नाते सबसे पहले उन्हें तीर्थ यात्रा करने का जो भाव अपने चित्त में उत्पन्न हुआ और पिताजी से उसके लिए उन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं, आप तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं। और तीर्थ भ्रमण करके राम जी इस जगत का व्यवहार देखना चाहते थे। और व्यवहार देखने के बाद जो उन्हें दिखा कि यहाँ कर्म तो सभी कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कर्म व्यक्ति के सुख का कारण नहीं हो सकता। तो अपनी उस अवस्था की बुद्धि से उन्होंने कर्म का ही त्याग किया। तो ऐसे में जब सभा में बुलाया गया है तो गुरु के बीच वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि ये मुझे दिखाई दे रहा है विभिन्न अवस्थाओं में ऐसी ऐसी स्थिति, हम कैसे इस शरीर से या इस संसार के विषयों से प्रेम कर सकें।
1: तो शशिकांत जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही। मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत आनंदित हुए होंगे आज। बहुत ही अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा। अगले अंक की प्रतीक्षा मुझे भी है। तो आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको कि आप आए और इतनी सुंदर व्याख्या आपने की।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की काल के प्रभाव और जीवन की अनित्यता पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: एक छोटा सा बिरसा मुंडा जी के चरणों में समर्पित गीत कि महाराज।

एटा लिए कहीगा हो उसी समय का बिचम गरीब किसान का।

कि निमाड़ की माटी में इसी कौन कौन से समझकार और संत हुए हैं। छोटी रचना कि बहती नर्मदा, अरे बहती नर्मदा आलिया

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। श्रोताओं, समय मिला सकते हैं हमारे स्टूडियो में, समय दिन के ठीक 10 बज रहे हैं और ये कार्यक्रम होता है परिक्रमा सुनने का। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और सुरों के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में आयोजित राग यमन पर आधारित 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन बेहद गरिमामय और उत्साहमय वातावरण में हुआ। वरिष्ठ ध्रुपद गायिका सुरेखा कामले के कुशल मार्गदर्शन में संगीत प्रेमियों ने सुर साधना के कई अनछुए पहलुओं को आत्मसात किया। 5 दिवसीय विशेष शिविर की विशेषता विविधता रही, जहां उम्र का बंधन टूटता नजर आया। कार्यशाला में संगीत सीखने की ललक ऐसी थी कि 5 वर्ष की मासूम बच्ची से लेकर 60 वर्ष के बुजुर्गों तक ने एक साथ बैठकर राग यमन का रियाज किया। समापन समारोह में नागपुर से पधारी वरिष्ठ समाज सेवी सुनंदा सुखदेव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतिभागियों को राग यमन की विस्तृत जानकारी के साथ सरगम, अलंकार, बंदिश, ध्रुपद और तराना का गहन अभ्यास कराया गया। वहीं शास्त्रीय और फिल्मी संगम की बात करें तो राग यमन पर आधारित लोकप्रिय फिल्मी गीतों की शास्त्रीय प्रस्तुति की बारीकियों और उनकी गायन विधि से भी रूबरू कराया गया। आइए चलते हैं श्रोताओं राजधानी की रंगायन आर्ट गैलरी में, जहां आगामी 5 जुलाई से एक अनूठी सामूहिक कला प्रदर्शनी चित्रांकन का आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन शाम 7 बजे देश के प्रख्यात कवि, निबंधकार, नाटककार और कथाकार उदयन वाजपेयी द्वारा किया जाएगा। ये प्रदर्शनी अगस्त 2025 में प्रतिष्ठित कलाकारों और वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ आयोजित एक विशेष कार्यशाला के रचनात्मक संवादों का परिणाम है। चित्रांकन में किताबों के पन्नों को कैनवास के रूप में तब्दील कर स्मृतियों, कल्पनाओं और अनूठी दृश्य कहानियों के माध्यम से कलात्मक अभिव्यक्तियों की बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। गैलरी की प्रीति निगम के अनुसार यह कला प्रदर्शनी 5 से 12 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। राजधानी भोपाल में भारतीय भाषाओं पर एक व्याख्यान का एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश के विख्यात भाषा विज्ञानी और भारतीय भाषाओं के अद्वितीय अध्येता जैन देवी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। वे भारत भाषाओं की भूमि का विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। देवी को भारतीय भाषाओं के गहन सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए जाना जाता है। वर्तमान समय में लुप्त होती भाषाएं और उनसे प्रभावित होने वाला समाज उनकी मुख्य चिंताओं के केंद्र में रहा है। ये कार्यक्रम 30 जून यानी आज शाम 5:30 से गांधी भवन के मोहनिया हॉल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि शहर के प्रबुद्ध जनों, भाषा प्रेमियों और नागरिक आदि इस व्याख्यान में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और पढ़ाई को रोचक और नवाचार के साथ पेश करने वाले पात्र शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से 10 जुलाई तक अपना स्वनामांकन ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। पुरस्कार हर साल विद्यालयी शिक्षा में अपना बहुमूल्य और उत्कृष्ट योगदान देने वाले देश भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऐसे शिक्षक जो पारंपरिक तरीकों से हटकर बच्चों को आधुनिक और रचनात्मक ढंग से समझाते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। श्रोताओं, वर्तमान समय विज्ञान का समय है। बच्चों की तेजी से बदलती दुनिया में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए उन्हें विज्ञान से जुड़ी रोचक कहानियां सुनाना और पढ़वाना बेहद जरूरी है।
ये विचार वक्ताओं ने हिंदी भवन के सभागार में व्यक्त किए। अवसर था सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुनीता प्रकाश के सद्य प्रकाशित बाल कथा संग्रह विराज और चांद का सपना का लोकार्पण समारोह का। आयोजन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र दीपक, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, डॉक्टर नुसरत मेहंदी, डॉक्टर ध्रुव कुमार पटना और लघु कथा शोध केंद्र समिति के निदेशक श्रीमती कांता रॉय बतौर उपस्थित थे। वक्ताओं ने पुस्तक को बाल मन में जिज्ञासा जगाने वाली कृति बताया। इधर क्लब लिटरार्टी द्वारा आगामी 11 अगस्त को एक विशेष साहित्यिक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। अरेरा क्लब के बैक्वेट हॉल में शाम 5:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सर्वोच्च साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध उपन्यासकार उर्मिला शिरीष के सद्य प्रकाशित उपन्यास चांद गवाह पर चर्चा होगी। यह उपन्यास एक स्त्री के अस्तित्व, निश्चल प्रेम और उसके अनवरत संघर्ष को बिल्कुल नए संदर्भों में रेखांकित करता है। वर्तमान परिदृश्य में पारिवारिक रिश्तों के बीच किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश से उपजे मानसिक तनाव और द्वंद को इस कथा में पिरोया गया है। आइए अब चलते हैं शिवाजी नगर, जहाँ के आनंद धाम वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए एक दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। प्रतिकेश्वर राम सेवा समिति एवं मां नर्मदा सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कथा में प्रतिकेश्वर महाराज ने आश्रम में रह रहे वरिष्ठ जनों को राम कथा के मूल सारांश का श्रवण कराया। उन्होंने राम नाम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए ये कहा कि कलयुग और मृत्युलोक में श्री राम

और अब चलते चलते एक और सूचना सुनिए। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और भोपाल वर्ड्स के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 5 जुलाई को सारस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अरेरा कॉलोनी स्थित रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में होने वाले कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सारस क्रेन के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। फेस्टिवल के तहत एक विशेष फोटो प्रदर्शनी और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। फोटो एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले वॉचर्स और फोटोग्राफर्स 30 जून तक यानी आज शाम तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। आयोजकों के अनुसार पक्षियों के घोंसले, नेस्टिंग और मोबाइल से खींची गई तस्वीरें स्वीकार नहीं की जाएंगी। विशेषज्ञ द्वारा सर्वश्रेष्ठ 30 तस्वीरों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 5 जुलाई की मुख्य प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। जुड़े रहिए आप अपने रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी के संघर्ष की अमर गाथा जिन जाने अनजाने अनगिनत शहीदों के खून से लिखी गई है, उन्हीं में से एक हैं अमरचंद बांठिया। बांठिया ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया के गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद बांठिया को एक बार एक सन्यासी ने बताया था कि 700 बंगाली सैनिकों को अंग्रेज सेनाधिकारियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने गाय को आराध्य मानते हुए बैलों की पीठ पर बैठकर जल मार्ग से रंगून जाने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बारे में सुनकर अमरचंद बांठिया क्रूर अत्याचारी और बर्बर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देने के लिए छटपटा उठे। उन्हें ये अवसर तब मिला जब झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में आ डटी। सैनिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अमरचंद बांठिया आगे बढ़े और उन्होंने ग्वालियर का सारा राजकोष क्रांतिकारियों के हवाले कर दिया। लक्ष्मीबाई के गौरवमय बलिदान के चार दिन बाद ही 22 जून 1858 को अमरचंद बांठिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। फांसी के 3 दिन बाद तक शहीद बांठिया का शव उसी पेड़ पर लटकाए रखा गया ताकि लोगों में आतंक फैला रहे और भविष्य में फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर न उठा सके। बांठिया ने अनूठे बलिदान की परंपरा को कायम करके आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की प्रेरणा दी थी।

0: अरे बात, चलो भाई बहुत थक गए, यहाँ रुककर चाय पानी हो जाए थोड़ा।
1: हाँ हाँ भाई, थोड़ा विश्राम हो जाए।
2: आओ भैया आओ, आओ आओ, काका के ढाबे में स्वागत है आपका। अरे छोटू जरा देख तो इधर।
3: हाँ भैया।
0: राम राम भैया, जरा यहाँ हम सब लोगों को चाय पिलवा दीजिए।
2: अरे ये हमारे काका का ढाबा है, वो जरा बाहर गए हैं, उनकी गैर हाजिरी में जरा भूल नहीं होनी चाहिए। आप लोग तसल्ली से आराम कीजिए, मैं आप लोगों के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम करवाता हूँ, एकदम काका की तरह। ये लो भाई पानी। आप लोग?
3: हाँ बेटा, हम लोग व्यापारी हैं और तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं। ईश्वर,
2: आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। इधर अंदर आइए, इधर अंदर खाट लगवा दूं तो आराम कर लीजिए।
3: हाँ सही कह रहे हैं आप, एक तो ये कमर दर्द, ऊपर से बस में सफर, बड़ा धन्यवाद है आपका। अरे कमल, मैं अंदर छांव में हूँ, ड्राइवर से कहो वो आराम कर ले थोड़ी देर।
4: जी महाराज।
2: आइए आइए आइए, इस तरफ से आइए।
3: अरे भाई इतनी सारी तस्वीरें, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम पर। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से हैं क्या?
2: अरे भाई खानदान तो अलग ही बात है, पर हमारे काका को तो शौक है उन लोगों के बारे में जानने का। काका तो कहते हैं कि बेटा काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो बात ही।
5: अरे काका, पहले पैदा हो गए होते तो हम जैसों को पता ही नहीं चल पाता क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें कुर्बान होने वाली जानों की कीमत।
2: कौन कराता हमें एहसास कि जो सुख हम आज भोग रहे हैं उसके लिए किन लोगों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हो।
3: अच्छा तो क्या ये काका इतना कुछ जानते हैं?
2: अरे हम सब यूं ही उनकी तारीफ थोड़ी करते हैं, काका से मिलते मिलते तो हमारा ज्ञान भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी बढ़ गया है। असल में बात सिर्फ उनकी तारीफ की नहीं है, पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी मिलने से अपने जीवन चरित्र में बहुत कुछ अच्छा ढालने का मौका मिलता है। अब मेरी ही बात लो, हूँ तो मैं इतिहास का विद्यार्थी, पर जितना मुझे काका से सुनने को मिला उतना शायद मैं खुद जानने की कोशिश भी नहीं करता।
3: बस बेटा बात का सार तो यही है कि दो चार लोग भी समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में अपने मित्रों या मिलने जुलने वालों के साथ बातचीत जारी रखे ना, तो उससे मिलने वाली शिक्षा का प्रचार होगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी कुछ तो अपनी जिम्मेदारी और प्रेम के प्रति सजग होगी, जागेगी।
2: आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल काका की तरह। असल में आप जैसे ही यहाँ बस से उतरे ना, तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम का वो यात्री याद आ गया, अमर चंद बांटिया। काफी कुछ आपकी सी ही छवि थी उस महान शहीद की भी।
3: अच्छा, अरे भाई आपके काका तो है नहीं आज, आप ही कुछ बताइए कौन थे अमरचंद बाटिया?
2: काका से सुना था, जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ याद है अमरचंद बाटिया के बारे में, बताने की कोशिश करता हूँ। बात तब की है जब श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चल समारोह बीकानेर से ग्वालियर की ओर गया था, और इसमें एक इतिहास भी चल रहा था।
5: इतिहास चल रहा था?
2: हाँ, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। असल में इसी यात्रा में सेठ हमीरचंद बांटिया अपने परिवार और पुत्र अमरचंद के साथ व्यापार व्यवसाय की खोज में ग्वालियर जा पहुंचे। ग्वालियर में प्रतिमा की स्थापना हुई और अमीरचंद भी अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। अमीरचंद का पुत्र अमरचंद अक्सर मंदिर जाया करता था।

0: आओ अमरचंद जी।
1: क्या चल रहा है महाराज?
0: बस ये सन्यासी आए हैं बाहर से, देश का हाल जान रहा था।
2: बुरी हालत है देश की भाई, अंग्रेजों के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
1: तकलीफ तो ये है कि हमारी अपनी ही कमजोरियों के कारण ये बाहर से आए व्यापारी शासक बन बैठे हैं।
2: ये सब गद्दारों की घुसपैठ का नतीजा है अमरचंद। ये अंग्रेज हमारे ही सैनिकों को तो भेजते हैं मरने कटने के लिए।
3: बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बंगाल से आया सन्यासी हूँ और सैनिकों की बात चली तो खुद को रोक नहीं पाया। एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी।
1: बताएं महाराज।
3: बात तब की है जब बर्मा से युद्ध छिड़ा था। अंग्रेज सेना अधिकारियों ने 700 बंगाली सैनिकों को गोलियों से भून दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि सैनिकों ने बैलों के पीठ पर बैठकर जलमार्ग से रंगून जाने से मना कर दिया था।
2: घोर अत्याचार, 700 सैनिकों को मार डाला।
1: अंग्रेजों ने सैनिकों पर नहीं हमारे अस्तित्व पर गोलियां चलाई। ऐसे क्रूर अत्याचारियों को तो खदेड़ दिया जाना चाहिए देश के बाहर।
2: हाँ, इन्हें भगाना ही होगा बाहर।
1: एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, आप साधु सन्यासी लोग आत्मा को जगाने के पुण्य काम में तो लगे ही हैं, लोगों की आप पर आस्था भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सब मिलकर इस देश को अपनी आजादी के लिए जगाने का काम करें तो इससे बहुत मदद होगी।
4: हाँ हाँ, अवश्य अवश्य अवश्य अवश्य, अब तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे।
5: हम सब अवश्य इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे अमरचंद भाई।
4: हाँ भाई अवश्य।
6: हाँ अवश्य।
1: इस मुक्ति आंदोलन का मैं भी हिस्सा बनूंगा। याद रखें, इस देश का पहला मुक्ति आंदोलन सन्यासी फकीर विद्रोह था। आप जन जागृति के साथ क्रांति की योजनाओं में भी सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

0: क्या अमरचंद बाठिया यहीं रहते हैं?
1: जी हाँ, क्या बात है?
0: उन्हें ही बताएंगे, अमरचंद जी को बुलाइए।
1: अच्छा भाई।
2: कहो सिपाही, मैं ही अमरचंद बाठिया हूँ, क्या बात है?
0: राजा अधिराज महाराज जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में तुरंत बुलाया गया है आपको।
2: परंतु क्या मैं कारण जान सकता हूँ?
0: मुझे सिर्फ इतना ही आदेश था, आप जल्दी दरबार पहुँचे।
2: ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ।

0: महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की जय। महाराज के दरबार में अमरचंद बाठिया हाजिर हो।
1: महाराज की जय हो। मुझसे क्या अपराध हुआ महाराज, जो अचानक बुलवा भेजा आपने?
2: आप पहले आसन ग्रहण करें अमरचंद जी, फिर अपराध भी बताया जाएगा। सिपाही, दीवान साहब को बुलवाओ।
3: जो आज्ञा महाराज।
0: राजाधिराज, महाराजा सिंधिया के दरबार में दीवान जी हाजिर हो।
4: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज।
2: आइए दीवान जी, मुझे आपसे गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह करनी थी।
4: जी महाराज, इस पद के लिए हमें सचरित्र, ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति की आवश्यकता है, और जिसकी तलाश आपके आदेशानुसार जारी है महाराज।
2: ना ना दीवान जी, अब आपको तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने एक सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ लिया है।
4: अच्छा, कौन है वो महाराज?
2: सराफा में रहने वाला व्यापारी अमरचंद बाठिया।
4: महाराज, मैं अभी प्रबंध करता हूं उन्हें बुलाने का।
2: कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दीवान जी, वो यहीं उपस्थित है।
1: मैं? महाराज, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
2: इसीलिए तो हमने तुम्हें चुना है अमरचंद। नाना, घबराओ नहीं, तुम पूरी तरह से इस कार्य के लिए योग्य हो।
1: धन्य हो महाराज, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ग्वालियर राज्य के कोष का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।
2: हमें तुम पर पूरा भरोसा है अमरचंद। आज मैं जीवाजीराव सिंधिया अमरचंद बाठिया को ग्वालियर का कोषाध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से अमरचंद बाठिया ग्वालियर के भामा शाह हुए।
4: बधाई हो भामा शाह, बधाई हो।
5: दस मई 1857, भारत में आजादी की पहली जंग छिड़ी। पूरा देश इस महाक्रांति में भाग ले रहा था। मेरठ से शुरू हुआ क्रांति का ये सिलसिला ग्वालियर तक आ पहुंचा। ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई सिंधिया ने स्वाधीनता संग्राम में क्रांति की अलख जगाने के लिए यात्रा के बहाने आगरा, फतेहगढ़, प्रयाग, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, भोपाल रियासत और उज्जैन का दौरा किया। इस बीच अंग्रेजों के साथ मुकाबला भी हुआ। इसी दौरान महारानी बैजाबाई सिंधिया ने ग्वालियर आकर अमरचंद बाठिया से मुलाकात की।
1: महारानी की जय हो। आपको यहाँ देखकर हमारा हौसला बढ़ गया है महारानी।
6: इस समय हम बहुत जल्दी में हैं अमरचंद, हमें तुरंत दिल्ली जाना होगा।
1: आपके शौर्य को प्रणाम महारानी जी।
6: हमारे इस अभियान में एक समस्या है जिसे सिर्फ तुम हल कर सकते हो भामाशाह।
1: आप आदेश कीजिए महारानी, मैं तैयार।
6: हमने मेरठ छावनी के सिपाहियों को दिल्ली कूच के लिए तैयार तो कर लिया है, लेकिन समस्या अर्थ की है और हम वचन दे चुके हैं कि पूरा खर्च हम उठाएंगे।
1: आप फिक्र ना करें महारानी जी, अपना गंगाजली राजकोष है ना, जनता के लिए ये कोष हमेशा खुला है। बस एक अफसोस है कि महाराजा आप।
6: महाराज जीवाजीराव सिंधिया अभी अपरिपक्व हैं। उस दीवान के इशारे पर यह सब हो रहा है। खैर, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की खुशहाली के लिए स्वाधीनता यज्ञ में आगे बढ़ें। ये वक्त क्रांति में कूद पड़ने का है भामाशाह।
1: जी महारानी जी, आप आवश्यक राशि ले लीजिए।
6: पर अमरचंद, कोष हमें दे दोगे और तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो?
1: देश की स्वाधीनता के लिए हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं महारानी जी।
6: तुम्हारी सहायता से राष्ट्र को गर्व होगा अमरचंद।
5: साल भर के लगातार संघर्ष के बाद 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच क्रांति के महानायक तात्या टोपे, झांसी की रानी और नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में जा पहुंचे और सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों के साथ थी।
7: सेना क्रांतिकारियों के साथ थी, मतलब जीवाजी राव।
5: हाँ, जीवाजी राव सिंधिया और दीवान आगरा ब्रिटिश कमिश्नर के यहाँ जा पहुंचे और यहाँ ग्वालियर का शासन संचालन क्रांतिकारियों के हाथ में था। तभी आर्थिक संकट पड़ा और तात्या टोपे ने ग्वालियर के भामाशाह अमरचंद बाठिया से बात की और तुरंत उनको रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब से मुलाकात के लिए बुलवाया।
8: आइए भामाशाह अमरचंद, पधारिए।
1: देश रक्षा के इस युद्ध अभियान के आगे मेरा नमन स्वीकार करें रानी साहिब।
8: इस संकट की घड़ी में हमें आपके मदद की आवश्यकता है।
1: ये हम सबका संकट है महारानी।
9: ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों और हमारी सेना के सैनिकों को युद्ध अभियान के दौरान कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, उनके हौसले टूट रहे हैं।
1: नहीं महाराज, स्वराज्य प्राप्ति के लिए हौसले टूटने नहीं चाहिए।
8: तो आप हमारी मदद करेंगे ना?
1: मदद नहीं महारानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने प्रजा की खुशहाली के लिए ही तो कोष का उपयोग करने की शपथ ली थी, अब तो उस संकल्प को पूरा करने का समय आया है।
8: तुम्हारे कर्तव्य और ईमानदारी को हमेशा याद रखा जाएगा भामाशाह।
1: मैं अभी खजाने से धनराशि राव साहब को दिए देता हूँ।
8: बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी, अब हमारे सैनिकों की तलवारें दुगने उत्साह के साथ गरजेगी।
1: जीत हमारी ही होगी।

0: फिर क्या हुआ?
1: 1857 की क्रांति कहने को तो असफल रही, पर पूरे देश में जन जन में आजादी की ललक को जगा गई। देश आजादी की चाह में जलने लगा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। इधर राजकीय कोष क्रांतिकारियों में बांट दिए जाने के कारण अमरचंद बांटिया पर मुकदमा चला।
2: आर्डर आर्डर आर्डर, अमरचंद बांटिया, तुम पर दोहरे राजद्रोह का आरोप है।
3: दोहरे राजद्रोह को स्पष्ट करें ब्रिगेडियर नेपियर।
2: इन पर जो चार्जेस लगा है पढ़ के सुनाओ।
4: ग्वालियर के भामाशाह श्री अमरचंद बांटिया पर पहला आरोप है कि अमरचंद ने ग्वालियर स्टेट के गंगा जली कोष का पैसा लक्ष्मीबाई के विद्रोही सैनिकों में बांटा, जो ग्वालियर राज्य के प्रति द्रोह है। दूसरा आरोप कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह है।
3: आपके दोनों आरोप गलत हैं ब्रिगेडियर।
2: तुम अपने बात को साबित करो अमरचंद।
3: जब मैंने अपने गंगाजली कोष का धन सैनिकों में वितरित किया, तब ग्वालियर राज पर रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब का अधिकार था। मैंने रानी की आज्ञा का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाया है, राजद्रोह नहीं किया।
2: दूसरा आरोप को साबित करो।
3: आपका आरोप है मैंने कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह किया, परंतु हम कंपनी सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। आपने छल बल से हमारे राज्य को हथिया लिया है, इस नाते आप हमारे दोस्त नहीं है नेपियर। और दुश्मनों का नाश करने के लिए राष्ट्र कोष खोल देना राष्ट्रभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
2: नो नो नो, डू नॉट स्पीक एनी मोर, आगे बोलना ना, वरना यही शूट कर देगा। He should be hung till death. इस बामाशाह को सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। Hang his body on the tree in front of his house.
1: बाईस जून 1858 के दिन ग्वालियर के सराफा में अमरचंद बांटिया को उन्हीं के घर के सामने नीम के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था। और तो और उनकी देह को दुर्गंध आने तक वहीं लटके रहने देने के आदेश थे। अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार इंतजार करता रहा, पर लोग रुके नहीं। उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े।
5: हे बलिदानी, आप अमर हैं। आपकी देह से फैलने वाली दुर्गंध अनाचार और अत्याचार का साक्ष्य बनकर दूर दूर तक पहुंचेगी। एक एक देशवासी आपके बलिदान की सौगंध खाकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। हम आपके देश को स्वतंत्र कराएंगे। भाइयों बोलो, भामाशाह अमरचंद बांटिया
6: अमर रहे।
5: भामाशाह अमरचंद बांटिया
6: अमर रहे।

0: ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जंग में लड़ना या विद्रोह करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता आजादी प्राप्त करने का। अपनी आजादी के लिए तो हम अन्याय के खिलाफ चुप ना रहकर आखिरी दम तक लड़ सकते हैं, जो अमर चंद जी ने किया। वो तो कोई सिपाही नहीं थे, पर वो जो थे, जहां थे, वहीं रहकर उन्होंने निष्ठापूर्वक अन्याय के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी।
1: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज हम लेकर आए आपके लिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, और स्वास्थ्य चर्चा में आज जिस विषय पर बात होगी वो विषय है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, त्रिषा कौशिक जी। त्रिषा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: त्रिषा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आईं और आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, फिर क्यों और कैसे आईं इस फील्ड में?
1: मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ, मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज सब मेरा भोपाल से ही हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की NIT भोपाल से, फिर मैं BHEL भोपाल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में कार्यरत थी। वहाँ मैंने लगभग 7 साल काम किया ट्रांसफार्मर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट में। तो इस फील्ड में मैं ऐसे आई कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। हेल्थ इश्यूज़ पहले से ही थे पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक बार, यहाँ पे एक भोपाल में ही मार्केट है, वहाँ मैं कुछ सामान खरीद के आ रही थी तो मैं बेहोश हो गई। फिर सारे डायग्नोसिस हुए, सब टेस्ट हुए तो पता लगा मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम था, वो लगभग 5 था। तो वहाँ से फिर मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ट्रिगर हुए। एनीमिया तो था ही, साथ में धीरे धीरे फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होने लगे, पैनिक डिसऑर्डर होने लगा, सीवियर सोशल एंग्जाइटी। और ये लगभग 8-10 साल, मतलब आप समझिए कि 18-19 साल से लेके लगभग 27-28 साल की उम्र तक ये चलता रहा। और फिर उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, जिसको हिंदी में सम्मोहन चिकित्सा बोला जाता है, आई केम अक्रॉस दैट। और उसमें मुझे अपनी जो भी परेशानियां थी उसका सल्यूशन मिलना शुरू हुआ। तो इस तरीके से अपनी ही परेशानियों का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते, समाधान ढूंढते ढूंढते मैं इस फील्ड में आ गई।
0: ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या, एक बार आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं।
1: देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मतलब ये है, पास्ट लाइफ, नाम से ही पता चलता है कि ये पिछले जन्म की कोई बात है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस जीवन काल में जो हम फेस करते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, जो भी हम कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, उसके पीछे हमको बहुत बार लॉजिक नहीं मिल पाता। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को शरीर में कुछ तकलीफ होती है, पर वो टेस्ट कराएंगे अगर मेडिकली सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, पर इंसान तब भी तकलीफ में होता है।
0: ठीक है,
1: तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस जन्म का नहीं है, ये कुछ पहले से आ रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का ये मतलब है कि जो इस जन्म, जैसे अभी का मेरा जन्म है त्रिषा का, उससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उसमें कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसका प्रभाव आज मेरे इस जीवन काल पे आ रहा है। तो हम उस पास्ट लाइफ में जाते हैं, उसमें रिग्रेस पैक करते हैं सेशंस में, और फिर उसका पूरा तरीका होता है कि जो भी वहाँ ट्रॉमा हुआ या जो भी वहाँ पे चीज़ें अधूरी रह गई, जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे जिससे आज जीवन पे प्रभाव आ रहा है, उसको हील किया जाता है। इसीलिए ये थेरेपी है।
0: आपने थेरेपी समझाई, तो जब जो लोग इस अवस्था से गुजरते हैं जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा होता है, या अगर हम उसके लिए मरीज शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति जो इस से गुजरता है, जिसे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी अपन इसको थोड़ा मतलब सरल भाषा में कहें पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप उसे और समझाइएगा, कि वो अपने पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं को उसके जीवन में पुनर्वृत्ति होती है, इसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहेंगे।
1: रिग्रेशन का मतलब देखिए ये होता है, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना।
0: हाँ,
1: तो मतलब जो भी इंसान है जो इस थेरेपी को अंडरगो कर रहे हैं वो अपने पास्ट लाइफ में
0: बात करेंगे। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि हर तुरंत तो आदमी थेरेपी पे आया नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ एक सामान्य आदमी जिसके साथ ये होना शुरू हुआ है, तो जब वो आप, चलिए इस बात को ऐसे करते हैं कि जब उस जिस इंसान के साथ कोई भी इस तरह के थॉट्स उसे आ रहे हैं, तो वो स्वयं या उसके परिवार का व्यक्ति, पहली बात तो वो कैसे डायग्नोस करे इस बात को कि उसे आपकी जरूरत है और ये जो हो रहा है उसके पूर्व जन्म के थॉट्स, या जो आप कह रहे हैं कि उसे इस तरह की अवस्था में आ गया, ये आप कैसे डायग्नोस करते हो कि वो इस अवस्था में है?
1: जी, तो देखिए, जब भी कोई परेशानी में होता है, हम सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, और हम किसी भी थेरेपिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हम उस परेशानी से हम खुद डील नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमारा आज सुबह उठ के सिर दुखा तो हम उठते ही तो डॉक्टर के पास नहीं चले जाते।
0: बिल्कुल,
1: हम पहले खुद कोशिश करते हैं कि डाइट ठीक ले लें, या हम ठीक से नींद नहीं हुई है उससे ठीक हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। वैसे ही अगर कोई भी परेशानी जीवन में है, पहले हम खुद डील करते हैं। जब हमें लगता है वो चीज़ हमारे बस की बाहर हो गई है, तब वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट होता है, एक पार्ट है उसका। ठीक है। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अनुसार कोई भी इशू लाइफ में, कोई भी समस्या ज़िंदगी में, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, या वो कोई रिलेशनशिप इशू हो, या फाइनेंशियल इशू हो, कोई भी समस्या, वो या तो पास्ट लाइफ से आती है या इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आती है, जिसको टेक्निकली इनर चाइल्ड हीलिंग बोला जाता है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है।
0: फॉरेन एनर्जी से क्या मायने आपका?
1: फॉरेन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमसे फॉरेन है, वो हमारी खुद की नहीं है।
0: अच्छा,
1: ठीक है। तो वो किसी जिंदा इंसान या एनिमल की एनर्जी हो सकती है, या वो किसी मरे हुए इंसान या एनिमल की ऊर्जा हो सकती है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
0: अच्छा,
1: ओके। तो कोई भी समस्या, जैसा मैंने आपको बताया, तो पास्ट लाइफ या करेंट लाइफ ट्रॉमा या फॉरेन एनर्जी हो सकती है, या कोई तीनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है। तो इसको देखने का, इसको चेक करने का तरीका होता है कि जो समस्या किसी इंसान को हो रही है वो पास्ट लाइफ से आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है, वो हम थेरेपी में ही चेक करते हैं।
0: अच्छा, मतलब कोई
1: ऐसे
0: कोई
1: देख के मैं नहीं बता सकती कि आपका पास्ट लाइफ इशू है।
0: हाँ, मतलब आप जो भी, आपके जब वो उस अवस्था का मरीज आपके पास पहुँचता है तो आपकी थेरेपी का कोई हिस्सा है जिससे आप ये डायग्नोज कर पाते हैं।
1: बिल्कुल। और उनके ये सबकॉन्शियस माइंड से जाना जाता है, उनके अवचेतन मन से जाना जाता है कि ये जो पास्ट लाइफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: अच्छा,
1: देर इज अ टेक्निक टू इट।
0: ठीक है, ठीक है। वो एक मतलब टेक्निकल बात। तो कोई एग्जाम्पल देके आप, जैसे हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते, अगर आप अपना कोई केस याद करें जो आपके पास आए हों,
1: जी जी,
0: तो उनमें क्या आपने सिम्टम्स देखे, या फिर वो थेरेपी में क्या चीज़ें आपके सामने आई तो जिससे आपको पता चला कि ये केस, दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
1: जी, जैसे मेरे पास एक, मैं आपसे केस शेयर करती हूँ, उनके पास लाइफ में सब कुछ है।
0: हाँ,
1: ठीक है, जो एक बेसिक लाइफ में होना चाहिए, ठीक ठाक पैसा है और ठीक ठाक सेहत है, हम जैसे जिस ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जिसे बोलेंगे जीना चाहते हैं, वो सब कुछ है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में जो भी प्लेजर्स होते हैं, यानी कि कहीं शॉपिंग करना, मूवी देखना, यू नो, कहीं घूमने जाना, तो वो सब वो इंजॉय नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो जब इंजॉय नहीं कर पा रही थी तो एक लेयर उसकी पास्ट लाइफ की निकली, और हमने पास्ट लाइफ में देखा कि वो उस लाइफ टाइम में उनके जो पेरेंट्स थे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे।
0: अच्छा,
1: ठीक है। और पेरेंट्स जो थे वो बहुत रईस परिवार के नहीं थे, मतलब बस चल रहा था जीवन कैसे भी, थोड़ा सा इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये बच्चे ने डिसाइड किया, अच्छा इस लाइफ टाइम में वो फीमेल है, उस लाइफ टाइम में वो मेल थी।
0: अच्छा,
1: ठीक है। तो वो जो बच्चा था उसको लगा कि मेरे माँ बाप तो इतने स्ट्रगल से निकल रहे, तो बेटर है कि मैं किसी मॉनेस्ट्री में जाके रह लूँ, ताकि खाना पीना सब वहाँ हो जाएगा। तो वो बच्चा मॉनेस्ट्री चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के। अब जब वो वहाँ गया तो उसने एक वाव ले लिया, जैसे हम बोलते हैं ना, एक खुद में ही एक शपथ ले ली कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं कर सकते।
0: अच्छा,
1: और ये जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलेगी। ठीक है। तो वो क्या हुआ उस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो मॉनेस्ट्री चला गया, उसने अपना बहुत आध्यात्मिकली, अपने आप पर बहुत स्पिरिचुअली काम किया, आध्यात्मिक उसमें ये बहुत ऊपर पहुंचे, बट मरते समय उनको एक दुख था कि मैंने स्पिरिचुअली तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, पर जो जिंदगी के छोटे मोटे प्लेजर्स भी हैं उसको मैंने एंजॉय नहीं किया, बड़े तो छोड़ दो, मैंने कुछ जिंदगी को ठीक से भोगा नहीं।
0: वो यही थॉट्स उसको अपनी,
1: और वो इसके साथ मर गए।
0: अच्छा, ये पुरानी लाइफ में हुआ।
1: हाँ,
0: ठीक है।
1: अब इसके साथ वो इस सैडनेस के साथ चले गए। अब हुआ क्या था कि उस लाइफ टाइम में उन्होंने एक वाव ले लिया था।
0: वाओ, यानी शपथ की बारे में बात करें, ऐसा
1: शपथ मान, मतलब किसी और ने नहीं दिलवाई, जैसे हम अपने मन में ही एक
0: तय कर लिया था,
1: खुद तय कर लेते हैं कि मैं नहीं एंजॉय करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पा रहे, और उसके साथ वो जीवन खत्म हो गया। अब जब वो जीवन खत्म हो गया तो इस जिंदगी में

0: थॉट प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड, वो जो पर्सनालिटी थी उस जीवन काल की वो सबकॉन्शियसली प्ले कर रहा था और वो बोल रहा था कि मैं प्लेजर्स ऑफ लाइफ या जीवन में जो भी भोगना है मैं उसको एंजॉय नहीं करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पाते. तो वो इस जीवन काल में भी जो कुछ भी अच्छा हो रहा था उसको उसको जी नहीं पा रहे थे वो ठीक से.
1: इसको भी छोड़ दिया अच्छा होते हुए.
0: हाँ
1: अब तो यहाँ तो सब कर सकते हैं, वो जो हो गया वो तो हो गया.
0: करेक्ट.
1: लेकिन अब वर्तमान में कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन.
0: करेक्ट. तो वो जैसे ही उनको पता चला अच्छा ऐसी पास्ट लाइफ थी, उन्होंने अब स्वयं से उन्होंने एक अपने
1: फिर मान लिया
0: कि मेरे को ये एंजॉय नहीं करना, तो वो इस जीवन काल को भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे.
1: तो फिर वो किसी भी तौर पे आप तक पहुंचे, फिर आपने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा होगा.
0: हाँ
1: यहीं से एक बात की निकल के आती कि ये तो वो केस है जो आपके पास आया था
0: जी,
1: के अपन ने बात करी और आप हमने बात भी कही थी कि ऐसा कोई केस बताएं आप जो आपके पास आया हो ऐसा
0: जी.
1: अगर हम नए किसी व्यक्ति की बात करते हैं, अभी मान लीजिए कि मेरे मतलब काफी कम लोग हैं लेकिन कई लोग कई मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते कोई नया अगर कोई व्यक्ति इस चीज से सफर कर रहा हो तो वो स्वयं या उसका घर का व्यक्ति कब ये तय करे कि उसे आपके पास जाना है? इसके कुछ कुछ सिम्टम्स उन्हें खुद मिलते हैं क्या, या अगर हम अभी बता पाएं अपने कार्यक्रम के माध्यम से
0: जी, जी.
1: अगर वो अपने परिवार में या व्यक्ति में ऐसा कुछ देख रहे हैं तो वो आप तक या आप जैसे किसी क्लिनिकल मतलब थेरेपिस्ट के पास पहुंच सकें.
0: देखिए क्या होता है कि लाइफ में जब भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम हिंदी में चेतन मन बोलते हैं, वो उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है, मैं इसका एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ कि किसी के पैर बहुत दुख रहे हैं और वो बहुत टाइम से दुख रहे हैं. सब कुछ कर लिया, मालिश करवा ली, सब करवा लिया पर पैर दुख रहे हैं. अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, डायग्नोसिस होगा और उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण निकलेगा. तो वो कारण जो समझ में आएगा कि कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, कोई विटामिन कम है, कुछ मिनरल कम है, जो भी है उसके कारण ये तकलीफ हो रही है. तो चेतन मन जो होता है वो हमेशा क्यों का जवाब ढूंढता है. अब लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके पीछे हम कितना भी तर्क लगा लें, लॉजिक लगा लें, हमको क्यों का जवाब नहीं मिलता. तो जब जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, चैलेंज हो रहा है जिसके पीछे क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है.
1: इससे एक बात और निकल के आती है त्रिशा जी के मतलब क्या माने हम के भाई देखिए जैसे अभी अपन ने बात करी कि कोई ये फील करता है जैसे आपने बताया कि जब उसको अपने क्यों का उत्तर ना मिल रहा हो तो सामान्यतः लोग आपके पास ही थेरेपी के लिए आ जाएं पहले, ये बेटर है, या वो साइकेट क्योंकि लोग साइकेट्रिस्ट को आप जानते हैं, लोग सामान्यतः साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले ये समझ पाएं
0: जी जी
1: कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं इस थॉट्स को लेकर या पहले किसी थेरेपिस्ट से मिल लें.
0: देखिए ये जो है ये डिसीजन इंसान ही लेगा जिनको तकलीफ हो रही है. पर मैं थोड़ा सा
1: अच्छा, इसको अगर ऐसे बात करें कि इसको आप जैसे आप थेरेपिस्ट हैं तो आप इसे किस श्रेणी में रखते हैं, क्या उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आप उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे या केवल इसको कैसे मतलब अलग थिन लाइन होगी संभवतः. मैं इसको यूं भी कह लेते हैं कि आपके पास आने वाला जो मरीज है वो और साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला मरीज इनके बीच में कोई एक थिन लाइन है.
0: पूछिए ना
1: तो
0: मैं जो जवाब दे सकती हूं दूंगी
1: आपको. वो बताइए आप क्या अंतर होगा उनमें, कैसे अंतर करें एक सामान्य आदमी और आप.
0: देखिए जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं. ठीक है, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ब्रेन में काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं या ब्रेन की क्या केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, और वो मेडिसिंस भी देते हैं. जो हिप्नोथेरेपी होता है या उसका जो एक पार्ट होता है विच इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता है और इसमें हम ऊर्जाओं पे ज़्यादा काम करते हैं.
1: अच्छा.
0: ऐसा नहीं है कि बॉडी पे काम नहीं होता, बॉडी पे भी काम होता है. पर अब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे या क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो पदार्थ या मैटर से पहले आती है. इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हम खुश हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखती है,
1: बिल्कुल.
0: हम दुखी होते हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखने लगती है. अब शक्ल तो एक ही है,
1: बिल्कुल.
0: पर क्योंकि अंदर ऊर्जा का प्रवाह चेंज हो गया तो उससे जो मैटर है जो कि हमारा चेहरा है वो अलग दिखने लगता है. तो हमेशा एनर्जी जो होती है वो मैटर को डिटरमिन करती है. तो ये जो थेरेपी है इसमें हम सारे स्तरों पे काम करते हैं. अच्छा. हम थॉट पे भी काम करते हैं यानी कि मानसिक स्तर पे, हम इमोशंस पे भी काम करते हैं यानी कि भावनात्मक स्तर पे, हम ऊर्जा के स्तर पे भी काम करते हैं जिसको एनर्जी बॉडी या प्राण शरीर बोला जाता है, और हम फिजिकल बॉडी पे भी काम करते हैं. अब देखिए किसके पास जाना चाहिए ये हमेशा जो इंसान तकलीफ में है ये उनका डिसीजन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है, तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसने रिजल्ट नहीं दिए होते तो वो अभी तक गायब हो गया होता। तो ये निर्भर करता है जो इंसान तकलीफ में है उन पे। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिप्नोथेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो अराउंड 93-94% सक्सेस रेट है इस थेरेपी का। अच्छा। लोग अभी भी इसके बारे में बहुत जानते नहीं हैं, पर ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है।
1: हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अब आप हम एकदम थोड़ा विस्तार से भी कहेंगे आपसे, या जो आपका प्रैक्टिकल तरीका है आप ऐसे ही बताइए कि जो आपके पास मरीज आता है या आया।
0: जी जी,
1: फिर वही किसी वो डिपेंड आप जैसे भी करना चाहें किसी मरीज को ध्यान में रख के कि आपकी जो ये थेरेपी इसमें क्या क्या, जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास अगर इंसान जाता है अच्छा, तो वो कोई टेस्ट लेते हैं संभवतः और वो मेडिसिन देते हैं, फिर 10 दिन बाद चेक करते हैं, यही एक सामान्य तरीका होता है। वो आपके पास जब कोई आता है तो आपका क्या तरीका होता है, कैसे ट्रीट करते हैं?
0: जो भी हमारे पास तकलीफ लेके आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी उनकी समस्या है वो कहीं से भी आ सकती है, वो पास्ट लाइफ से आ सकती है, इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आ सकती है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है। कभी कभी जो समस्याएं होती हैं वो एंसेस्ट्रली भी आती हैं, जिसको हम आम भाषा में या एक पर्टिकुलर रिलीजन में हम उसको पितृदोष बोलते हैं। तो हम एक एक करके चीज़ों को रूल आउट करते हैं। तो जैसे पहले सेशन में आए तो हम कोई एक चीज़ चेक करेंगे कि ये दिक्कत तो नहीं है उनको, अगर नहीं है तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो यूजुअली ये देखा गया है कि किसी भी एक इशू को हील करने के लिए ऑन एन एवरेज 6-8 सेशंस तो लग ही जाते हैं।
1: सेशन की हम वो जानना चाह रहे थे, अगर संभव हो तो आप इसे हमें जितनी सरल भाषा में बता पाएं कि वो सेशन किस तरह का होता है।
0: देखिए जो सेशन होता है, पहले सेशन में तो मैं पर्सनली जो भी समस्या लेके आते हैं उनके जीवन के बारे में सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है, ताकि पता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। दूसरे सेशन से जब हम सम्मोहन चिकित्सा वाले सेशन शुरू करते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो उसका पार्ट होता है, हर सेशन जो होता है वो लगभग 1.5-2 घंटे का होता है, और शुरुआत में 15-20 मिनट लगते हैं, जिसमें जो भी इंसान है जिनको तकलीफ है उनको एक सम्मोहन की स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हिप्नोसिस के स्टेट में या ट्रांस के स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसमें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को एक्सेस कर लेते हैं। फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ कमांड देते हैं, और जैसे जैसे कमांड दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अवचेतन मन उससे रिलेटेड चीज़ें सरफेस पर लाने लगता है। तो अगर कमांड दिया कि आपका वो भाग ऊपर आएगा जिसने इस जीवन काल में पहली बार गुस्सा महसूस किया, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रिसाइज होता है। अभी मैं आपसे कॉन्शियसली पूछूंगी आपको जिंदगी में पहली बार कब गुस्सा महसूस हुआ, आप बोलोगे मुझे याद नहीं है, पर अवचेतन मन को पता होता है। तो वो 2 साल की उम्र में हुआ, 1 साल की उम्र में हुआ, कि 4 साल की उम्र में हुआ, जब भी पहली बार गुस्सा महसूस हुआ वो सामने आके खड़ा हो जाता है वो पार्ट। तो 2 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया सपोज, फिर उसको पूरा हीलिंग करने का प्रोसेस होता है।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे एक सेशन जो होता है वो 1.5-2.25 घंटे का होता है। इसमें मन की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुछ भी दवाइयां नहीं दी जाती, इसमें कुछ भी एनेस्थीशिया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति को लेके, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज यूज्ड टू हील एनी इशू।
1: अभी जितनी बात हुई इसमें प्रश्न 2 निकल गए आपकी बात से, तो पहला प्रश्न मैं आपसे जाना, फिर उस पर दूसरे पाएंगे पितृदोष वाले पे। पहला ये कि जो आपका ये थेरेपी है ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन है? अभी
0: देखिए हिप्नोसिस का जो स्टेट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है।
1: अच्छा,
0: तो हिप्नोसिस को हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें,
1: मतलब मेडिकल साइंस भी उसका पार्ट है, मतलब
0: उसमें ब्रेन वेव्स लोअर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है। जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है ठीक, वो जो होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की,
1: मतलब साइंटिफिकली प्रूव है। एक तो
0: हिप्नोसिस का स्टेट साइंटिफिकली प्रूवन है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की अगर बात करेंगे तो उसका पीछे साइंस हम नहीं लगा सकते, पर उसके देखिए उसके क्या प्रूफ आए हैं कि बहुत लोगों ने पास्ट लाइफ में कुछ देखा और वो जगह उन्होंने करेंट लाइफ में नहीं देखी है, ठीक है, वो गए भी नहीं उस जगह पे, पर उन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो जगह देखी और उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे एक ऐसा घर है, उसके नीचे ये सामान गड़ा हुआ है, और जब उन्होंने जाके उसको फिजिकली वेरीफाई किया तो वो चीजें एक्चुअली थी। दूसरा, ये बहुत ही आम सवाल होता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं। देखिए एज ए थेरेपिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद अगर जिनको जो समस्या थी वो ठीक हो गई है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट,
0: वो सबसे बड़ा प्रूफ,
1: ये सबसे बड़ी सही बात। मतलब एक थेरेपी हमने करी, वो खैर वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी बात। दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, पितृदोष का भी आपने जिक्र करा था,
0: जी जी,
1: तो आपकी जो थेरेपी है इसमें पितृदोष पर भी आप जब ध्यान देते हैं तो क्या क्या माने ज्योतिष से जुड़ी हुई है आपकी थेरेपी?
0: देखिए ये ज्योतिष से तो नहीं जुड़ी हुई है, वो अलग ही साइंस है। यहाँ पे हम फिर से अवचेतन मन से देखते हैं कि जो भी समस्या आ रही है उसका कोई एंसेस्ट्रल ओरिजिन तो नहीं है, पितरों से तो नहीं आ रही है, और अगर वो पितरों से आ रही है तो फिर उसको भी हील करने का एक तरीका होता है। पर हम इसमें किसी का नेटल चार्ट या किसी की हम पत्रिका देख के कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें अवचेतन मन के जरिए ही पता लगाया जाता है कि ये एंसेस्ट्रली आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: मतलब कुल मिला के वो हम अगर सरल भाषा में थोड़ा सा समझें तो ये हमारे श्रोता को ये बात समझ में आ पाए कि वो उनके पेरेंट्स से या पेरेंटल से किस तरह से अगर जुड़ा है तो या नहीं है।
0: जी
1: यही मुझे लगता है इसका, यहाँ
0: पेरेंटल या उनसे भी पहले कोई भी जनरेशन
1: जनरेशन
0: जाता है,
1: कभी कभी या दो दो तीन पीढ़ी या जो भी माने उसे,
0: कभी कभी 14वीं 15वीं जनरेशन पहले से चीजें आती हैं।
1: एक चीज और, जो आपका ट्रीटमेंट है जो थेरेपी है, इससे आपने जब देखा होगा आपके पास फर्ज करें 2 सेशन 30 सेशन या आपके पास अलग अलग तरह के लोग आए होंगे जो इससे ग्रसित हैं, तो उनको आपने 6 महीने बाद 4 महीने बाद जो भी एक्स टाइम के बाद देखा, तो आप देखते हैं कि उनमें परिवर्तन आया, लाभ आया, मतलब जो जिस अवस्था
0: में खुद ही समझ में आ जाता है।
1: अच्छा, ये वो कहते हैं आपसे?
0: हाँ, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वायरल फीवर हो गया।
1: हाँ,
0: हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, 3 दिन का फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया, वो बोलते हैं 3 दिन सुबह शाम जो भी दवाइयां हैं वो खा के आना, 3 दिन बाद बताना आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमको समझ में आता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं, फिर डॉक्टर या तो प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं या दवाइयां बंद कर देते हैं। तो सेम इस थेरेपी में भी ऐसे ही होता है कि हर सेशन के बाद जिनको जो समस्या थी उनको समझ में आता है कि अब मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट आ गया है।
1: अच्छा,
0: तो ये ज्यादा मायने रखता है कि जो थेरेपी ले रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: और थेरेपिस्ट उनके बारे में कैसा फील कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो समस्या में थे
1: वो कैसा फील कर रहे
0: हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो मेन है,
1: बंद हो गया या कोई वाली बात।
0: करेक्ट।
1: अच्छा, अगर आप कोई ऐसी कोई अपना केस याद करें तो किस कोई, मतलब अगर आप एग्जाम्पल देके बता पाए कि परिवर्तन उनमें वो आए हों आपकी थेरेपी लेने के बाद,
0: किस तरीके के परिवर्तन?
1: आप अगर अपना कोई भी व्यक्ति को याद करती हैं कि वो आपके पास आए और आपने उनको 2 या 3 एक्स नंबर ऑफ सेशंस दिए, तो उसके बाद उनमें वो चेंजेस दिखे आपको, तो आप बता पाएंगे कि जब वो पहली दफा आपके पास आए थे तो उनके अंदर ये था और फिर 3 सेशन के बाद ये परिवर्तन आ गया या ये लाभ उनको मिला उस तरह से?
0: ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ है, जैसे जब आते हैं तो कुछ होते हैं जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं।
1: अच्छा।
0: और कुछ सेशंस के बाद देखो तो उनका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि शरीर में कुछ तकलीफ है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, और 1-2 सेशंस होते हैं और उसके बाद उनको नी पेन चला गया। एक का तो मैंने देखा था कि 1 सेशन में नी पेन चला गया।
1: अच्छा।
0: एक का देखा था 4 सेशन में लोअर बैक पेन चला गया।
1: अच्छा।
0: तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं।
1: कोई ऐसा कोई केस याद करके बताएं आपके, कोई विशेष जिसने आपको बहुत प्रभावित करा हो आज तक के आपने जितने सेशंस लिए, जितने केसेस आपके पास आए, उन केस में कोई स्पेशल केस आपको याद है कि उसमें इस अवस्था से फिर वो बेहतर हुए?
0: जी, ये मैंने काफ़ी जगह शेयर किया है। तो मेरे पास एक आई और उनको बहुत तकलीफ होती थी इस मायने में कि उनका सिर बहुत दुखता था।
1: अच्छा।
0: और फिर उनको एक आध बार सीजर्स भी हुए, वो ना बहुत टाइम से इस चीज़ से गुजर रही थी।
1: हाँ।
0: और उन्होंने बहुत जगह दिखाया पर उनको कोई
1: फायदा नहीं हो रहा था।
0: राइट। तो फिर वो आई, उनको लगभग 9 सेशंस लगे और उसके बाद मतलब उनकी एक टाइम पे तो ये स्थिति थी कि वो हॉस्पिटल में 15 दिन रहती थी, 15 दिन बाहर रहती थी, 15 दिन हॉस्पिटल 15 दिन बाहर, ये उनकी स्थिति थी। और वो जहाँ जहाँ दिखा सकती थी भोपाल में बाहर उन्होंने सब जगह दिखाया। फिर बाय गॉड्स ग्रेस ये 9 सेशंस हुए और वो आई भी इसीलिए कि अब कुछ मेरे पास सोल्यूशन नहीं बचा है तो हाँ। चलो ये भी ट्राई कर लो। उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बोला कि ट्राई करके देखो और 9 सेशंस के बाद उनकी पूरी तकलीफ ठीक हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। और वो इतनी प्रभावित हुई माइंड के पावर से कि उन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। वो इंजीनियर थी, फिर उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा और अब वो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है।
1: गुड, मतलब ये एक जीवंत एग्जांपल।
0: उन्होंने मुझे बिफोर आफ्टर फोटो भी दिए थे। आप पहले के फोटो जो हैं और जो बाद के फोटो हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नाउ शी इज एबल टू लिव हर लाइफ एंड आप सोचिए ना, किसी को 24/7 सिर दुख रहा है तो वो कैसे काम करेंगे। फिर एक और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, एक और थी जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी और जब ये थेरेपी हुई जिस दिन ख़त्म हुई उसके 3-4 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है.
1: गुड.
0: एंड उनके कुछ ट्रीटमेंट्स थे, IVF थे, IUI थे, वो भी कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे थे. और इसके बाद शी वॉज एबल टू कंसीव. तो माइंड का इतना पावर होता है. हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि मन में बड़ी शक्ति है, मन में बड़ी शक्ति है. पर जब प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में ये देखा है अपने साथ और इतने लोग जो आते हैं, कि मन की क्या शक्ति होती है वो मुझे एक्चुअली सामने सेशंस में दिखाई देता है. कि ये सुनना अलग बात है और उसको जब एक्सपीरियंस करो तो समझ में आता है कि क्या पावर है हमारे मन का.
1: लोगों को इस चीज़ को लेके ये जो ये समस्या है या इसका ट्रीटमेंट, दोनों की बताइएगा आप, कि कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, तो अगर हैं तो आम भ्रांतियाँ क्या हैं?
0: पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेके सबसे बड़े भ्रांति, सबसे बड़ा क्वेश्चन रादर ये होता है, उन्हें लगता है हम पास्ट लाइफ में तो अटक के नहीं रह जाएंगे. नहीं होता.
1: अच्छा,
0: आज हम बैठे हैं और मेरे साथ 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं याद करके आज भी रो रही हूँ. तो मैं क्या 15 साल की उम्र में अटक के तो नहीं रह गई? मैं फिजिकली तो यही हूँ. तो वैसे ही जो माइंड होता है वो थोड़ा और पीछे चला जाता है, पास्ट लाइफ में चला जाता है. तो उनका मन ही बस ट्रैवल कर रहा है. फिजिकली तो वो यही है, तो वो वापस फिजिकल बॉडी में ही आएंगे. तो पास्ट लाइफ में कोई भी अटक के नहीं रहता है.
1: ठीक है,
0: ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. दूसरा ये होता है कि पास्ट लाइफ सही में होती है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि थेरेपी के बाद लोग उठ के बोलते हैं ये हमारा इमेजिनेशन तो नहीं था, हमारी कल्पना तो नहीं थी. तो मैं उनको बोलती हूँ कि इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको लगता भी है कि आपका इमेजिनेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हीलिंग पूरी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हो रही है. और सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं होता.
1: अच्छा,
0: इसलिए आप जब इसके थोड़ी और डिटेल में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, लोग विजुअलाइज करते हैं जिंदगी में कोई चीज पाने के लिए, वो कभी कभी काम कर जाती है. क्यों काम करती है?
1: इसी का हिस्सा हो गई वो,
0: क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है वो अभी एक्चुअल में है और वो उसको ले आता है फिर आपके जीवन में.
1: कई बार कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि वो इंसान को लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है.
0: हाँ.
1: रीजन नहीं निकाल पाता उसे, फील होता अचानक. जैसे अपन एग्जांपल दे के अभी मान लीजिए मुझे या आप में, हम दोनों में से किसी को थॉट आए कि मैंने तो ये इंटरव्यू पहले करा है या हम इसी तरह बैठे थे.
0: बिल्कुल,
1: ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं सामान्यतः सबके साथ.
0: डेजा वू बोला जाता है.
1: हाँ, उसका आपने साइंटिफिक, हम तो ये मानते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है ये
0: जी,
1: ऐसी आता है. आज आपसे बात करने से ये बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा कुछ सभी के साथ होता है. जब मुझे लगता हुआ कि मेरे साथ होता है या हमारे सुनने वाले होता है, लगता है शायद उनके साथ होता है अकेले.
0: जी
1: ठीक है. एक बार और, के जो श्रोता हमारे अभी पहली बार सुन रहे हैं इस टॉपिक को या अभी इसके, कई सारे ऐसे हमारा मानना ऐसे लोग होंगे जो उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस या इसको एक इस सब्जेक्ट के तौर पर नहीं सुन पाए हों, उन्हें आप क्या सलाह देंगी?
0: मैं ये सलाह दूंगी कि अपने जीवन को अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हम जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं. ठीक है, या हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें हैं. और वो जागरूकता अगर मेंटेन रहती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह सो के उठे या रात को, जब हम वो एक स्टेट होता है जब हम पूरे सोए भी नहीं है, हम पूरे उठे भी नहीं है, तो हमको ना एकदम से क्लिक करता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ हो रही है उसमें हमको ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए. और हम वो अप्लाई करते हैं तो हमें सोल्यूशन भी मिलता है. पर ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है कि हम जब अपनी जिंदगी को अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तो हमें समझ में आता है हम क्या हैं, क्या नहीं है, हमारे क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है. हम जैसे हम फॉरेन एनर्जी की बात कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिहेवियर होते हैं जो हम खुद नहीं है, वो कुछ और हमारे अंदर से एक्ट कर रहे हैं. तो ये तभी पकड़ में आता है जब हम अवेयर है. तो
1: मैं या थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाए ऐसा कह सकते हैं?
0: देखिए, थेरेपिस्ट के पास भी हम तभी पहुंचेंगे जब हम अपनी परेशानी को लेके अवेयर होंगे.
1: अब देखिए, अवेयर होने वाली बात है, ये तो खुद इंसान
0: मुझे पता होना चाहिए ना मेरा सिर दुख रहा है, तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी. अगर मैं उसको इग्नोर करती रहूं, आप समझ रहे?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो पहले अपनी तकलीफ तो पकड़ में आनी चाहिए ना, वो भी तभी आएगी जब आप जागरूक हैं. अब देखिए, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत फिजिकल है,
1: दिख भी रहा है,
0: पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. ये गुस्सा जो है इसको आप मेजर नहीं कर सकते.
1: इसको मेजर नहीं कर
0: सकते. मुझे दूसरों से बहुत जलन है. या मैं अपने जीवन में, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स सब ऐसे हैं.
1: वो जैसे आपने सबसे पहले केस की बात कही थी, आपने बताया था कि वो इंसान ने खुद ही वाव ले लिया, खुद ही ने शब्द मान लिया कि मैं तो अब खुश रह नहीं सकता हूँ, उस तरह की बात.
0: बिल्कुल. तो अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सब बस मतलब से ही दोस्ती रखे हुए हैं, तो मेरे को पहले तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं. और वो कैसे पता चलेगा? जब हम जागरूक होंगे.
1: बिल्कुल, मतलब अभी तक का जो चर्चा हुई आपसे, ये हमारा टॉपिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अपने आप में एक तो वास्ट टॉपिक है,
0: काफी
1: फिर उसको समझना और फिर उसको इतनी सरल भाषा में हमने प्रयास पूरा करा और हमें आपका सहयोग मिला कि आपने उसको हमें समझाया कि क्योंकि इसको पहले तो समझना ही बड़ा मुश्किल है, फिर लग भी रहा था कि इस पर क्या ही बात होगी, लेकिन जो आपसे बात हुई अभी तक की उससे मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि इस तरह की समस्या होती है, क्योंकि अभी जो आपसे बात करी इसके पहले हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता होगा, आपसे बातचीत होने के बाद समझ में आया कि ये तो बड़े आम, मतलब आम सी चीज़ें हैं, आम सी समस्याएं हैं जो लगभग लोगों के साथ होती है और लोग खुद ही उसको कहीं ना कहीं सुलझा भी लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां उन्हें थेरेपिस्ट तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। और अब उस थेरेपी में हिप्नोटिज्म कहेंगे ना, वो एक उसका ही हिस्सा है,
0: हिप्नोथेरेपी का हिस्सा है रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन,
1: तो वो एक थेरेपी का ये हिस्सा है, उस तरह से ट्रीट करा जा सकता है, अलग अलग सेशन से करा जा सकता है और आदमी सामान्य जीवन वापस से जी सकता है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है या सिर्फ परेशानी के साथ ही इसके साथ अपना समय गुजारा जाए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक थेरेपिस्ट के पास उसकी मदद ली जाए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के विषय हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते रहेंगे और इस विषय पर भी आगे भी हम प्रयास करेंगे कि और जितनी रोशनी डाल सकें, चाहे तुषार जी की मदद से और इनके तरह के और भी कई थेरेपिस्ट की तरफ से, इसको और विस्तार से भी आगे प्रयास करते रहेंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज हमने बात करी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग था कार्यक्रम में सतीश बाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी आपके साथ। और अब मुझे और त्रिषा जी को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आज हम विचार कर रहे हैं कि विश्व सभ्यता पर स्वामी जी का क्या प्रभाव पड़ा था। विषय थोड़ा कठिन है, अतः इस कड़ी में हम विवेकानंद के कुछ शिष्य तथा रामकृष्ण मठ के स्वामी लोकेश्वरानंद जी के विचारों को भी सुनेंगे।
1: सबसे पहले हमें समझना होगा कि विश्व सभ्यता का अर्थ क्या है। विश्व में अनेक सभ्यताएं हैं। भारत में एक तरह की सभ्यता है और आप चीन जाएं तो वहाँ एक अन्य प्रकार की सभ्यता पाएंगे। ये विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं ऊपरी तौर से तो विभिन्न हैं, पर उनमें कई बातों की समानता है। सभी सभ्यताओं का एक ही लक्ष्य है, आनंद, सभी व्यक्तियों की सुख शांति। प्रत्येक सभ्यता हर व्यक्ति को सुख शांति देने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।
0: इसी बात को समझाते हुए स्वामी लोकेश्वरानंद जी कहते हैं,
2: अब हम सुख को कैसे परिभाषित करें? क्या इसका तात्पर्य भौतिक सुख सुविधाओं से है कि खाने के लिए अच्छा भोजन मिल जाए, पहनने को अच्छे वस्त्र मिल जाएं, रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए? हाँ, ये एक प्रकार का सुख है। जहां तक शरीर का संबंध है, हमें इन चीजों की जरूरत है, ये हमारे लिए अनिवार्य है। हमें निश्चित रूप से धन चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, पर यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए केवल रोटी नहीं, मानसिक सुख शांति भी चाहिए। भौतिक सुख सुविधा तो जरूरी है, पर मन की सुख शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच्चा सुख शरीर में नहीं बल्कि मन में है। भारत की दौड़ इसी मानसिक सुख शांति की ओर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भौतिक सुख निंदनीय और उपेक्षित रहा है, परंतु लक्ष्य हमेशा मन का सुख और हृदय की शांति रहा है।
0: जब हम पीछे मुड़कर हजारों साल पहले मोहनजोदाड़ो के समय पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि उस समय देश उन सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था जो आज आधुनिक कहलाने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। नगर के मध्य सामान्य उपयोग के लिए अद्भुत अत्याधुनिक विशाल स्नानागार, चौड़ी सड़कें, भव्य भवन, बेहतरीन मल तथा जल की निकास व्यवस्था और कुछ अन्य नागरिक सुविधाएं थीं जो आज भी अप्राप्य हैं।
2: भारत बुनियादी भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता से विमुख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मन की शांति को इससे भी ज्यादा जरूरी माना गया है, क्योंकि सच्चा सुख इंद्रिय भोग में नहीं मन की शुद्धि में है। इसी कारण भारत में मानसिक स्तर हमेशा उच्च और श्रेयस्कर रहा है। मैं किसी को प्यार करता हूँ, यदि वो बुद्धिमान है, शिक्षित है, तो वो मुझे नई रोशनी दे सकता है। मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, कुछ पाने के लिए टटोल रहा हूँ, आप मुझे रोशनी दिखा सकते हैं। आपसे मुझे रोशनी मिल सकती है और मैं आपको परम आदरणीय मानकर शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु भले ही बड़ी मामूली सी झोपड़ी में निवास करते हो, उनके पास मोटर, बंगला, ऐशो आराम के सामान भले ही ना हो, तथापि वे मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं, जो हमें ज्ञान की रोशनी देता है, वो हमारे लिए परम आदरणीय है। सचमुच मन शक्ति, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति ही सच्ची शक्ति है।
1: यही विचार आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने हमें दिया था।
3: ब्रिटिश दार्शनिक जॉन रस्किन ने कहा है, एक विचार में संपूर्ण सेना से कहीं अधिक शक्ति होती है। भारत ने सर्वदा इसी मन की शक्ति में विश्वास किया और तदनुकूल यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई वो शताब्दियों से आज तक अक्षुण्य बनी हुई है। भारत पर घोर विपत्तियां आईं, विदेशियों ने भारत को कंगाल बना डाला, लेकिन भारत फिर भी जिंदा है? वो कौन सी चीज है जिसने इसे सजीव बनाए रखा है, जबकि अति प्राचीन तथा सशक्त मानी जाने वाली यूनानी, रोमन तथा अन्य सभ्यताएं धराशायी हो गईं, काल के गाल में समा गईं? इसका क्या कारण है? वो कारण हमें ढूंढना होगा। आधुनिक इतिहासकार इसका कारण बताते हैं कि भारत ने बौद्धिक समृद्धि को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था उतना ही दिया। उसके पीछे पागल नहीं हुआ, परंतु विचार की उदात्तता यहां सर्वोपरि मानी गई। यहां कोई व्यक्ति भव्य भवन की जगह एक दीनहीन कुटिया में ही क्यों ना रहता हो, तथापि वो सुखी है।
0: स्वामी जी के इन्हीं बातों को उनके शिष्य भी दोहराते हैं।
4: मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मैं उन्हें पढ़कर आनंदित होता हूं। आपके पास कुछ अच्छे गीत हैं, उन्हें सुनने में ही आपको सुख मिलता है। बिल्कुल सादा भोजन पाकर ही हम मस्त हैं, बड़े साधारण घर में रहकर भी हम सुखी हैं। मामूली वस्त्र धारण करके भी हमारे मन में सुख शांति विराजमान है, क्योंकि हमारा आदर्श रहा है सादा जीवन, उच्च विचार। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, बस हमारे विचार परिष्कृत होने चाहिए।
1: स्वामी जी ने एक व्याख्यान में कहा था,
3: क्या आपने नहीं देखा कि हमारे देवी देवता भी अल्प वस्त्रधारी हैं? उनके शरीर कोट से ढके नहीं हैं और ना ही वे कमीज पहने हुए दिखते हैं, वे बिल्कुल ही सादे वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहां की जलवायु गर्म है, रूस में वर्ष भर काफी ठंड पड़ती है, इसलिए ओवरकोट की भी जरूरत होती है, पर हमें तो कोट की भी शायद ही जरूरत पड़ती है। कोई कह सकता है कि आप बहुत पिछड़े हैं क्योंकि आपके पास कोट नहीं है, परंतु जब भारत में उतने कपड़े की जरूरत ही नहीं तो फिर हम फिजूल के कपड़े क्यों धारण करें? स्वयं को जब जरूरत महसूस नहीं हुई तो हमारे मूर्तिकारों को देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते समय उन्हें कोट पहनाने का ध्यान ही नहीं आया। बाहरी वैभव और आडंबर को महत्व ना देने वाले उन शिल्पकारों ने इस बात का ध्यान जरूर रखा कि देवी देवताओं की मूर्तियों से उनकी सौम्यता, उनका आंतरिक तेज और ऐश्वर्य अवश्य प्रकट हो।
0: हमारे ऋषि कंदराओं गुफाओं में रहते थे, लेकिन वे थे प्रकांड विद्वान, अत्यंत प्रगतिशील। उनके मौलिक प्रबुद्ध विचार अक्षुण्ण हैं, शाश्वत हैं और हमारी अक्षय संपत्ति है। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था,
4: भारत एक विचार है, चिंतन की एक दृष्टि है, एक जीवन दर्शन है।
1: इस विचार को, इस जीवन दर्शन को स्वामी विवेकानंद विदेशों में ले गए। स्वामी जी ने कहा था, मैं घनीभूत भारत हूँ। सचमुच आज से 100 वर्ष पूर्व जब वे अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में सारी दुनिया के कोने कोने से आए प्रकांड विद्वानों और धर्माचार्यों के बीच सनातन धर्म का संदेश सुनाने खड़े हुए, तो वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भारत बोल रहा था।
5: वे स्वामी विवेकानंद नहीं थे, अपितु उनके माध्यम से सारी भौतिकवादी दुनिया को फिर एक बार आध्यात्मिक संदेश सुनाने के लिए प्राचीन गौरवशाली भारत सिमट आया था। उस युवा सन्यासी के होठों से भारत माता की वाणी मुखरित हुई थी, जिन्होंने कहा था,
3: भगवान बुद्ध ने प्राची को संदेश दिया था और मैं पाश्चात्य देशों के लिए संदेश लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे देशों में भौतिक सुख समृद्धि है, लेकिन ये मत सोचो कि मानव जीवन के लिए इतना ही काफी है। खाओ, पियो और मौज करो। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? कदापि नहीं। मानव जीवन ने इंद्रिय सुखों के लिए, सांसारिक वासनाओं के भोग हेतु जन्म नहीं लिया है, अपितु उसका जन्म तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए और सर्वोच्च सत्य प्राप्त होने तक निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर पहुंचने के लिए ही हुआ है।
0: 100 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों को आगाह किया था।
3: मैं देख रहा हूं कि तुम युद्ध की ज्वालामुखी के कगार पर खड़े हो। वो ज्वालामुखी अगले 20 वर्षों में फूट पड़ेगा।
1: संभवतः उन्होंने ये बात 1894-95 में कही थी। 20 वर्ष होते होते मानवता ने 1914 में सर्वप्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका देखी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ा, जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी, अत्यंत प्रलयकारी था।
3: लड़ाइयां क्यों होती हैं? इसलिए कि हम केवल सांसारिक सुख सुविधा को ही मानव जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। अगर आप कहें कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए जीना चाहता हूं, तो स्वाभाविक रूप से ही मेरे और आपके बीच होड़ लगेगी, विभिन्न राष्ट्रों के बीच जंग छिड़ेगी, तब आपके पास घातक हथियार होंगे और हम उससे भी ज्यादा विनाशकारी हथियार हासिल करने की कोशिश में लगी रहेंगे।
0: राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र इन शब्दों के साथ शुरू होता है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के हृदय में होता है। स्वामी जी कहते हैं,
3: युद्ध मार काट खून खराबा होता ही क्यों है? इसलिए कि युद्ध का बीज ईर्ष्या, लोभ, घृणा, क्रोध, संदेह, अविश्वास के रूप में हृदय में अंकुरित होता है। मैं आपको पसंद नहीं करता तो आपके सर्वनाश की कामना करता हूं। पहले आपके मन में मुझे बर्बाद देखने की इच्छा होती है और फिर आप मेरा सर्वनाश करने पर तुल जाते हैं। पहले बकझक और फिर हाथापाई होती है। मैं आपको मार देना चाहता हूं, आप मुझे मिटा देना चाहते हैं। ये बड़ा सामान्य किस्सा है, सदियों से ऐसा ही होता आया है।
1: पश्चिम को स्वामी जी ने संदेश दिया, जियो और जीने दो। उन्होंने कहा,
3: भारत एक ऐसा देश है जिसने युद्ध की समस्या का हल ढूंढा है और सारी मानवता को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया है। सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली होने के बावजूद इसने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इसकी दृष्टि समग्र रही है और इसने मानवता को एकत्व का बोध कराया है। आप और हम एक हैं, सारा विश्व एक ही मानव परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। फिर किसकी जीत और किसकी हार, किससे द्वेष और किससे घृणा। भारत का संदेश है, सुख शांति चाहते हो तो स्वयं पर विजय प्राप्त करो। भगवान बुद्ध ने कहा है, असली विजेता कौन है? जिसने स्वयं को जीत लिया, यही भारत है।
0: कितना सुंदर विचार है, दूसरों को काबू में करने की चाहत क्यों हो, बस स्वयं को अपने अधीन कर लो। महिमा मंडित प्राचीन भारत का ये अमर संदेश स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को सुनाया। स्वदेश वापस आने पर उन्होंने आह्वान किया,
3: हे भारत, तुम्हें जीवित रहना ही होगा। अपनी रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए।
1: स्वामी जी मात्र हिंदू नहीं थे, मात्र भारतीय नहीं थे, समस्त मानव समाज के मित्र थे। जो कोई भी सत्य की खोज कर रहा है, स्वामी जी उनके साथ हैं।
0: नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, उनके जन्म के 100 वर्ष बाद भी आज विश्व इतिहास की तुला पर उनके महत्व का मूल्यांकन कर पाना अत्यंत कठिन है। किसी पाश्चात्य इतिहासकार अथवा अधिकांश भारतीय इतिहासकारों के लिए भी ये कार्य उनके देहांत के समय जितना कठिन था, अब उससे कहीं अधिक ही कठिन हो गया है, क्योंकि तब से अब तक के अंतराल के वर्षों में होने वाली अनेक विस्मयकारी एवं अप्रत्याशित घटनाओं से ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाली शताब्दियों में, विशेषकर जहां तक एशिया का सवाल है, वे आधुनिक विश्व को गढ़ने वाले लोगों के अन्यतम के रूप में याद किए जाएंगे और भारतीय धर्म के संपूर्ण इतिहास में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोगों में से एक के रूप में गिने जाएंगे, जिनके महत्व की तुलना शंकर और रामानुज के समान आचार्यों से ही हो सकती है, परंतु कबीर, चैतन्य और दक्षिण भारत के आलवार एवं नायनार आदि स्थानीय और आंचलिक संतों की तुलना में तो वे निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण थे।
1: महान व्यक्तित्व के प्रति न्याय करने में हम तभी सक्षम होंगे जब हम उनके उन पूर्ववर्तियों के प्रति भी न्याय करें जिन्होंने उनके पहले ही हिंदू धर्म में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ की और जो उनसे होते हुए बाद में श्री अरविंद, महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे शिक्षकों के कार्य के माध्यम से जारी रही। हमें राममोहन राय का स्मरण करना होगा जो इन सब में अग्रणी थे। अनेक मायनों में उन्होंने अपने बाद के सुधारकों से भी कहीं अधिक पाश्चात्य विचारों, आदर्शों और मूल्यों के साथ समझौता कर लिया था।
0: उन्होंने युक्ति सम्मत विचारों पर आधारित एक तरह हिंदू कृत यूनिटेरियनिज्म, एक व्यक्तिवाद का प्रचार किया, जिसका काफी कुछ उन्होंने अपने ईसाई मिशनरी मित्रों से सीखा था। तदुपरांत देवेंद्रनाथ ठाकुर थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को थोड़ा अधिक ही रहस्यवादी मोड़ दिया। फिर केशव चंद्र सेन हुए जो अपनी आस्था में बड़े उदारवादी थे, व्यवहार में अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक राष्ट्रवादी थे और जिन्होंने ब्रह्म आंदोलन को थोड़ी अधिक भारतीयता प्रदान की, पर साथ ही इसका विभाजन भी किया और इस प्रकार संभवतः इसके द्रुत विघटन में सहायता की।
1: हमें विवेकानंद के अद्भुत गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी स्मरण करना होगा जो एक बड़े सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ लिखा नहीं परंतु अपने काल की बंगाली विचारधारा के संपूर्ण वातावरण पर अद्भुत प्रभाव विस्तारित किया। रामकृष्ण विवेकानंद तथा ईसा मसीह सेंट पॉल की समरूपता में संभव है कोई तात्पर्य निहित हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेकानंद को अपने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत और अपनी अधिकांश प्रेरणा अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई थी, परंतु उन्होंने उन पर अपनी निजी व्याख्या की थी।
0: मेरा विश्वास है कि महान स्वामी विवेकानंद का विश्व इतिहास में सर्वदा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि समकालीन भारतवर्ष के किसी भी अन्य शिक्षक की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से उन्होंने अपने देशवासियों को प्राचीन के साथ अर्वाचीन का सामंजस्य करना सिखाया था।
1: अपनी पीढ़ी के किसी भी आचार्य से कहीं अधिक विवेकानंद ने भारतवर्ष को स्वाभिमान सिखाया, अपने देशवासियों को अपनी परंपरागत संस्कृति, अपने परंपरागत मूल्य और अपना परंपरागत जीवन दर्शन अपनाने की कहीं अधिक प्रेरणा दी। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वैसा ही ग्रहण मत करो, वरन आवश्यकता अनुसार उन्हें गढ़ लो, बदल लो, सूखी डंठलों को काटकर नई शाखाएं उगा लो, पाश्चात्य और अन्य स्रोतों से ग्रहित नवीन विचारों को यहां वहां आरोपित कर लो, पर ध्यान रखो कि मूल वृक्ष जीवंत और समृद्ध बना रहे। इस कार्य के लिए भारतवर्ष अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा स्वामी विवेकानंद का कहीं अधिक ऋणी है।
0: और जो महान नेतागण उनके कार्य को अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाते रहे, वे सभी अधिकांशतः अपनी प्रेरणा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकानंद के ऋणी हैं। महात्मा गांधी भी मूलभूत प्राचीन हिंदू शरीर में अभिनव विचारों को आत्मसात करने तथा उन्हें पूर्णतः स्वाभाविक रूप देने में अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हैं।
1: विवेकानंद ने अपने देशवासियों को अपनी विरासत पर लज्जित होना त्याग कर गर्व करना सिखाया, ऐसे विचारों से विरत किया कि हमारी आस्था बड़ी दुर्व्यवस्था को प्राप्त हो गई है, जरा सती प्रथा को तो देखो आदि आदि। और यही नहीं, उन्होंने भविष्य के लिए आशावादी होना भी सिखाया। उन्होंने पीछे मुड़कर सुदूर अतीत की ओर, पौराणिक सत्य युग की ओर न देखते हुए भविष्य में उसकी पुनः स्थापना की संभावना पर ध्यान देने का आह्वान किया और कहा कि हम अपनी गुलामी की मनोवृत्ति के वशीभूत हो अपने अल्पकालिक शासकों का अंधानुकरण न करके केवल उनमें जो कुछ अच्छा हो उसी को ग्रहण करें, जो कुछ आवश्यक हो वही उनसे सीखें।
0: विवेकानंद के संदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य ये है कि उन्होंने निर्धनों और पीड़ितों की सेवा को मानव के मूलभूत धार्मिक कर्तव्यों में से एक बताकर एक नया ही पथ प्रशस्त किया। हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु और केशव चंद्र सेन ने भी इस दिशा में उनके पहले कुछ कदम उठाए हों। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदू धर्म ग्रंथ अपने मानव भाइयों के प्रति ऐसी व्यवहारिक स्नेहपूर्ण सेवा पर बल नहीं देते, वे निश्चय ही देते हैं। प्राचीन भारत के और विशेषकर दक्षिण के धर्म ग्रंथों के कई उद्धरण और उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां इस सद्गुण पर विशेष बल दिया गया है, और जिन्हें ईसाई धर्म ग्रंथों के ऐसे ही संदेश देने वाले अनेक सुप्रसिद्ध अंशों के समकक्ष रखा जा सकता है। परंतु भारत में इस क्षेत्र में विवेकानंद ही महात्मा गांधी के एक ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती थे जिन्होंने निर्धनों एवं पीड़ितों के कल्याणार्थ विधेयात्मक सेवा कार्यों को बढ़ावा दिया।
1: विवेकानंद विश्व इतिहास में अपने उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी सदा स्मरण किए जाएंगे जिसे स्वर्गीय डॉक्टर C.E.M. जोड ने एक बार द काउंटर अटैक फ्रॉम द ईस्ट यानी प्राच्य का प्रति आक्रमण कहा था। प्रायः 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए भ्रमण करने वाले भारतीय धर्म प्रचारकों के बाद आधुनिक काल में विवेकानंद ही सर्वप्रथम एक ऐसे धर्म शिक्षक हुए जिन्होंने भारत के बाहर प्रभाव विस्तार किया।
0: यहाँ पर हम केशव चंद्र सेन के रूप में एक छोटा सा अपवाद पाते हैं जिन्होंने लंदन तथा अन्य स्थानों में कुछ व्याख्यान दिए परंतु उनका प्रभाव नगण्य था। पश्चिम में उन दिनों पहले से ही ऐसे लोग थे जहां हिंदू धर्म की महिमा और उसमें निहित सौंदर्य की थोड़ी समझ थी और वे उसके प्रति प्रशंसा का भाव भी रखते थे। परंतु आधुनिक जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक भारतीय ने भारत की सीमा के बाहर जाकर शिक्षा दी और वे अपने व्यक्तिगत आकर्षण, गहन आध्यात्मिक भाव तथा अद्भुत वाग्मिता के द्वारा पाश्चात्य लोगों को अपने अनुयायियों के रूप में भारत लाकर उन्हें अपने कार्य में नियोजित करने में समर्थ हुए।
1: संपूर्ण विश्व अथवा कम से कम इसके धार्मिक लोग तो अवश्य ही अब अधिकाधिक अनुभव करने लगे हैं कि अन्य धर्म के लोग भी अपने अपने तरीके से वही युद्ध लड़ रहे हैं जिसे पारसी लोग प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई कहा करते हैं।
0: ईसाई, हिंदू, बौद्ध और सैद्धांतिक दृष्टि से जगत के शांतिप्रिय अधिकांश धर्मों में एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन की तुलना एक सैनिक से की गई है और कई दृष्टियों से ये ठीक भी है। अतः इस उपमा को अब यदि हम और भी आगे बढ़ाएं तो भले ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य धर्मों के लोग स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी सेनाओं के तौर तरीकों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं पर वे अब अन्य धर्म के लोगों को अपना शत्रु मानने के बदले अपना मित्र मानने के अधिकाधिक तैयार होने लगे।
1: इस प्रकार विविध धर्मों के बीच आपसी मित्रता स्थापित करने का प्रयास करने वालों में अग्रगामी होने के कारण ये संसार स्वामी विवेकानंद का महान ऋणी है। स्वामी विवेकानंद के संदेश को सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत करने के लिए संभवतः उन्हीं के लेखन में से उदाहरण देना उचित होगा।
3: हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। और ये रही सत्य की कसौटी, जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वो पवित्रता है, वो ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वो है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। अवीर्यवान होने का प्रयत्न करो। कमजोर बनाने वाली इन सब रहस्य विद्याओं को तिलांजलि दे दो। सत्य जितना ही महान होता है उतना ही सहज बोध गम्य भी होता है, स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज।
0: हमें उनके वो महान विचार भी याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था,
3: जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े, और जिस विराट को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही ना करें। सबसे पहले जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी।
1: ये वाक्य संपूर्ण मानव जाति की एक विस्मयकर और लज्जास्पद टीका है, और ये और भी एक तरह से उतने ही सत्य है जितने की स्वामी जी के व्याख्यान के समय थे। मानव जाति के पुनर्जागरण के लिए, निर्धनों के उत्थान के लिए और प्रत्यक्ष दिखने वाले मानवीय दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए विवेकानंद ने जो 50 वर्ष का समय दिया था वो अब बीत चुका है, पर आज भी जगत में शायद उतने ही मानवीय दुख और संताप बने हुए हैं। अंत में स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म महासभा में प्रदत्त अंतिम व्याख्यान में से उन सुप्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी शब्दों को दोहराना चाहिए जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति बना दिया था।
3: वो जो हिंदुओं का ब्रह्मा, पारसियों का अहुरमज़्द, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको शक्ति प्रदान करे। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना चाहिए और ना हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हां प्रत्येक को चाहिए कि दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करें और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र पुरुषों को जन्म दिया है। शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत, पर भाव ग्रहण न कि पर भाव विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक नियमित सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। अब हमारी दोपहर कालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने आजादी।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन।

नमस्कार। हमने आज ऐसे कुछ रचनाएं चुनी हैं जिसमें नदियों का थोड़ा जिक्र है। राग तिलक कामोद से हम लोग अपना पूजा आरंभ कर रहे हैं। राग तिलक कामोद में झप ताल 10 मात्रा में निबद्ध रचना है। सप्त सुरन को ध्यान धरिए गुनिजन, विषम भवसागर से पार उतरिए। सप्त सुरन को ध्यान धरिए गुनिजन। इसके पश्चात मध्य लय 3 ताल में रचना, नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी, डगर चलत मोसो करत रार, अब नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी धिक्कार।

ईरान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। ईरानी दिनों दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के लिए संकट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। हल की मुठिया पर हाथ रखने वाले किसान तलवार की मुठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए। हंडी तौलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी शत्रु के कदम दिनों दिन आगे बढ़ते जाते थे। जिस ईरान को यूनान कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग की भांति सिर पर चढ़ा जाता था। मर्द तो रणक्षेत्र में सिर कटा रहे थे और स्त्रियां दिन दिन की निराशाजनक खबरें सुनकर सूख जाती थी। क्यों कर लाज की रक्षा होगी? प्राण का भय न था, संपत्ति का भय न था, भय था मर्यादा का। विजेता गर्व से मतवाले होकर यूनानी ललनाओं को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनको कैद कर ले जाएंगे। उस विपत्ति की कल्पना से ही इन लोगों के रोएं खड़े हो जाते थे। आखिर अब हालत बहुत नाजुक हो गई तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी मंदिर में गए और प्रश्न किया, देवी हमारे ऊपर देवताओं की वक्र दृष्टि क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, कुर्बानियां नहीं की, व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने क्या हमारे सिरों से अपनी रक्षा का हाथ उठा लिया? पुजारिन ने कहा, देवताओं की असीम कृपा भी देशद्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती। इस देश में अवश्य कोई ना कोई द्रोही है। जब तक उसका वध ना किया जाएगा, देश के सिर से यह संकट न टलेगा। देवी वो द्रोही कौन है? जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हों, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली झलकती हो, वही देश का द्रोही है। लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और भी कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। यूनानी ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की। जिनके घर में से रात को गाने की आवाजें आती थी, सारे शहर में संध्या होते होते स्यापा सा छा जाता था। अगर कहीं आवाजें सुनाई पड़ती थी तो रोने की, हंसी और गाने की आवाज कहीं न सुनाई देती थी। दिन को सुगंध की लपटें किस घर से आती हैं? लोग जिधर जाते थे उधर से दुर्गंध आती थी। गलियों में कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की सफाई करता, घर में सुगंध जलाता? धोबियों का अभाव था। अधिकांश लड़ने के लिए चले गए थे, कपड़े तक न धुलते थे, इत्र फुलेल कौन मलता? किसकी आंखों में मद की लाली झलकती है? लाल आंखें दिखाई देती थी, लेकिन ये मद की लाली न थी, ये आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी। इस जीवन और मृत्यु के संग्राम में विलास की किसे सूझती? लोगों ने सारा शहर छान मारा, लेकिन एक भी आंख ऐसी नजर ना आई जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए। शहर में पल पल पर रणक्षेत्र से भयानक खबरें आती थी और लोगों के प्राण सूखे जाते थे। आधी रात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था, मानो शमशान हो। किसी की सूरत दिखाई न देती थी। जिन नाट्यशालाओं में तिल रखने की जगह न मिलती थी, वहां सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मनचले जवान अस्त्र शस्त्र सजाए ऐंठते फिरते थे, वहां उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था न बजाना, प्रासादों में अंधकार छाया हुआ था। एक बूढ़ा यूनानी जिसका इकलौता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और न जाने किन विचारों की तरंग में देवी के मंदिर की ओर चला। रास्ते में कहीं प्रकाश न था, कदम कदम पर ठोकरें खाता था, पर आगे चला जाता। उसने निश्चय कर लिया था कि या तो आज देवी से विजय का वरदान लूंगा या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर दूंगा। सहसा वो चौंक पड़ा। देवी का मंदिर आ गया था और उसके पीछे की ओर किसी घर से
मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी।

0: उसको आश्चर्य हुआ। इस निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रंगरलियां मना रहा है? उसके पैरों में पर से लग गए। मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसी घर से जिसमें मंदिर की पुजारिन रहती थी, गाने की आवाजें आती थी। वृद्ध विस्मित होकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। चराग तले अंधेरा। देवी के मंदिर के पिछवाड़े ये अंधेर। बूढ़े ने द्वार से झांका। एक सजे हुए घर में मोमबत्तियां झाड़ों में जल रही थी। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था और एक आदमी मेज पर बैठा हुआ गा रहा था। मेज पर शराब की बोतल और प्यालियां रखी हुई थी। दो गुलाम मेज के सामने हाथ में भोजन के थाल लिए खड़े थे, जिनसे मनोहर सुगंध की लपटें आ रही थी। बूढ़े यूनानी ने चिल्लाकर कहा,
1: यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है।
0: मंदिर की दीवारों ने दोहराया,
2: द्रोही है, द्रोही है।
0: बगीचे की तरफ से आवाज आई,
2: द्रोही है, द्रोही है।
0: मंदिर की पुजारिन ने घर से सिर निकालकर कहा,
2: हां द्रोही है।
0: यह देशद्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियत था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं का दमन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना वो ईरानियों को दे दिया करता था। सेनाओं की प्रत्येक गतिविधि की खबर

0: केवल अपने कुटिल स्वार्थ के लिए वो देश की गर्दन में गुलामी की बेड़ियां डलवाने को तैयार था। पुजारिन अपने बेटे के दुराचरण से अनभिज्ञ थी। वो अपनी अधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, वहीं बैठी जप तप किया करती थी, पर लोक चिंतन में उसे इहलोक की खबर न थी। मनेन्द्रियों ने बाहर की चेतना को शून्य सा कर दिया था। वो इस समय भी कोठरी के द्वार बंद किए देवी से अपने देश के कल्याण के लिए वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, यही द्रोही है, यही द्रोही है। उसने तुरंत द्वार खोलकर बाहर की ओर झांका। पासोनियस के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उन्हीं रेखाओं पर संगीत की लहरें नाच रही थी। उसके पैरों तले जमीन से निकल गई, कलेजा धक्सा हो गया। ईश्वर, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? आप ही आप, किसी अंतः प्रेरणा से पराभूत होकर वो चिल्ला उठी, हां यही देशद्रोही है। यूनानी स्त्री पुरुष झुंड के झुंड उमड़ पड़े और पासोनियस के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है। पासोनियस के कमरे की रोशनी ठंडी हो गई। संगीत भी बंद था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षण नगरवासियों का समूह बढ़ता जाता था और रह रहकर सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकलती थी, यही देशद्रोही है। लोगों ने मशालें जलाईं और अपने लाठी डंडे संभाल कर मकान में घुस पड़े। कोई कहता था सिर उतार लो, कोई कहता था देवी के चरणों पर बलिदान कर दो। कुछ लोग उसे कोठे से नीचे गिरा देने पर आग्रह कर रहे थे। पासोनियस समझ गया कि अब मुसीबत की घड़ी सिर आ गई। तुरंत जीने से उतरकर नीचे की ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देखकर देवी के मंदिर में जा घुसा। अब क्या किया जाए? देवी की शरण जाने वाले को अभयदान मिल जाता था। परंपरा से यही प्रथा थी, मंदिर में किसी की हत्या करना महापाप था, लेकिन देशद्रोही को इतने सस्ते कौन छोड़ता? भांति भांति के प्रस्ताव होने लगे।
1: सुअर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लो,
2: ऐसे देशद्रोही का वध करने के लिए देवी हमें क्षमा कर देंगी।
3: देवी, आप उसे निगल क्यों नहीं जाती?
1: पत्थरों से मारो, पत्थरों से, आप निकलकर भागेगा।
2: निकलता क्यों नहीं रे कायर, क्या वहां मुंह पर कालिक लगाए बैठा है?
0: रात भर यही शोर मचता रहा और पासोनियस न निकला। आखिर यह निश्चय हुआ कि मंदिर की छत खोदकर फेंक दी जाए और पासोनियस दोपहर की तेज धूप और रात की कड़ाके की सर्दी से आप ही आ पकड़ जाए। बस फिर क्या था, आन की आन में लोगों ने मंदिर की छत और कलश ढा

0: डाकुओं की तरह जोर जोर से कहने लगा, मुझे मार डालो, एक क्षण में प्राण ले लो, इस भांति जला जला कर न मारो, ओ हत्यारों, तुमको जरा भी दया नहीं। दिन बीता और रात भयंकर रात आई। ऊपर तारागण चमक रहे थे मानो उसकी विपत्ति पर हंस रही हो। जो जो रात भीगती थी देवी विकराल रूप धारण करती जाती थी। कभी वो उसकी ओर मुंह खोलकर लपकती, कभी उसे जलती हुई आंखों से देखती। उधर क्षण क्षण सर्दी बढ़ती जाती थी। पासोनियस के हाथ पांव अकड़ने लगे, कलेजा कांपने लगा, घुटनों में सिर रखकर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कुर्ते को भींचकर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों को, यहां तक कि इस खींचातानी में कुर्ता भी फट गया। आधी रात जाते जाते बर्फ गिरने लगी। दोपहर को सोचा था कि गर्मी ही सबसे कष्टदायक है, इस ठंड के सामने उसे गर्मी की तकलीफ भूल गई। आखिर शरीर में गर्मी लाने के लिए एक हिकमत सूझी। वो मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन विलासी जीव था, जरा देर में हांफ कर गिर पड़ा। प्रातःकाल लोगों ने किवाड़ खोले तो पासोनियस को भूमि पर पड़े देखा। मालूम होता था उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने पर उसने आंखें खोली, पर जगह से हिल न सका। कितनी दयनीय दशा थी, किंतु किसी को उस पर दया ना आई। यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध था, और द्रोही के लिए कहीं क्षमा ना थी, कहीं दया ना थी। अभी मरा नहीं है,
1: द्रोहियों को मौत नहीं आती।
2: पड़ा रहने दो, मर जाएगा, मक्र किए हुए है,
1: अपने किए की सजा पा चुका, अब छोड़ देना चाहिए।
0: सहसा पासोनियस उठ बैठा और उद्दंड भाव से बोला,
1: कौन कहता है कि छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं स्वार्थी हूं, विषय भोगी हूं, मुझ पर भूल कर भी विश्वास न करना। हाँ, मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। मैं अगर 100 जन्म लेकर इस पाप का प्रायश्चित करूं तो भी मेरा उद्धार न होगा। तुम भूल कर भी मेरा विश्वास न करो, मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं करते, मैं भी आपकी सेवा करता हूं। मुझे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम है जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और आपसे भी ये कहता हूं कि मुझ पर विश्वास ना कीजिए। आज रात को देवी की सच्चे दिल से वंदना की है, और उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं यहां से निकलकर इन बातों को भूल जाऊंगा। बहुत संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगूं, इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए।
3: देखो देखो क्या कहता है,
2: सच्चा आदमी मालूम होता है।
1: अपने अपराधों को आप स्वीकार कर रहा है,
2: इसे क्षमा कर देना चाहिए और सब बातें पूछनी चाहिए।
1: देखो, ये नहीं कहता कि इसे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाया जाता है कि मुझ पर विश्वास न करो।
2: रात रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए, अब आंखें खुली हैं।
1: क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं, मैं विश्वास के योग्य नहीं हूं, मैं द्रोही हूं। मुझे ईरानियों के बहुत से भेद मालूम है, एक बार उनकी सेना में पहुंच जाऊं तो उनका मित्र बनकर सर्वनाश कर दूं, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है।
3: धोखेबाज इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता,
2: पहले स्वार्थांध हो गया था पर अब आंखें खुली हैं।
1: देशद्रोही से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है, और अगर ये अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए।
2: देवी की प्रेरणा से इसकी काया पलट हुई है।
1: पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कष्ट पाकर जागृत हो जाता है। यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वो फिर पुण्य ही नहीं कर सकता, मानव चरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। हम इसको यहां से गाते बजाते ले चलेंगे।
0: जनसमूह को चकमा देना कितना आसान है, जनसत्तावाद का सबसे निर्बल अंग यही है। जनता तो नेक और बद की तमीज नहीं रहती, उस पर धूर्तों रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि वो धूर्त था कि जनता की कील क्यों
4: क्यों कर घुमाई जा सकती है।
1: अरे गाने बजाने वालों को बुलाओ, पासोनिया शरीफ है।
5: हाँ हाँ, पहले चलकर उससे क्षमा मांगो, हमने उसके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की है।
4: पासोनिस ने कहा, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल की कल आपको सारी बातें बता देता, तब आपको मालूम होता कि मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना।
1: हाय, हमसे बड़ी भूल हुई हमारे सच्चे पासोनियस।
4: सहसा एक वृद्धा स्त्री किसी तरफ से दौड़ी हुई आई और मंदिर के सबसे ऊंचे जीने पर खड़ी होकर बोली,
3: तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक नहीं कर सकते। तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासोनियस ने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न छोड़ा, हमारे देवताओं का, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया, उसकी दो चार चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम इतने फूल उठे। याद रखो, अब की पासोनियस बाहर निकला तो तुम्हारी कुशल नहीं, फिर यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनानी ललनाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर बाहर ना निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपने पुरुषों का नाम प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चुन दो, जिससे देशद्रोही को फिर बाहर निकलने और तुम लोगों को बहकाने का मौका ना मिले। ये देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूं।
4: लोगों ने विस्मित होकर देखा, ये मंदिर की पुजारिन और पासोनियस की माता थी। दम के दम में पत्थरों के ढेर लग गए और मंदिर का द्वार चुन दिया गया। पासोनियस भीतर दांत पीसता रह गया। वीर माता, तुम्हें धन्य है, ऐसी ही माताओं से देश का मुख उज्जवल होता है, जो देश हित के सामने मात्र स्नेह की धूल बराबर परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता।

0: तो अभी आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी धिक्कार। सुनो कहानी के अपने अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक और कहानी एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
2: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
4: बिल्कुल,
2: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
4: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
4: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
2: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
4: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
2: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
4: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
2: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहु मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
4: श्रोताओं, कबीर वे रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
2: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
4: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
2: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
4: बिल्कुल,
2: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
4: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
2: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
2: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
4: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
2: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
4: बिल्कुल।
2: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
4: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
2: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
4: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
2: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
4: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
2: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
2: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
4: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
2: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
4: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
2: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
4: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
4: बिल्कुल,
2: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
2: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधी, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
4: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
2: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
4: बिल्कुल,
2: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
4: कौन सी कविता?
2: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
4: वाह,
2: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
4: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
2: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
4: बिल्कुल,
2: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
4: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
2: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
4: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे, खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
2: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
4: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है, लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे। सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
2: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
4: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
2: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
4: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
2: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
4: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
2: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की, उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
4: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
2: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
4: श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
2: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
2: बिल्कुल ठीक
4: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
2: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
4: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन, पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं। तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
2: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
4: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
2: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
4: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
2: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
4: जी।
2: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
4: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
2: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
4: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष श्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
2: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
4: बिल्कुल।
2: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
4: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
2: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
2: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
2: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
4: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
2: और कंचन राजानी के।
4: अब हमें आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप आनंद लेते हैं संगीत का।

आज इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं गया प्रसाद प्रजापति और उनके साथी।

तीन सखियां बड़े प्रेम से पनघट पर आपस में बात कर रही हैं। बोली, सखी बताओ आपके बे कैसे हैं? एक दूसरे को बता रही हैं कि मेरो ढोलक बजाए, दूसरी बोली

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं फूल सिंह मांडरे और उनके साथी।
2: बुंदेली संस्कार गीत तीज त्योहार पे गाए जाने वाले गीत पेश कर रहे हैं।

कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे बुंदेली गायन का। कलाकार थे फूल सिंह मांडरे और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 159 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं द्वावा पृथ्वी, छंद है जगति।
4: प्रद्यावा यज्ञैः पृथ्वी ऋता वृधा मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसः। देवेभिर् ये देवपुत्रे सुदंस सेस्था धिया वार्याणि प्रभूषतः। देवपुत्रियां द्यावा पृथ्वी और अन्य देव शक्तियां मिलकर अपने श्रेष्ठ कर्मों और विचार प्रेरणाओं से सबको श्रेष्ठतम ऐश्वर्यों से विभूषित करती हैं। यज्ञीय भावनाओं के पोषक, यज्ञीय विचारों के प्रेरक पृथ्वी और द्युलोक की हम स्तुति मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। उत मन्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्ध वीमभिः सुरेतसा पितरा भूम चक्र तुरुरु प्रजाया अमृतम वरीमभिः। हम विद्वेष रहित पृथ्वी और आकाश के रूप में माता पिता के सबल एवं महान मन को स्तुति द्वारा प्रसन्न करते हैं। पराक्रमशील माता और पिता अपनी श्रेष्ठ सामर्थ्य से प्रजाओं की रक्षा करते हुए उन्हें प्रगतिशील बनाते हैं। ये उनके सर्वोत्तम कार्य प्रशंसनीय है। ते सूनवः स्वपसः सुदंससो मही जग्युर्मातरा पूर्वचित्तये स्थातुश्च सत्यं जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः। श्रेष्ठ कर्मशील तथा गुण संपन्न संताने पृथ्वी द्यावा रूप माता पिता की प्रारंभिक विशेषताओं से परिचित हैं। द्युलोक एवं पृथ्वीलोक दोनों स्थावर और जंगम सभी विद्रोह रहित संतानों का भली प्रकार से संरक्षण करते हुए अपने सत्य रूप श्रेष्ठ पद को सुशोभित करते हैं। ते माइनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा नव्यन नव्यम तंतुमा तन्वते दिवि समुद्रे अंतः कवयः सुदीतयः। द्युलोक रूप आकाश गंगा के बीच विद्यमान सूर्य की क्रांतदर्शी ज्ञान युक्त किरणें नित्य नए नए ताने बाने बुनती हैं। ये किरणें सहोदर बहिनों के साथ एक स्थान से उत्पन्न होती हैं, परस्पर सहयोग भावना से एक ही घर में निवास करने वाली ये किरणें द्यावा पृथ्वी को नाप लेती हैं। तद्राधो अद्य सवितुर्वरेण्यम वयम देवस्य प्रसवे मनामहे अस्मभ्यम द्यावा पृथ्वी सुचेतुना रईं धत्तम वसुमंतम शतग्विनम हम आज श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाह के लिए संपूर्ण विश्व के उत्पादक प्रेरक सूर्य देव से श्रेष्ठ ऐश्वर्यों की कामना करते हैं। दयावा पृथ्वी अपनी उत्तम प्रेरणाओं से हमारे लिए श्रेष्ठ आवास तथा पशुधन प्रदान करें।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 159 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा दादा धर्माधिकारी की, जिनके बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि दादा के बारे में क्या कहा जाए। एक छोटे से बच्चे से कोई पूछे कि उसकी माँ कैसी है, तो हो सकता है उसकी माँ बहुत सुंदर हो, लेकिन बच्चा ये नहीं कहेगा। हो सकता है उसकी माँ विद्वान हो, लेकिन बच्चा ये भी नहीं कहेगा। वो तो बस यही कहेगा कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। दादा के बारे में भी यही कह सकेंगे कि दादा बहुत प्रेमी हैं। दादा धर्माधिकारी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक थे। मानव मात्र के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें सबके हृदय में बिठा दिया। उन्हें गांधी युग का प्रकाश पुंज कहा गया, तो वहीं पत्रकारों ने उन्हें लोकतंत्र का शिल्पी माना। उनका जन्म 18 जून 1899 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलतापी यानी मुलताई नामक स्थान पर हुआ था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम मूलतापी पड़ा और कालांतर में इसे मुलताई कहा जाने लगा। दादा धर्माधिकारी का मूल नाम शंकर त्रयंबक धर्माधिकारी था, लेकिन आगे चलकर वो दादा धर्माधिकारी के नाम से ही पुकारे गए। उनका बचपन होशंगाबाद जिले में बीता। बचपन से ही पढ़ने लिखने में उनकी गहरी रुचि थी। वो कहा भी करते थे कि उन्होंने अनेक किताबें पढ़ी। इस अध्ययन वृत्ति से ही उन्हें व्यापक संस्कार मिले और भौगोलिक सीमाओं से परे उनके मन में मानवीय प्रेम जागृत हुआ। उन्हें हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वो कहा करते थे कि मुझे मनुष्य प्रिय हैं, इसीलिए मनुष्यों की सारी भाषाएं मुझे प्रिय हैं। वो अपने हॉस्टल के अधीक्षक कुमारेंद्र चटर्जी से अत्यधिक प्रभावित थे, जो उन्हें इतिहास और भूगोल पढ़ाया करते थे। अध्यापन के दौरान ही वो महान देशभक्तों के त्याग और साहस की चर्चा भी करते, जिसका गहरा प्रभाव दादा धर्माधिकारी के मन पर पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब दादा धर्माधिकारी ने उनके विषय में काफी कुछ पढ़ लिया था। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेद से जो विषमता फैली हुई थी, उससे दादा धर्माधिकारी बहुत आहत थे और उन्होंने महसूस किया कि ये विषमता गांधी जी को भी बहुत अखरती है। यही कारण है कि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने लगे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उस समय दादा धर्माधिकारी नागपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांधी जी ने उस समय कहा कि असहयोग बुराई के साथ हो, न कि बुराई करने वाले व्यक्ति या समाज के साथ। जीवन की नीति तो सहयोग की ही हो सकती है। असहयोग नैमित्तिक प्रतिकार का साधन मात्र है और बिना तलवार के भी अपना राज आ सकता है। असहयोग सफल हो सकता है। दादा धर्माधिकारी कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के इन विचारों ने उन्हें इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद वो कभी भी कॉलेज नहीं गए।

दादा धर्माधिकारी को गांधीवादी मूल्यों ने गहरे तक प्रभावित किया था। जब वो सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने युवाओं को संगठित करना आरंभ किया। उन्होंने दो संस्थाओं का गठन किया, एक आर्योतेजक समाज और दूसरा मूलतापी में तप्तेश्वर मंडल। इसके साथ ही वो हस्तलिखित समाचार पत्र भी निकालने लगे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया, तब अपने चुने हुए 78 लोगों के साथ उन्होंने दांडी की ये यात्रा आरंभ की। दादा धर्माधिकारी की ये इच्छा थी कि उन चुने हुए लोगों में गांधी जी उन्हें भी शामिल करें, लेकिन परिस्थितिवश ये संभव नहीं हो सका। तब दादा धर्माधिकारी ने नागपुर में धंतोली पार्क में विद्यार्थियों को भाषण दिया। इस उद्बोधन को सुनकर अनेक विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी और इस आंदोलन में वो कूद पड़े। दादा धर्माधिकारी को अंग्रेजों ने अपने लिए खतरा माना और 29 जुलाई सन 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल में बंद कर दिया। उन्हें एक साल की सजा हुई। 30 के दशक के अंतिम वर्षों में दादा धर्माधिकारी ने काका कालीलकर के साथ मिलकर सर्वोदय मासिक पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला। वो सर्वोदयी समाज के लिए प्रतिबद्ध एक सिपाही की तरह प्रयत्नशील रहे। वो सर्वोदय के एक समर्थ आचार्य और भाष्यकार थे। उनका मानना था कि समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दादा धर्माधिकारी वर्धा में भी रहे। वो गांधी सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी से छूटने के बाद

ये मैंने विचार पूर्वक दूसरा स्थान लेने का निश्चय किया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद गांधी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, ये मेरा निर्णय है। तुम अपनी इच्छा से तो नहीं जा रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, इसे तो मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूं। ऐसे लोगों को तो जरूर जाना चाहिए। बापू के इतना कहने के बाद दादा धर्माधिकारी कुछ कह नहीं सके। वो मध्य प्रांत में 1945 से 1951 तक विधानसभा के सदस्य रहे। दादा धर्माधिकारी संविधान परिषद के सदस्य भी थे। इस तरह संविधान निर्माण में भी उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत किया। वो कहा करते थे कि समाज में परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन आवश्यक है।

दादा धर्माधिकारी ने अपने जीवन का लंबा समय दलितों और महिलाओं के उत्थान में लगाया। वो कहा करते थे कि इस देश का सबसे बड़ा रोग जातीयता है। वो भारतीय समाज को मनुष्य के आधार पर संगठित करना चाहते थे। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो सामंजस्य प्रधान हो। वो वर्ण व्यवस्था को तिलांजलि देते हुए कहते थे कि धर्म तो एक ही है और वो सार्वदेशिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। धर्म का उद्देश्य मनुष्यों को एक दूसरे के साथ संबद्ध करना है, उनका एकत्र धारण करना है। यही प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरीय राज है, यही गांधी जी का राम राज्य है और आदर्शवादियों का आदर्श समाज है। उनका कहना था कि जो मनुष्य को संयुक्त करता है, जोड़ता है, वो धर्म है। जो उन्हें विभक्त करता है वो अधर्म है। यानी समत्व की विद्या और संयोग की कला का नाम ही धर्म है। वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां सब धर्मों का, सब जमातों का, सब जातियों का, यानी जाति धर्म वर्ण निरपेक्ष सामान्य जन का राज होगा। यही उनका संकल्प था और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। स्त्रियों की दशा से उन्हें हमेशा असंतोष रहा। वो कहा करते थे कि हमारे समाज में स्त्री सहधर्मिणी रही है, वो कभी भी मुख्य धर्मिणी नहीं रही। वो सहजीवनी है, जैसे उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ हो ही नहीं। स्त्री की भूमिका सदा गौण और दोयम रही है, जबकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों ने ही धर्म, परंपरा और सदाचार को जीवित रखा है। उनका मानना था कि स्त्रियों के उत्थान से ही देश और समाज का उत्थान संभव है। दादा धर्माधिकारी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनकी संख्या लगभग 2 दर्जन है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया, क्रांति शोधक, गांधी जी की दृष्टि, नए युग की नारी, नागरिक विश्वविद्यालय एक परिकल्पना, मानवनिष्ठ भारतीयता, मैत्री, युवा और क्रांति, लोकतंत्र, विकास और भविष्य, समग्र सर्वोदय दर्शन आदि। उनके लेखन में एक कलाकार सी सौंदर्य दृष्टि और साहित्यिक प्रतिभा दिखाई देती है। अति क्लिष्ट संकल्पनाओं को भी उन्होंने सहज सरल शैली में अभिव्यक्त किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दादा ने अपनी डायरी में लिखा, जहां मेरी मृत्यु हो वहीं या पास की किसी जगह पर मेरे शरीर का दहन किया जाए, शव को कंधे पर न ढोया जाए, जुलूस न हो, भाषण न हो, दहन में चंदन कपूर घी का उपयोग ना हो, मेरी मृत्यु पर शोक सभाएं ना की जाएं, मेरा कोई स्मारक ना हो। इस तरह गांधीवादी विचारों को जीते हुए 1 दिसंबर 1985 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM। कार्यक्रम है प्रकृति की पुकार। मैं हूँ धरा।
2: मैं हूँ बादल।

0: एक बीज था गया बहुत ही गहराई में सोया। उसी बीज के अंतर में था नन्ना पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली जब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही उसने अद्भुत पाया।
1: वाह वाह धरा वाह, कितनी सुंदर कविता है ये। हमने बचपन में शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ी थी।
0: हाँ हाँ बादल, बिल्कुल, लेकिन तब हमने इस कविता को सिर्फ पढ़ा था और रट लिया था। पर इसमें छिपी गूढ़ बातें अब समझ में आई हैं।
1: हाँ हाँ ये सही है कि प्रकृति से हमें वो सभी संसाधन मिलते हैं जो एक तरह से हमारी मदद करते हैं। ये हमें बढ़ने और विकसित करने में हमें सहयोग देते हैं।
0: यदि प्रकृति से बल्कि हमारी इस धरती से हमें वो सब मिलता है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है।
1: धरा, एक कहावत हम अक्सर कहते हैं, मिट्टी के मोल, लेकिन ये कहावत प्रकृति से मिले लाभ के लिए है, पर उस मिट्टी को चरितार्थ नहीं करती।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अगर प्रकृति ने हमें भूमि आदि मिट्टी अगर नहीं दी होती तो हम अपना पेट कैसे भरते, और इस मिट्टी से उपजी हर फसल पृथ्वी के हर प्राणी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए।
0: पृथ्वी से अपनी फसल के लिए ऋग्वेद में कहा है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि खेत में पैदा अनाज का क्रम से बंटवारा किया जाना चाहिए।
1: अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं?
0: हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है।
1: देखो, पहला हक जमीन में 4 उंगल भूमि गेहूं की बालों के नीचे पशुओं का, ठीक है। अब फसल की पहली बाली अग्नि की और गेहूं के दानों को अलग करके मुट्ठी भर दाना पक्षियों का,
0: और इसके बाद आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुंधा हुआ आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की,
1: और घर में तैयार खाने की पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर अपनी थाली, और फिर आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए।
0: हाँ, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि प्रकृति में अन्य जीवों और प्राणियों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है।
1: हाँ, हमारी भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम कभी वानिकी और खनन में करते हैं।
0: बिल्कुल, देखा जाए तो भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग, व्यापार, आना जाना, मनोरंजन सभी कामों में है। तो इतने कामों के इस संसाधन का उपयोग हम ऐसे करें कि इससे नुकसान ना हो।
1: हमें खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है।
0: हाँ, परंतु अब के समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांगें बढ़ रही हैं, और इस कारण वन भूमि और खेती की भूमि का दोहन हो रहा है। इससे प्रकृति की दी हुई नेमत कम होती जा रही है।
1: बिल्कुल सही धरा, और इसके साथ ही कम स्थान में अधिक और जल्दी पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे हमारी भूमि की प्रकृति नष्ट हो रही है।
0: खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और तूफान सक्रिय हो रहे हैं।
1: पहाड़ी स्थान में भूस्खलन आए दिन होते रहते हैं। ऐसा लंबे समय तक लगातार वर्षा होने के कारण होता है। ये एक ऐसी आपदा है जो चिंता का मुख्य विषय है।
0: भूमि के उपयोग में मानव द्वारा किया गया परिवर्तन, जैसे कृषि भूमि, वन भूमि का कम होना, शहरीकरण के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना है, हमारी भूमि को प्राकृतिक परिदृश्य से बिगाड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही धरा, और ये बदलाव पर्यावरण, समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, भूमि के उपयोग का परिवर्तन से हमारी जैव विविधता भी प्रभावित होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: इसीलिए भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी खतरनाक प्रक्रिया है जिसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं।
0: जी हाँ, देखा जाए तो मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ भूमि में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, और वनस्पति में कमी आती जा रही है।
1: हाँ, तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, वनों की कटाई निरंतर जारी है, सिंचाई के तरीकों का गलत उपयोग, ऐसी गतिविधियाँ मरुस्थलीकरण को बढ़ा रही हैं।
0: शहरीकरण के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत, जिसमें पौष्टिक व भरपूरता होती है, नष्ट होती जा रही है, भूमि बंजर हो रही है।
1: इसका परिणाम फसल का उत्पादन कम होने के कारण खाद्य पदार्थों में कमी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
0: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। बेहतर सिंचाई तकनीक और जल संरक्षण के उपाय अपनाकर हम मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं।
1: हम अपने कार्यकलापों में परिवर्तन कर इस सिकुड़ती भूमि को बचा सकते हैं। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है।
0: ये एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें हमारी उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में मरुस्थल ऐसी विशेषताएं विकसित हो रही हैं। इससे वहाँ के रहवासी घबरा कर पलायन भी कर रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में जमीन की उत्पादन क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी खत्म होती जाती हैं।
0: मरुस्थलीकरण ये न केवल मानवीय जीवन बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित कर रहा है। भूमि के बंजर होने से कृषि भूमि क्षेत्र कम हो रहे हैं।
1: हाँ धरा, यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में खाद्यान्न संकट गंभीर रूप ले सकता है। इससे निपटने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ, भूमि की कमी नदियों के कटाव से प्रभावित होती है, हवा से भी मिट्टी के कटाव पर असर होता है।
1: वनों की कटाई मरुस्थल बढ़ने का प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों और वनस्पतियों को काटा जा रहा है। इस कारण कमल जंगल छोटे होते जा रहे हैं और मरुस्थल का बढ़ावा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
0: और इससे बचने के लिए सबसे पहले वृक्षारोपण तेजी से बढ़ाना है और वनों की कटाई एकदम से रोक दी जानी चाहिए।
1: हाँ, और इसके साथ ही मरुस्थली क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाया जाए, मिट्टी के कटाव को रोका जाए
0: और कृषि कार्यों के अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग को भी रोका जाए। सिंचाई में भी मरुस्थली क्षेत्र के अनुसार काम किया जाए।
1: इसके साथ खनन गतिविधियों को तुरंत आवश्यकता से अधिक न किया जाए।
0: बिल्कुल, इस समस्या पर सबसे जल्दी नियंत्रण तभी हो सकता है जब वृक्षारोपण की दर को तेजी से बढ़ाया जाए, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
1: परंतु देखने में आता है कि संसाधनों की कमी हम मनुष्यों को प्रतिस्पर्धा में घसीटती है और जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो संसाधन अपने आप ही कम से कमतर होते जाते हैं।
0: किसी भी संसाधन का उपयोग हमारे हित में हो या आर्थिक क्रिया के रूप में जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति संभव हो, पर इसकी उपयोगिता हमारे वास्तविक उपयोग से जुड़ी हुई होना चाहिए।
1: नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, अकाल और बाढ़ का प्रकोप बना ही रहेगा। इससे भूमि का दुरुपयोग या वैज्ञानिक तरीकों की अनदेखी विनाश का आमंत्रण है।
0: हाँ, पर ये वातावरण तहरीली की समस्या का अभी भी समाधान हो सकता है, लेकिन तब तक बिना समय गवाए संसाधनों को रोककर हम व्यवस्थित होकर अपनी दिनचर्या और अन्य कार्यों को रोकने में कड़े अनुशासन को अपनाएं।
1: पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित कर उसका सही उपयोग करें। वन क्षेत्र जितने भी बचे हैं उन्हें सुरक्षित कर लुप्त वनस्पति एवं जीव जंतुओं को संरक्षित करने में सहायता करें।
0: ईंधन की आवश्यकता होने पर अंधाधुंध वनों की कटाई ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। पौधारोपण को बढ़ावा दें। बंजर भूमि है उसे ठीक कर पौधे लगाएं। सड़क या नदी तालाब के किनारों पर पेड़ लगाएं।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। सौर ऊर्जा का विकास कर ऊर्जा की समस्या भी हल की जा सकती है। इससे काफी हद तक लकड़ी का उपयोग कम होगा और ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रहेगा।
0: इस तरह स्वयं तो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, साथ ही औरों को भी ऐसा ही करने को कहें और इसके महत्व को समझाएं। इन बातों पर अमल करके ही हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे।
1: अगर अभी भी घर नहीं चेते तो पर्यावरण के गिरते स्तर का परिणाम हमें जल्दी ही और अधिक विभिन्न रूपों में भुगतना होगा।
0: हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो इससे हम मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की समस्त क्रियाएं अपनी विपरीत दिशा की ओर न सिर्फ कदम उठा रही हैं, बल्कि आगे और तेजी से बढ़ती जाएंगी।
1: हाँ, प्राकृतिक आपदाएं तभी आती हैं जब प्रकृति के प्रतिकूल दशा होती है। जैसे जो मिट्टी या भूमि उर्वरा होती है वो उत्पादन करना बंद कर देती है।
0: जो वर्षा समय पर होती है वो कम या अधिक होने लगती है, या फिर समय से पहले या समय निकलने के बाद भी नहीं होती। यानी दोनों ही सूरत में हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।
1: पृथ्वी का तापमान भी सामान्य ना होकर कम या ज्यादा हो जाता है, और ये सभी प्रकृति की गतियाँ हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं।
0: हाँ, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी आवश्यक संसाधनों को भी नहीं जुटा पाएंगे और अनेक विपदाएं जन्म लेती रहेंगी।
1: पर्यावरण में आए इस असंतुलन को पुनः नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों का उपयोग इतना अधिक कर रहे हैं, वे सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं।
0: यदि हम इनका इस तरह से दोहन करते रहे तो ये प्राकृतिक संकट स्वयं नहीं आता, बल्कि हम मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा इसे आमंत्रण दे रहे हैं।
1: हाँ, अपने विकास के लिए हम प्रकृति का खुलकर उपयोग करते हैं, लेकिन अब हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि संसाधन समाप्ति की ओर हैं। हमने ही इनका शोषण किया है और हम ही प्रकृति में इस असंतुलन के उत्तरदायी हैं।
0: हमें अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाकर इस सिकुड़ती भूमि को बचाना है। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। सूखा पड़ने की स्थिति तो और भी भयानक होती है। गांव की तस्वीर बड़ी ही हृदय विदारक हो जाती है। किसानों के पास कोई काम नहीं होता।
1: घर के पालतू जानवरों के भोजन की व्यवस्था न होने के कारण या तो वे खत्म हो जाते हैं या फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और तब लोग शहर की ओर रुख कर लेते हैं।
0: निसंदेह सूखा और अकाल एक हृदय विदारक और गंभीर संकट है। इस तरह बाढ़ भी एक ऐसी ही प्राकृतिक विपदा है जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। बाढ़ तो केवल प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर ही संभव है। इसके लिए बांधों का आवश्यकता अनुसार निर्माण बहुत जरूरी है।
0: इसी तरह भूस्खलन को भी प्राकृतिक विपदा ही माना जाता है, परंतु ये हम मानवों द्वारा किए गए खनन और वृक्षों की कटाई के कारण ही है।
1: और भूस्खलन की आए दिन होने वाली घटनाओं के कारण जिन स्थानों की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटक पर ही टिकी होती है, वो भी अब बहुत डगमगाने लगी है।
0: पर्यावरण के प्रभाव में मिट्टी का भी प्रमुख रूप से योगदान होता है। इसे अगर यूं कहा जाए कि मिट्टी परिस्थिति की जननी होती है तो गलत ना होगा, क्योंकि जो भी व्यवस्था स्थापित होती है उसका आधार मिट्टी तो होती ही है बादल।
1: हाँ धरा, जीव जंतु पौधे वनस्पति और मानव सभी मिट्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक दिशाएं भी मिट्टी से ही संबंधित होती हैं। ये मिट्टी भी एक प्राकृतिक तत्व है।
0: मिट्टी जब अपने पोषक तत्व भौतिकीय बनावट और रासायनिक संरचना खाने लगती है तो मिट्टी का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भूमि का क्षय होता है।
1: ईश्वर ने हमें सब कुछ बहुत सुंदरता से देखने के लिए बनाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस प्रकृति के रिश्ते के साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ, अगर हमें स्वस्थ और चिंता मुक्त बढ़ना है तो अपने स्वार्थी और गलत कामों को रोकते हुए अपने ग्रह पृथ्वी को, अपनी धरती की सुंदरता को बचाना होगा और इसकी बिगड़ती प्रकृति को बेहतर करना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति के असली उपयोगता तो हम ही हैं, तो इसे बचाना भी होगा। वो कहते हैं ना, जितना गहरा जोते खेत, बीज पड़े फल उतने देत।
0: यानी कि जितना गहरा हम खेत जोतेंगे और तब उसमें बीज डालेंगे तो फसल उतनी ही अच्छी होगी। मित्रों, आज हमने ढेर सारी बातें की प्रकृति के संरक्षण, मिट्टी के बचाव के बारे में, और निश्चित तौर पर आपको हमारी ये बातें बहुत ही काम की लगी होंगी। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का।
1: तो दोस्तों, मैं था आपके साथ बादल,
0: और मैं धरा।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़,
2: ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का।
1: मैं था आपके साथ दीपक नेमा,
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। तो अब चलते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM।
3: नमस्कार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन को ओस की बूंद की तरह कहा गया है जो सूर्य की एक किरण के साथ विलीन हो जाता है। आकाश में उमड़ते मेघ, नदी की बहती धाराएं, वृक्षों से झरते पत्ते और ऋतुओं का निरंतर परिवर्तन, प्रकृति का प्रत्येक दृश्य मानो एक ही सत्य का उद्घोष करता है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। काल का चक्र निरंतर घूम रहा है, वो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, किंतु उसके स्पर्श से यौवन वृद्धावस्था में बदल जाता है, वैभव स्मृति में बदल जाती है और आज बीतकर इतिहास में विलीन हो जाता है। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम इसी गहन सत्य पर चिंतन करते हैं। वो देखते हैं कि जीवन जल पर खींची हुई रेखा के समान है, क्षणभंगुर है और काल की अथाह धारा में समस्त सांसारिक उपलब्धियां तिनकों की भांति बह जाती हैं। उनका ये चिंतन उस शाश्वत सत्य की खोज का आमंत्रण है जो परिवर्तन और विनाश से परे है। तो आइए योग संवाद आरंभ करें और योग वासिष्ठ के आलोक में काल के प्रभाव तथा जीवन की अनित्यता के विषय में मनन करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: इन दिनों योग वासिष्ठ ग्रंथ हमने खोला हुआ है
2: जी।
1: और इसके वैराग्य प्रकरण में जो कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा होगी काल के प्रभाव की और जीवन की अनित्यता की। तो इस बिंदु पर भगवान श्री राम ने पराधीनता की बात की, मनुष्य की पराधीनता की, कि मनुष्य पराधीन है और कुछ कारण बताए हैं। तो क्या देख रहे हैं भगवान और पराधीनता से आशय क्या है?
2: पराधीनता से आशय है कि काल की ही स्मृतियां हमें होती हैं। आप देखें तो हम पूरे समय में जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अगर उसको हम समग्रता से कहें तो वो किसी काल की ही स्मृति कर रहे हैं। भले उस काल में कोई घटना हो, कोई व्यक्ति हो, आपके सुख दुख से जुड़ी कोई स्मृति हो, तो काल के ही अधीन हम रहते हैं। जो स्वाधीनता शब्द है, इसका अर्थ वास्तव में लोग जानते नहीं है। स्वाधीनता कोई विचार नहीं है। स्वाधीनता अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या योग के दृष्टिकोण से देखें तो वो स्व के अधीन होना, यानी स्व को उपलब्ध होना है, जबकि स्व अनुपलब्ध नहीं है। स्व के साथ आप इसलिए नहीं हैं कि आप निरंतर किसी न किसी काल का चिंतन कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब बताइए कि इस संसार नामधारी प्रपंचों में मेरे जैसे लोगों का क्या आस्था हो। कहते हैं, हे मुने, आदमी प्रारब्ध कर्म के वशीभूत होकर सुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित होकर किसी न किसी बिके हुए दास अथवा वन में मृग की भांति पराधीन हो रहा है। अब आप देखिए कि सुख दुख को हम लोग कहते हैं वो प्रारब्ध कर्म का भोग है। सुनते हैं हम सामान्य शब्दों
1: जी,
2: में
1: जी, जी।
2: प्रारब्ध कर्म को भोगा ही जा सकता है, प्रारब्ध को आप टाल नहीं सकते। ऐसा भी हमारे जो गुणी जन हैं या जो ज्ञानी जन हैं वो कहते हैं कि प्रारब्ध को भोग का ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कई संतों के बारे में आपने सुना होगा कि उनको अगर असाध्य बीमारियां हुई तो उन्होंने उन बीमारियों को ठीक करने के लिए कभी अपने आराध्य से याचना नहीं की, क्योंकि कहा ये मेरा भोग है, इसको भोग करके,
1: हाँ
2: बिल्कुल जी, भोग करके इसे हम समाप्त करें, ये उनकी जागृति थी। तो ऐसे में राम जी कहते हैं कि जब ऐसा प्रारब्ध है कि जब इसको बिना भोगे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो अंततः व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है और जी रहा है वो तो प्रारब्ध के अधीन हो गया
1: जी, जी।
2: तो पराधीन ही तो है, वो कहां स्वाधीन है। तो कहते हैं कि ये काल ही व्यक्ति को पराधीन करता है। ये राम जी का गूढ़ चिंतन है कि वो काल को इस रूप में देखते हैं कि काल व्यक्ति की पराधीनता का कारण है और स्वाधीनता पर जो आवरण और विक्षेप नामक माया का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से वो ग्रसित इसलिए है कि वो काल के स्वरूप को पहचानने में असमर्थ है। वो बार बार उसी काल के चिंतन करता है, काल के प्रभाव में रहता है, काल को भोगने का प्रयास करता है। तो इस दृष्टिकोण से राम जी ने कहा कि यहाँ सभी लोग पराधीन है, और गोस्वामी जी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही। तो ऐसे में अब जब काल व्यक्ति को पराधीन किए है तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, इसीलिए संसार को दुख का आलय कहा गया। ये तमाम ऋषियों के मतलब आध्यात्मिक अनुसंधान है।
1: अच्छा, भगवान श्री राम ने काल को निर्दयों का राजा भी इसमें कहा, क्यों कहा?
2: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान राम ने कहा कि काल निर्दय, जैसे कहते ना कि जिसको दया ना हो, तो ऐसे समय किसी को बकसता नहीं है। लोग बाग ये सोचते हैं ना कि मतलब हम अपने अनुसार चीजों को कर लेंगे, ये सच ये नहीं है। वो काल उनके अनुसार किया हुआ है, बस इतनी सी बात है, और उनको लगता है ये हमने किया है। जबकि काल की जब गति घूमती है तो आप देखते होंगे कि राजा कैसे रंक बन जाता है, कैसे सारी संपन्नता के बाद भी व्यक्ति विपन्न होकर के विलाप करता है। तो काल इतना निर्दय है कि एक पल के लिए भी वो सोचता नहीं है, या उसके पास क्षमा जैसी चीज नहीं है। वो आपका प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध कैसे आपको मुक्त कर सकता है? प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए काल को भगवान राम ने कहा, काल मेरी दृष्टि में निर्दयों का राजा है। वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। यानी आप देखिए कि जब सारे पुरुष अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं और प्रारब्ध जो है वो काल व्यक्ति को पराधीन कर रखा है, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो स्वाधीन दुर्लभ हो गया है जो कम से कम काल के प्रभाव से अपने को मुक्त जाने। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सब पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, और सारे जो भूत हैं मतलब जो काल के प्रभाव में हैं।
1: जी अच्छा शशिकांत जी, ये बताइए कि वैभव का जो स्वरूप है और उसके भोग का परिणाम क्या है?
2: हाँ, वैभव का स्वरूप राम जी कहते हैं कि वैभव अल्प एवं तुच्छ है। व्यक्ति को लगता है कि हम निरंतर वैभवशाली हों, हम लोग आशीर्वाद भी देते हैं। राम जी कहते हैं दृष्टि में कि कोई ऐसा वैभव नहीं है जिस वैभव के साथ हमेशा आप वैभवशील बने रहें। अच्छा। क्योंकि आप कभी विचार करके देखिए कि जो सफलता आज आपके लिए बड़ी मूल्यवान है, उसको अर्जित कर लेने के बाद फिर किसी और की तलाश आप करने लगते हैं, और वही सफलता आपको तुच्छ लगती है, है ना? तो देखिए कितनी बड़ी दृष्टि है जिस पर लोगों को विचार करना चाहिए कि इस संसार में हम जिसे भी चाहते हैं वो तुच्छ ही है। क्योंकि जिस समय आप चाह रहे हैं उस समय वो मूल्यवान हो सकती है, लेकिन कुछ काल बीत जाने के बाद वो आपको तुच्छ प्रतीत होगा। तो उन्होंने कहा कि जो वैभव का मूल स्वरूप है वो अल्प और तुच्छ है, तथा जितने भी भोग के स्थान हैं वो भयंकर और परिणाम में निरंतर दुख देने वाले हैं।
1: अच्छा।
2: जबकि व्यक्ति भोग के रूप में सुख चाहता है, और वो कहते हैं कि आप देखिए कि सुख की चाह नहीं तो व्यक्ति को दुखी किया है, या कह सकते हैं सुख की चाह जिसे है वो अपने को दुखी भी घोषित कर रहा है एक न एक रूप में। तो कहते हैं कि जो भोग का स्थान है वहां पर वो भयंकर है, वो भयानक है, क्योंकि वहां सुखी किसी कोई नहीं हुआ। और हम लोग कहते भी हैं कई बार कि जिस स्थान पर जाकर के आपको सुख का अनुभव या अनुभूति होने की संभावना दिखाई दे रही है, उन स्थानों पर तो बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, आप उनको देखिए क्या वो सुखी हैं? तो वो नहीं है। तो जब देखते हैं तो कहते हैं ये भोग है, ये भयंकर है, ये देख के डर लगता है। जो अज्ञानी लोग हैं भले इस भोग के पास में बंधे हों, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको विवेक है, वो इस भोग को भयंकर देखता है, और भोग का परिणाम अंततः दुख ही मिलता है। और उसको राम जी कहते हैं कि दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाला है भोग।
1: अच्छा।
2: जी ऐसा भी दुख नहीं है जो मतलब जिसका अंत हो जाए, वो देर तक उसका अंत नहीं होगा, आप उस दुख को भोगते रहेंगे।
1: जी, जी। अच्छा, मनुष्य के बंधन का कारण क्या बताया है इसमें?
2: बिल्कुल सुंदर आपने कहा। राम जी कहते हैं कि मनुष्य जैसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद अभी वो किसी बंधन में नहीं है। देखें तो देह है उसके पास, और देह की आवश्यकताएं हैं। उसके बाद वो संसार का कोई भी ज्ञान या संसार के संबंधों का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन जैसे ही थोड़ा वो समझदार होता है और लोगों को पहचानने लगता है, तो वो पहचानने नहीं लगता, वो वहीं से बंधना शुरू हो जाता है। तो राम जी कहते हैं कि बंधु बांधव या जो परिवार है, ये सब बंधन के कारण है, इन्हीं में जीव बंधता है। और इसको राम जी तो कहते ही हैं, एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं रूसो, जो कहते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो बंधन जकड़ा हुआ है। तो राम जी यही कहते हैं कि ये बंधु बांधव संसार की पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, यही तो जीव का बंधन है, व्यक्ति का बंधन है। इसी बंधन में वो बंधा है, जबकि वो अपने लिए उसे आवश्यक समझता है। आश्चर्य देखिए कि वो हमारे लिए बंधन भी है और उस बंधन में रह करके हम मुक्ति भी चाहते हैं, है ना। उस बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते, बंधन में रहते हुए मुक्ति चाहते। कितनी बड़ी बात। मुझे आश्चर्य होता है, एक महात्मा थे तो उनके पास कोई व्यक्ति गया, वो कहा कि मैं क्रोध से, आसक्ति से और जो जितने भी मन के दोष हैं, इन दोषों से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने, वो मंदिर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मंदिर का जो वो पिलर है उसको जोर से पकड़ लिया और कहा कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो वो कहने लगे, ये क्या कह रहे हैं आप? कहते, जो तुम्हारी दशा है उसी को तो बयां कर रहा हूं मैं, कि पकड़ा तुमने है और तुम कह रहे हो कि मैं मुक्ति कैसे चाहिए। तो ऐसे में जो हमारे लिए बंधनकारी है उसी में रहते हुए हम मुक्त होने का ख्याल करते हैं। कितनी बड़ी ये व्यवस्था है। राम जी जैसा विवेकवान पुरुष इसको देखता है कि व्यक्ति का जो बंधन है वो बंध बांधव और उसके अपने ही हैं।
3: अद्भुत है,
2: अद्भुत है जी,
3: कि हम स्वयं बंधे हुए हैं
2: जी,
3: और वो बंधन हमें पसंद भी है, हमें मुक्त भी हो जाना है
2: जी।
3: तो ये दृष्टि आम मनुष्य की है
2: जी,
3: जिसको भगवान देख रहे हैं
2: जी।
3: अच्छा, ये बताइए कि आत्मा का भी कोई शत्रु हो सकता है क्या?
2: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे स्मृति में आया कि यद्यपि आत्मा न किसी की शत्रु है न मित्र है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आत्मा का कोई शत्रु नहीं हो सकता। आपके अंदर शत्रुभाव न हो, निर्भयता की स्थिति आपने साध ली हो, लेकिन संसार आपसे बैर कर सकता है जी। तो वो कहते हैं कि आत्मा का जो शत्रु है वो बिना जीता हुआ मन है। जिस मन पर आपने स्वामित्व अर्जित नहीं किया, यानी मन के स्वामी आप नहीं बने, तो वो मन कभी भी आत्मोन्मुख नहीं होने देगा, आपको विषयोन्मुख बनाएगा। मन मुखी जो व्यक्ति होता है वो विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि मन ही आत्मा का शत्रु है, क्योंकि वो हमेशा विषयों के चिंतन में आपको भोग की तरफ, विलास की तरफ आकर्षित करेगा। तो ऐसे में जो उस मन को जीत लेता है वो व्यक्ति विषयों का त्याग करके आत्मोन्मुखी हो जाता है। लेकिन जो लोग मन को अपने वश में नहीं कर पाए हैं, जिनका मन पर नियंत्रण नहीं है, वो हमेशा विषयोन्मुखी होते हैं, बल्कि वो आत्मा को भी विषय बनाकर उसका चिंतन करते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात मैं कर रहा हूँ कि बड़े बड़े आप देखेंगे साधकों को ये भ्रम सा हो जाता है कि वो आत्मा को ही विषय बना चुके हैं, कि आत्मा को पाना हमारा लक्ष्य है। इस पर मैं फिर एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि एक गुरु ने अपने शिष्य को भेजा कि आप जाओ इस महात्मा के पास, तुम्हें वो बोध कराएगा। तो वो शिष्य महात्मा के पास गया, सोचा कि हमारे गुरु जी से भी ये श्रेष्ठ महात्मा होंगे। तो देखा तो उस महात्मा ने तो कभी न भगवान की स्मृति की, न कभी पूजा किया, न पाठ किया, वो ऐसे ही संसार के कार्य करते थे। एक बार भी भगवान को याद नहीं किया। काफी दिन हुआ, देखते देखते जब काफी

0: मेरा पतन हो गया, क्योंकि
1: अच्छा।
0: मैं कभी उससे दूर हो ही नहीं सकता, और जिससे दूर होने का कोई उपाय नहीं है उसके बारे में सोचने का भी कोई उपाय नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसे में ये जो आपने एक प्रश्न किया कि परमात्मा से आप कभी दूर हुआ ही नहीं जा सकता, और जो दूर होने की बात समझ रहे हैं वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम के शिकार हैं, अज्ञानता के शिकार हैं, जिसको कबीर साहब कहते भी हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को इंतजारी क्या। तो परमात्मा इंतजार अलग होने का विषय नहीं है, वो आप में ही है। तो आत्मा पाने का विषय नहीं है, लेकिन लोग आत्मा को भी पाने का प्रयास करते हैं। ये मन का खेल है, मन समझिए मन की चालाकी है, वो अपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार में आपको उलझा देता है, और वो आत्मा और ब्रह्म को भी विषय बना देता है, जबकि वो विषय नहीं है, वो तो सत्ता है आपकी, उसे कैसे विषय बना सकते हैं। विषय तो मन के हो सकते हैं, और मन से जब आत्मा का चिंतन करेंगे तो मन आत्मा कब विषय बन जाएगा इसको खोज पाना आसान नहीं होगा।
1: आसान नहीं, बिल्कुल। अंतःकरण में जो व्याकुलता है क्या कारण उसका होता है?
0: उसका कारण है दूषित बुद्धि। और यहाँ फिर आपको पूछना चाहिए कि दूषित बुद्धि का क्या कारण है। तो दूषित बुद्धि तभी होती है जब मन किसी सुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में राग कर ले, और किसी दुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में द्वेष कर ले।
1: अच्छा।
0: तो राग द्वेषात्मक जो उसकी प्रवृत्ति होगी और उस प्रवृत्ति में संलग्न जो बुद्धि होगी वो दूषित बुद्धि होगी। तो ऐसी दूषित बुद्धि अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न करती है। आप संसार में देखिए लोग व्याकुल दिखाई देते हैं आपको, भागते दिखाई देंगे, जैसे लगता है कितनी दूर कहां जाना है और क्या पाना है, जबकि सच ये है कि इस संसार में क्या ऐसा प्राप्तव्य है। राम जी कह भी रहे हैं कि यहां जो कुछ भी पाने योग्य है सब छूट जाता है। जब ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के शक्तिहीन हो जाती है, संतुलन खो बैठती है, तो ऐसे में इस संसार में कोई ऐसा मूल्यवान वस्तु नहीं है सिवाय आपके, कि आप अपने चिंतन को करने के बजाय, स्वाधीनता को पाने के बजाय, आप जो पराधीनता है, वो पराधीनता जो काल आपको बना रहा है, पराधीन कर रहा है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। जिसको कहते हैं गोस्वामी जी, नाचई सबई नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। तो ये स्थिति है कि हर आदमी जो है बंदर की तरह नाच रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जो आत्मा है, जो राम है, आत्मा राम, उसको आप नहीं जान रहे हैं, और राम को आप यहां वहां भटक के घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। तो बुद्धि की मलिनता का मूल कारण है, मतलब अंतःकरण के व्याकुल होने का कारण है बुद्धि की दूषित होना, और बुद्धि का दूषित होना है मन के साथ बुद्धि का बहाव।
1: आपने कहा कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनके साथ हमारा एक मोह बने, और हम किसी सुख की कामना के साथ इच्छाओं को चाहें,
0: जी,
1: तो ये भी दूषित बुद्धि है।
0: दूषित, आप कभी देखिए ना, इच्छाओं को आज तक भाई हमारी बहुत सारी इच्छाएं हमने पूरी की, लेकिन पूरी करने के बाद क्या इच्छाओं ने हमें छोड़ा? इच्छाओं ने तो हमें बांधा ना, हम हमेशा इच्छाओं के गुलाम होते चले गए, और हम कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाए। तो आज भी आप देखिए पूर्व का जो अनुभव है उस अनुभव से हम नहीं सीख रहे हैं। विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने वाला मनुष्य आज भी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इच्छा एक प्रकार का बंधन है जो व्यक्ति को बांध रही है और बुद्धि को दूषित कर रही है।
1: जिस राग और द्वेष की आपने बात की है उससे मुक्ति के लिए एक संक्षेप में बात कहें कि किस तरह से क्या दृष्टि हो
0: इसके। मुक्ति के लिए मन पर विजय पाना, जो कहा ना कि आत्मा के शत्रु ना बल्कि आप आत्मा के मित्र बने। मित्र तभी होंगे जब मन की जो व्याकुलता है, मन का जो विचलन है, मन की जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर आप रोक लगा पाएं, निरोध कर पाएं। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, क्योंकि मन हमेशा वृत्तियों के पीछे भागता है, और वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं करेंगे तब तक योग नहीं होगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो वही महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र का परिभाषा है वही किसी रूप में परिभाषित हो रहा है कि मन को जीत करके आप अपने आत्मा के मित्र हो सकते हैं। आत्मा तो आप में है ही, ब्रह्म स्वरूप आप है ही, शिवोहम शिवोहम आदि गुरु शंकराचार्य कह ही रहे हैं कि न हमारा जन्म है न हमारी मृत्यु है, न हमारा बंधन है न हमारा मोक्ष है। तो ऐसे में कब ये ऐसा है? जब हम आत्मोन्मुखी हों या आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हों, और ये तभी होगा जब हम मन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिना जीता हुआ मन आत्मा का शत्रु बन जाता है और मनुष्य के अंतःकरण की व्याकुलता का कारण बन जाता है। जी,
1: अच्छा, इसमें बताया कि जो काल है वो प्राणियों को अज्ञात स्थान पर ले जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझाइए, क्या आशय है इस पंक्ति का?
0: हाँ, इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो काल है जिसमें व्यक्ति सारे समा रहे हैं। जैसे कहा ना हमने पिछली बार शायद इस बात पर बात की थी कि काल का ग्रास ये जगत है।
1: हाँ।
0: तो यहाँ जो भी प्राणी जन्म लेता है वो इस जगत में ही विलीन हो जाता है। तेरा तुझको अर्पण, पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाती है और उसको जाना नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये कहते हैं ना कि आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम काल के गति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भगवान ने यहाँ साफ कहा कि ये अज्ञात जगह पर व्यक्ति को ले जाता है। ये जो प्राणी समुदाय है, प्राणियों की जो परंपरा है जगत में, जो जगत में प्राणी दिखते हैं, प्राणवान दिखाई दे रहा है, काल उसे निरंतर अपना ग्रास बना रहा है और कहाँ बना रहा है ये किसी को पता नहीं है। आपको एक उदाहरण मैं दूंगा। श्रीमद् भागवत कथा में जब नारायण ने हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्यास का वध कर दिया तो उससे वो तपस्या करने लगा कि मैं अब नारायण को मारूंगा, नारायण को मिटाऊंगा। यानी काल को नारायण भी कहा गया, भगवान ने कहा गणना में मैं काल हूं, विभूत योग में देखें। तो ये सब एक कोड में इसको डिकोड करना बहुत आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं ऐसा करेंगे कि हम नारायण को ही मारेंगे, यानी काल की व्यवस्था को या काल को हम जीत लेंगे, ऐसी बात उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। और वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और वर मांगते हैं कि मेरा कहीं भी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी सृष्टि में तो मृत्यु का विधान है, हर प्राणी जन्म लेता है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि कैसे वो अज्ञात काल में जा रहा है, तो उसको जाना ही पड़ता है, यहाँ तो मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो भी चालाक था, फिर उसने क्या किया कि आप देखिए उसके वर मांगने की विधा, कैसे बुद्धि का कौशल प्रयोग किया उसने कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, धरती पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, वानर से नहीं मरूं, पशु पक्षियों से नहीं मरूं। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसने मृत्यु को जीत लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि उसने पूरी बुद्धि जो है काल के बाहर जाने का तो प्रयास किया, लेकिन अंततः काल ने एक नया स्वरूप ले लिया, नरसिंहा अवतार, जो कहते हैं जो नर भी नहीं है और पशु भी नहीं है, और वो जो गोधूल के बेला में उन्होंने, तो ये कथानक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि राम जी इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से काल सारे प्राणियों को अज्ञात स्थान में ले जाता है, दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। भाई अज्ञात का मतलब हुआ कि जहां उसकी दिशाओं का भी पता ना चले, और यहाँ आदमी काल को जानने के लिए कितना उत्सुक रहता है कि अपने भविष्य काल को जान ले, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं काल का ये भी प्रभाव है, ये भी काल का ही प्रभाव है, माया का प्रभाव है। जबकि वो हम गाते हैं ना भजन में कि तेरी माया का ना जाने कोई पार, वो माया रानी तू ही जाने। तो ये जो काल की जो पत्नी कालरात्रि है वो वही जानती है कि क्या है, उसको कौन जान सकता है। तो ऐसे में अज्ञात स्थान में ले जाता है जहाँ दिशाएं भी नहीं जान पाती दिखाई देती हैं, ताकि आप जान पाएं।
1: अच्छा, भगवान श्री राम तो स्वयं परमात्मा हैं।
0: जी,
1: परमात्मा के संबंध में क्या कह रहे हैं वो योग वासिष्ठ में?
0: परमात्मा के संबंध में वो कह रहे हैं कि वह परमात्मा तत्व जो है वो निर्गुण निराकार है, और उसकी व्याख्या शास्त्रों में जो की गई है राम जी वैसे ही कह रहे हैं जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक उस परम निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा ही है। यानी कहते हैं कि ये जो माया का जो उत्पादक है वो माया से अलग है, वो माया की तरह दिख नहीं सकता
1: जी।
0: और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम परमात्मा की भी मूर्ति बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी आदत है, हम उसी रूप में देखना चाहते हैं। हम अभी कहें किसी निराकार का चिंतन करें आप, तो निराकार का चिंतन ही नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चिंतन से मुक्त हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग निर्विचार होना।
1: जी, जी,
0: क्योंकि चिंतन तो विचार में होगा, दृश्य में होगा, सुन करके होगा, कह करके होगा, और कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का विचार नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा, इसके लिए तो उपनिषदों में काफी गहरी चर्चा है, जिसमें अन्वय और व्यतिरेक ये दो साधन अपनाए गए हैं कि ये सब कुछ उसी में है और ये कुछ भी वो नहीं है, इस तरीके के मतलब ऋषियों ने प्रयास किया है, इशारे किए हैं, ताकि आप, चूंकि वो कहा तो जा नहीं सकता, सुना जा नहीं सकता, लेकिन जो जिज्ञासु है वो कहने सुनने के ही आकांक्षा से आप तक आया है। तो वो एक व्यवस्था है, इशारा है, लेकिन वो इशारा है। तो राम जी वही कहते हैं कि वो वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है जो माया का उत्पादक है, जो वाणी से कहा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, दृश्य आंख से देखा नहीं जा सकता, इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं।
1: अच्छा, इस संसार में सुखी कौन है?
0: इस संसार में सुखी कौन है, इन्होंने कहा महात्मा की शीतल बुद्धि, ऐसे महात्माओं की शीतल बुद्धि जिनकी बुद्धि अब उनके चित्त को व्याकुल नहीं कर पाती, जैसे हमने कहा ना कि जो बिना जीता हुआ मन ये आपकी बुद्धि की शीतलता समाप्त कर देगा
1: जी।
0: और जीता हुआ जो मन है वो बुद्धि को शीतल बनाएगा, बुद्धि में कभी व्यग्रता नहीं है, उष्णता नहीं आएगी।
1: पूरा रोग जो है वो व्याकुलता का है।
0: व्याकुलता का है। वो कहते हैं कि जो दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, शीतल बुद्धि ऐसी है
1: जी।
0: और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी हो सकता है, और कोई सुखी नहीं हो सकता इस जगत में। यानी आत्म शांति को प्रदान करने वाली जो बुद्धि है वो शीतल बुद्धि है। इसीलिए आपने सुना होगा एक मंत्र जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये शीतल बुद्धि में उपजा हुआ एक प्रार्थना है। और जो क्या कहते हैं, जो ऐसी बुद्धि जिस पर मन शासन करता है वो कैसी होगी? वो ये कहेगी कि जो कुछ भी हो संसार में मेरे लिए ही,
1: मेरे लिए,
0: वो अपने को केंद्र में रखकर
1: जी। जी, तो सर्व की कामना, सर्व का कल्याण हो ही नहीं सकता ऐसी बुद्धि में। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि जो संसार, हमने बुद्धि की बात की
0: जी,
1: तो जो संसारी मनुष्य है उसकी बुद्धि कैसी होती है?
0: राम जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है।
1: अच्छा।
0: उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते रहते हैं और कहते हैं, देखिए वो बुद्धि क्या कहती है, कहते हैं कि आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करना चाहिए, वे लोग हमारे भाई बंधु हैं, यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है, इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। ये संसार की गति है। और देखें तो संसारी व्यक्ति निश्चित ऐसी ही बुद्धि के साथ संसार को देखता, विचार करता और जीता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए विवेक के साथ जो बुद्धि विकसित होगी, गोस्वामी जी कहते हैं अबलो नसानी अबना नसई हो, तो हम ऐसा नहीं है कि संसार के व्यवहार में हम व्यवहारिक जगत का तिरस्कार कर रहे हैं, हम व्यवहारिक जगत को जीते हुए पारमार्थिक सत्य का भी चिंतन करें कि हमारा स्वरूप क्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, आचार्य शंकर जो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत झूठ नहीं है। एक बार क्या होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जगत को नकारने की बात की जा रही है। जगत को नकारने की बात नहीं की जा रही है, जगत के सत्य के साथ व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को जागृत किया जा रहा है।
1: हाँ, वही मैं कहने ही जा रही थी कि काल के प्रभाव की हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन की अनित्यता की बात कर रहे हैं, फिर जीवन में लय होने की, रमने की बात भी होती है, उसे छोड़ना भी नहीं है। तो दृष्टि क्या हो संसार में, हमारी दृष्टि क्या हो
0: संसार में? दृष्टि हमारी इस संसार में रहते हुए कैसे हम अंतःकरण को व्याकुल किए बिना और अपने मन को वश में रखते हुए शांति और संतुष्टि के साथ जीवन जिए, यही बात आगे चल करके जब राम जी के वैराग्य की स्थिति को जानने के बाद गुरु लोग उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार करता है, वो किसी कर्म का त्याग नहीं करता। और ये देखिए, राम जी की कहानी सभी को मालूम है, लेकिन राम जी के चित्त की ये दशा आम लोगों को नहीं पता है। और अगर राम जी के चित्त की दशा शांत न हुई होती तो ऐसे में राम जी का जो व्यवहार होता वो सांसारिक लोगों की तरह हो सकता था। तो इस नाते सबसे पहले उन्हें तीर्थ यात्रा करने का जो भाव अपने चित्त में उत्पन्न हुआ और पिताजी से उसके लिए उन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं, आप तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं। और तीर्थ भ्रमण करके राम जी इस जगत का व्यवहार देखना चाहते थे। और व्यवहार देखने के बाद जो उन्हें दिखा कि यहाँ कर्म तो सभी कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कर्म व्यक्ति के सुख का कारण नहीं हो सकता। तो अपनी उस अवस्था की बुद्धि से उन्होंने कर्म का ही त्याग किया। तो ऐसे में जब सभा में बुलाया गया है तो गुरु के बीच वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि ये मुझे दिखाई दे रहा है विभिन्न अवस्थाओं में ऐसी ऐसी स्थिति, हम कैसे इस शरीर से या इस संसार के विषयों से प्रेम कर सकें।
1: तो शशिकांत जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही। मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत आनंदित हुए होंगे आज। बहुत ही अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा। अगले अंक की प्रतीक्षा मुझे भी है। तो आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको कि आप आए और इतनी सुंदर व्याख्या आपने की।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की काल के प्रभाव और जीवन की अनित्यता पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था। परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: एक छोटा सा बिरसा मुंडा जी के चरणों में समर्पित गीत

एकाने कहीगा हो उसी समय का विचम हा गरीब किसान का घर।

आज पूरा भारत उन्हें बिरसा मुंडा जी का नमन कर रहे है। तैयार है

कि निमाड़ की माटी में इसी कौन कौन से समझकार और संत हुए हैं, छोटी रचना की। कि बहती नर्मदा, अरे बहती नर्मदा आलिया।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी के संघर्ष की अमर गाथा जिन जाने अनजाने अनगिनत शहीदों के खून से लिखी गई है, उन्हीं में से एक हैं अमरचंद बांठिया। बांठिया ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया के गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद बांठिया को एक बार एक सन्यासी ने बताया था कि 700 बंगाली सैनिकों को अंग्रेज सेनाधिकारियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने गाय को आराध्य मानते हुए बैलों की पीठ पर बैठकर जल मार्ग से रंगून जाने से इंकार कर दिया था। इस घटना के बारे में सुनकर अमरचंद बांठिया क्रूर अत्याचारी और बर्बर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देने के लिए छटपटा उठे। उन्हें ये अवसर तब मिला जब झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में आ डटी। सैनिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अमरचंद बांठिया आगे बढ़े और उन्होंने ग्वालियर का सारा राजकोष क्रांतिकारियों के हवाले कर दिया। लक्ष्मीबाई के गौरवमय बलिदान के चार दिन बाद ही 22 जून 1858 को अमरचंद बांठिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। फांसी के 3 दिन बाद तक शहीद बांठिया का शव उसी पेड़ पर लटकाए रखा गया ताकि लोगों में आतंक फैला रहे और भविष्य में फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर न उठा सके। बांठिया ने अनूठे बलिदान की परंपरा को कायम करके आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की प्रेरणा दी थी।

0: अरे बाप, चलो भाई बहुत थक गए, यहाँ रुककर चाय पानी हो जाए थोड़ा।
1: हाँ हाँ भाई, थोड़ा विश्राम हो जाए।
2: आओ भैया आओ, आओ आओ, काका के ढाबे में स्वागत है आपका। अरे छोटू जरा देख तो इधर।
3: हाँ भैया।
0: राम राम भैया, जरा यहाँ हम सब लोगों को चाय पिलवा दीजिए।
2: अरे ये हमारे काका का ढाबा है, वो जरा बाहर गए हैं, उनकी गैर हाजिरी में जरा भूल नहीं होनी चाहिए। आप लोग तसल्ली से आराम कीजिए, मैं आप लोगों के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम करवाता हूँ, एकदम काका की तरह। ये लो भाई पानी। आप लोग?
3: हाँ बेटा, हम लोग व्यापारी हैं और तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं। ईश्वर,
2: आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। इधर अंदर आइए, इधर अंदर खाट लगवा दूं तो आराम कर लीजिए।
3: हाँ सही कह रहे हैं आप, एक तो ये कमर दर्द, ऊपर से बस में सफर, बड़ा धन्यवाद है आपका। अरे कमल, मैं अंदर छांव में हूँ, ड्राइवर से कहो वो आराम कर ले थोड़ी देर।
4: जी महाराज।
2: आइए आइए आइए, इस तरफ से आइए।
3: अरे भाई इतनी सारी तस्वीरें, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम पर। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से हैं क्या?
2: अरे भाई खानदान तो अलग ही बात है, पर हमारे काका को तो शौक है उन लोगों के बारे में जानने का। काका तो कहते हैं कि बेटा काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो बात ही।
5: अरे काका, पहले पैदा हो गए होते तो हम जैसों को पता ही नहीं चल पाता क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें कुर्बान होने वाली जानों की कीमत।
2: कौन कराता हमें एहसास कि जो सुख हम आज भोग रहे हैं उसके लिए किन लोगों ने कैसे कैसे बलिदान दिए हो।
3: अच्छा तो क्या ये काका इतना कुछ जानते हैं?
2: अरे हम सब यूं ही उनकी तारीफ थोड़ी करते हैं, काका से मिलते मिलते तो हमारा ज्ञान भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी बढ़ गया है। असल में बात सिर्फ उनकी तारीफ की नहीं है, पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी मिलने से अपने जीवन चरित्र में बहुत कुछ अच्छा ढालने का मौका मिलता है।
6: अब मेरी ही बात लो, हूँ तो मैं इतिहास का विद्यार्थी, पर जितना मुझे काका से सुनने को मिला उतना शायद मैं खुद जानने की कोशिश भी नहीं करूँ।
3: बस बेटा, बात का सार तो यही है कि दो चार लोग भी समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में अपने मित्रों या मिलने जुलने वालों के साथ बातचीत जारी रखे ना, तो उससे मिलने वाली शिक्षा का प्रचार होगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी कुछ तो अपनी जिम्मेदारी और प्रेम के प्रति सजग होगी, जागेगी।
2: आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल काका की तरह। असल में आप जैसे ही यहाँ बस से उतरे ना, तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम का वो यात्री याद आ गया, अमरचंद बांटिया। काफी कुछ आपकी सी ही छवि थी उस महान शहीद की भी।
3: अच्छा, अरे भाई आपके काका तो है नहीं आज, आप ही कुछ बताइए, कौन थे अमरचंद बांटिया?
2: काका से सुना था, जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ याद है अमरचंद बांटिया के बारे में, बताने की कोशिश करता हूँ। बात तब की है जब श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चल समारोह बीकानेर से ग्वालियर की ओर गया था, और इसमें एक इतिहास भी चल रहा था।
3: इतिहास चल रहा था?
2: हाँ, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। असल में इसी यात्रा में सेठ हमीरचंद बांटिया अपने परिवार और पुत्र अमरचंद के साथ व्यापार व्यवसाय की खोज में ग्वालियर जा पहुंचे। ग्वालियर में प्रतिमा की स्थापना हुई और अमीरचंद भी अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। अमीरचंद का पुत्र अमरचंद अक्सर मंदिर जाया करता,

0: आओ अमरचंद जी।
1: क्या चल रहा है महाराज?
0: बस ये सन्यासी आए हैं बाहर से, देश का हाल जान रहा था।
2: बुरी हालत है देश की भाई, अंग्रेजों के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
1: तकलीफ तो ये है कि हमारी अपनी ही कमजोरियों के कारण ये बाहर से आए व्यापारी शासक बन बैठे हैं।
2: ये सब गद्दारों की घुसपैठ का नतीजा है अमरचंद। ये अंग्रेज हमारे ही सैनिकों को तो भेजते हैं मरने कटने के लिए।
3: बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बंगाल से आया सन्यासी हूँ और सैनिकों की बात चली तो खुद को रोक नहीं पाया। एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठेगी।
1: बताएं महाराज।
3: बात तब की है जब बर्मा से युद्ध छिड़ा था। अंग्रेज सेना अधिकारियों ने 700 बंगाली सैनिकों को गोलियों से भून दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि सैनिकों ने बैलों के पीठ पर बैठकर जलमार्ग से रंगून जाने से मना कर दिया था।
2: घोर अत्याचार, 700 सैनिकों को मार डाला।
1: अंग्रेजों ने सैनिकों पर नहीं हमारे अस्तित्व पर गोलियां चलाई। ऐसे क्रूर अत्याचारियों को तो खदेड़ दिया जाना चाहिए देश के बाहर।
2: हाँ, इन्हें भगाना ही होगा बाहर।
1: एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, आप साधु सन्यासी लोग आत्मा को जगाने के पुण्य काम में तो लगे ही हैं, लोगों की आप पर आस्था भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सब मिलकर इस देश को अपनी आजादी के लिए जगाने का काम करें तो इससे बहुत मदद होगी।
3: हाँ हाँ, अवश्य अवश्य
4: अवश्य
3: अवश्य, अब तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे।
5: हम सब अवश्य इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे अमरचंद भाई।
3: हाँ भाई अवश्य।
6: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अवश्य।
1: इस मुक्ति आंदोलन का मैं भी हिस्सा बनूंगा। याद रखें, इस देश का पहला मुक्ति आंदोलन सन्यासी फकीर विद्रोह था। आप जन जागृति के साथ क्रांति की योजनाओं में भी सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

0: क्या अमर चंद बाठिया यही रहते हैं?
1: जी हाँ, क्या बात है?
0: उन्हें ही बताएंगे, अमर चंद जी को बुलाइए।
1: अच्छा भाई।
2: कहो सिपाही, मैं ही अमरचंद बाठिया हूँ, क्या बात है?
0: राजा अधिराज महाराज जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में तुरंत बुलाया गया है आपको।
2: परंतु क्या मैं कारण जान सकता हूँ?
0: मुझे सिर्फ इतना ही आदेश था, आप जल्दी दरबार पहुँचें।
2: ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ।

0: जीवा जीराव सिंधिया की जय। महाराज के दरबार में अमरचंद बाठिया हाजिर हो।
1: महाराज की जय हो। मुझसे क्या अपराध हुआ महाराज, जो अचानक बुलवा भेजा आपने?
2: आप पहले आसन ग्रहण करें अमरचंद जी, फिर अपराध भी बताया जाएगा। सिपाही, दीवान साहब को बुलवाओ।
3: जो आज्ञा महाराज।
0: राजाधिराज, महाराजा सिंधिया के दरबार में दीवान जी हाजिर हो।
4: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज।
2: आइए दीवान जी, मुझे आपसे गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह करनी थी।
4: जी महाराज, इस पद के लिए हमें सचरित्र, ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति की आवश्यकता है, और जिसकी तलाश आपके आदेशानुसार जारी है महाराज।
2: ना ना दीवान जी, अब आपको तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने एक सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ लिया है।
4: अच्छा, कौन है वो महाराज?
2: सराफा में रहने वाला व्यापारी अमरचंद बाठिया।
4: महाराज, मैं अभी प्रबंध करता हूं उन्हें बुलाने का।
2: कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दीवान जी, वो यहीं उपस्थित हैं।
1: मैं? महाराज, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
2: इसीलिए तो हमने तुम्हें चुना है अमरचंद। नाना, घबराओ नहीं, तुम पूरी तरह से इस कार्य के लिए योग्य हो।
1: धन्य हो महाराज, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ग्वालियर राज्य के कोष का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।
2: हमें तुम पर पूरा भरोसा है अमरचंद। आज मैं जीवाजीराव सिंधिया अमरचंद बाठिया को ग्वालियर का कोषाध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से अमरचंद बाठिया ग्वालियर के भामा शाह हुए।
4: बधाई हो भामा शाह, बधाई हो।
5: दस मई 1857, भारत में आजादी की पहली जंग छिड़ी। पूरा देश इस महाक्रांति में भाग ले रहा था। मेरठ से शुरू हुआ क्रांति का यह सिलसिला ग्वालियर तक आ पहुंचा। ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई सिंधिया ने स्वाधीनता संग्राम में क्रांति की अलख जगाने के लिए यात्रा के बहाने आगरा, फतेहगढ़, प्रयाग, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, भोपाल रियासत और उज्जैन का दौरा किया। इस बीच अंग्रेजों के साथ मुकाबला भी हुआ। इसी दौरान महारानी बैजाबाई सिंधिया ने ग्वालियर आकर अमरचंद बाठिया से मुलाकात की।
1: महारानी की जय हो। आपको यहाँ देखकर हमारा हौसला बढ़ गया है महारानी।
6: इस समय हम बहुत जल्दी में हैं अमरचंद, हमें तुरंत दिल्ली जाना होगा।
1: आपके शौर्य को प्रणाम महारानी जी।
6: हमारे इस अभियान में एक समस्या है जिसे सिर्फ तुम हल कर सकते हो भामाशाह।
1: आप आदेश कीजिए महारानी, मैं तैयार।
6: हमने मेरठ छावनी के सिपाहियों को दिल्ली कूच के लिए तैयार तो कर लिया है, लेकिन समस्या अर्थ की है और हम वचन दे चुके हैं कि पूरा खर्च हम उठाएंगे।
1: आप फिक्र ना करें महारानी जी, अपना गंगाजली राजकोष है ना, जनता के लिए ये कोष हमेशा खुला है। बस एक अफसोस है कि महाराजा आप।
6: महाराज जीवाजीराव सिंधिया अभी अपरिपक्व हैं। उस दीवान के इशारे पर यह सब हो रहा है। खैर, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की खुशहाली के लिए स्वाधीनता यज्ञ में आगे बढ़ें। ये वक्त क्रांति में कूद पड़ने का है भामाशाह।
1: जी महारानी जी, आप आवश्यक राशि ले लीजिए।
6: पर अमरचंद, कोष हमें दे दोगे और तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो?
1: देश की स्वाधीनता के लिए हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं महारानी जी।
6: तुम्हारी सहायता से राष्ट्र को गर्व होगा अमरचंद।
5: साल भर के लगातार संघर्ष के बाद 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच क्रांति के महानायक तात्या टोपे, झांसी की रानी और नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में जा पहुंचे और सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों के साथ थी।
7: सेना क्रांतिकारियों के साथ थी, मतलब जीवाजी राव?
5: हाँ, जीवाजी राव सिंधिया और दीवान आगरा ब्रिटिश कमिश्नर के यहाँ जा पहुंचे और यहाँ ग्वालियर का शासन संचालन क्रांतिकारियों के हाथ में था। तभी आर्थिक संकट पड़ा और तात्या टोपे ने ग्वालियर के भामाशाह अमरचंद बाठिया से बात की और तुरंत उनको रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब से मुलाकात के लिए बुलवाया।
8: आइए भामाशाह अमरचंद, पधारिए।
1: देश रक्षा के इस युद्ध अभियान के आगे मेरा नमन स्वीकार करें रानी साहिब।
8: इस संकट की घड़ी में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है।
1: ये हम सबका संकट है महारानी।
9: ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों और हमारी सेना के सैनिकों को युद्ध अभियान के दौरान कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, उनके हौसले टूट रहे हैं।
1: नहीं महाराज, स्वराज्य प्राप्ति के लिए हौसले टूटने नहीं चाहिए।
8: तो आप हमारी मदद करेंगे ना?
1: मदद नहीं महारानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने प्रजा की खुशहाली के लिए ही तो कोष का उपयोग करने की शपथ ली थी, अब तो उस संकल्प को पूरा करने का समय आया है।
8: तुम्हारे कर्तव्य और ईमानदारी को हमेशा याद रखा जाएगा भामाशाह।
1: मैं अभी खजाने से धनराशि राव साहब को दिए देता हूँ।
8: बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी, अब हमारे सैनिकों की तलवारें दुगने उत्साह के साथ गरजेगी।
1: जीत हमारी ही होगी।

0: फिर क्या हुआ?
1: 1857 की क्रांति कहने को तो असफल रही, पर पूरे देश में जन जन में आजादी की ललक को जगा गई। देश आजादी की चाह में जलने लगा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। इधर राजकीय कोष क्रांतिकारियों में बांट दिए जाने के कारण अमरचंद बांटिया पर मुकदमा चला।
2: आदर आदर आदर, अमरचंद बांटिया, तुम पर दोहरे राजद्रोह का आरोप है।
3: दोहरे राजद्रोह को स्पष्ट करें ब्रिगेडियर नेपियर।
2: इन पर जो चार्जेस लगाए पर के सुनाओ।
4: ग्वालियर के भामाशाह श्री अमरचंद बाठिया पर पहला आरोप है कि अमरचंद ने ग्वालियर स्टेट के गंगा जली कोष का पैसा लक्ष्मीबाई के विद्रोही सैनिकों में बांटा, जो ग्वालियर राज्य के प्रति द्रोह है। दूसरा आरोप कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह है।
3: आपके दोनों आरोप गलत हैं ब्रिगेडियर।
2: तुम अपने बात को साबित करो अमरचंद।
3: जब मैंने अपने गंगाजली कोष का धन सैनिकों में वितरित किया, तब ग्वालियर राज्य पर रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब का अधिकार था। मैंने रानी की आज्ञा का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाया है, राजद्रोह नहीं किया।
2: दूसरा आरोप को साबित करो।
3: आपका आरोप है मैंने कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह किया, परंतु हम कंपनी सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। आपने छल बल से हमारे राज्य को हथिया लिया है, इस नाते आप हमारे दोस्त नहीं है नेपियर। और दुश्मनों का नाश करने के लिए राष्ट्र कोष खोल देना राष्ट्रभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
2: नो नो नो, डू नॉट स्पीक एनी मोर, आगे बोलना ना, वरना यही शूट कर देगा। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। इस भामाशाह को सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। Hang his body on the tree in front of his house.
1: June 22, 1858 के दिन ग्वालियर के सराफा में अमरचंद बांटिया को उन्हीं के घर के सामने नीम के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था। और तो और, उनकी देह को दुर्गंध आने तक वहीं लटके रहने देने के आदेश थे। अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार इंतजार करता रहा, पर लोग रुके नहीं। उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े।
5: हे बलिदानी, आप अमर हैं। आपकी देह से फैलने वाली दुर्गंध अनाचार और अत्याचार का साक्ष्य बनकर दूर दूर तक पहुंचेगी। एक एक देशवासी आपके बलिदान की सौगंध खाकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। हम आपके देश को स्वतंत्र कराएंगे। भाइयों बोलो, भामाशाह अमरचंद बाठिया
6: अमर रहे।
5: भामाशाह अमरचंद बाठिया
6: अमर रहे।
5: हमर

0: ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जंग में लड़ना या विद्रोह करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता आजादी प्राप्त करने का। अपनी आजादी के लिए तो हम अन्याय के खिलाफ चुप ना रहकर आखिरी दम तक लड़ सकते हैं, जो अमर चंद जी ने किया। वो तो कोई सिपाही नहीं थे, पर वो जो थे, जहां थे, वहीं रहकर उन्होंने निष्ठापूर्वक अन्याय के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी।
1: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज हम लेकर आए आपके लिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, और स्वास्थ्य चर्चा में आज जिस विषय पर बात होगी वो विषय है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, त्रिषा कौशिक जी। त्रिषा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: त्रिषा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आईं और आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, फिर क्यों और कैसे आईं इस फील्ड में।
2: मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ, मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज सब मेरा भोपाल से ही हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की NIT भोपाल से, फिर मैं BHEL भोपाल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में कार्यरत थी। वहाँ मैंने लगभग 7 साल काम किया ट्रांसफार्मर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट में। तो इस फील्ड में मैं ऐसे आई कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। हेल्थ इश्यूज़ पहले से ही थे पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक बार यहाँ पे, एक भोपाल में ही मार्केट है, वहाँ मैं कुछ सामान खरीद के आ रही थी तो मैं बेहोश हो गई। फिर सारे डायग्नोसिस हुए, सब टेस्ट हुए तो पता लगा मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम था, वो लगभग 5 था। तो वहाँ से फिर मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ट्रिगर हुए। एनीमिया तो था ही, साथ में धीरे धीरे फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होने लगे, पैनिक डिसऑर्डर होने लगा, सीवियर सोशल एंग्जाइटी। और ये लगभग 8-10 साल, मतलब आप समझिए कि 18-19 साल से लेके लगभग 27-28 साल की उम्र तक ये चलता रहा। और फिर उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, जिसको हिंदी में सम्मोहन चिकित्सा बोला जाता है, आई केम अक्रॉस दैट। और उसमें मुझे अपनी जो भी परेशानियां थी उसका सल्यूशन मिलना शुरू हुआ। तो इस तरीके से अपने ही परेशानियों का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते, समाधान ढूंढते ढूंढते मैं इस फील्ड में आ गई।
1: ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या, एक बार आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं।
2: देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मतलब ये है, पास्ट लाइफ, नाम से ही पता चलता है कि ये पिछले जन्म की कोई बात है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस जीवन काल में जो हम फेस करते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, जो भी हम कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, उसके पीछे हमको बहुत बार लॉजिक नहीं मिल पाता। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को शरीर में कुछ तकलीफ होती है, पर वो टेस्ट कराएंगे अगर मेडिकली सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं, पर इंसान तब भी तकलीफ में होता है।
1: ठीक है,
2: तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस जन्म का नहीं है, ये कुछ पहले से आ रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का ये मतलब है कि जो इस जन्म, जैसे अभी का मेरा जन्म है त्रिषा का, उससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उसमें कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसका प्रभाव आज मेरे इस जीवन काल पे आ रहा है। तो हम उस पास्ट लाइफ में जाते हैं, उसमें रिग्रेस पैक करते हैं सेशंस में, और फिर उसका पूरा तरीका होता है कि जो भी वहाँ ट्रॉमा हुआ या जो भी वहाँ पे चीज़ें अधूरी रह गई, जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज थे जिससे आज जीवन पे प्रभाव आ रहा है, उसको हील किया जाता है। इसीलिए ये थेरेपी है।
1: आपने थेरेपी समझाई, तो जब जो लोग इस अवस्था से गुजरते हैं जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा होता है, या अगर हम उसके लिए मरीज शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति जो इस से गुजरता है, जिसे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी अब इसको थोड़ा मतलब सरल भाषा में कहें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप उसे और समझाइएगा कि वो अपने पूर्व जन्म की कुछ घटनाओं को उसके जीवन में पुनर्वृत्ति होती है, इसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहेंगे।
2: रिग्रेशन का मतलब देखिए ये होता है, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना।
1: हाँ,
2: तो मतलब जो भी इंसान है जो इस थेरेपी को अंडरगो कर रहे हैं वो अपने पास्ट लाइफ में
1: बात करेंगे। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि हर तुरंत तो आदमी थेरेपी पे आया नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ सामान्य आदमी जिसके साथ ये होना शुरू हुआ है, तो जब वो आप, चलिए इस बात को ऐसे करते हैं कि जब उस जिस इंसान के साथ कोई भी इस तरह के थॉट्स उसे आ रहे हैं, तो वो स्वयं या उसके परिवार का व्यक्ति, पहली बात तो वो कैसे डायग्नोस करे इस बात को कि उसे आपकी जरूरत है और ये जो हो रहा है वो उसके पूर्व जन्म के थॉट्स, या जो आप कह रहे हैं कि उसे इस तरह की अवस्था में आ गया, ये आप कैसे डायग्नोस करते हो कि वो इस अवस्था में है?
2: जी, तो देखिए, जब भी कोई परेशानी में होता है, हम सबके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, और हम किसी भी थेरेपिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हम उस परेशानी से हम खुद डील नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हमारा आज सुबह उठ के सिर दुखा तो हम उठते ही तो डॉक्टर के पास नहीं चले जाते।
1: बिल्कुल,
2: हम पहले खुद कोशिश करते हैं कि डाइट ठीक ले लें, या हम ठीक से नींद नहीं हुई है उससे ठीक हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। वैसे ही अगर कोई भी परेशानी जीवन में है, पहले हम खुद डील करते हैं। जब हमें लगता है वो चीज़ हमारे बस की बाहर हो गई है, तब वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट होता है, एक पार्ट है उसका। ठीक है। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अनुसार कोई भी इशू लाइफ में, कोई भी समस्या ज़िंदगी में, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, या वो कोई रिलेशनशिप इशू हो, या फाइनेंशियल इशू हो, कोई भी समस्या, वो या तो पास्ट लाइफ से आती है या इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आती है, जिसको टेक्निकली इनर चाइल्ड हीलिंग बोला जाता है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है।
1: फॉरेन एनर्जी से क्या मायने आपका?
2: फॉरेन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमसे फॉरेन है, वो हमारी खुद की नहीं है।
1: अच्छा,
2: ठीक है। तो वो किसी जिंदा इंसान या एनिमल की एनर्जी हो सकती है, या वो किसी मरे हुए इंसान या एनिमल की ऊर्जा हो सकती है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
1: अच्छा,
2: ओके। तो कोई भी समस्या, जैसे मैंने आपको बताया, तो पास्ट लाइफ या करेंट लाइफ ट्रॉमा या फॉरेन एनर्जी हो सकती है, या कोई तीनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है। तो इसको देखने का, इसको चेक करने का तरीका होता है कि जो समस्या किसी इंसान को हो रही है वो पास्ट लाइफ से आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है। वो हम थेरेपी में ही चेक करते हैं।
1: अच्छा, मतलब कोई
2: ऐसे देख के मैं नहीं बता सकती कि आपका पास्ट लाइफ इशू है।
1: हाँ, मतलब आप जो भी, आपके जब वो उस अवस्था का मरीज आपके पास पहुँचता है तो आपकी थेरेपी का कोई हिस्सा है जिससे आप ये डायग्नोज कर पाते हैं।
2: बिल्कुल। और उनके ये सबकॉन्शियस माइंड से जाना जाता है, उनके अवचेतन मन से जाना जाता है कि ये जो पास्ट लाइफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: अच्छा,
2: देर इज अ टेक्निक टू इट।
1: ठीक है, ठीक है। वो एक मतलब टेक्निकल बात। तो कोई एग्जांपल दे के आप, जैसे हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते, अगर आप अपना कोई केस याद करें जो आपके पास आए हों,
2: जी जी,
1: तो उनमें क्या आपने सिम्टम्स देखे, या फिर वो थेरेपी में क्या चीज़ें आपके सामने आई तो जिससे आपको पता चला कि ये केस, दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
2: जी, जैसे मेरे पास एक, मैं आपसे केस शेयर करती हूँ, उनके पास लाइफ में सब कुछ है।
1: हाँ,
2: ठीक है, जो एक बेसिक लाइफ में होना चाहिए, ठीक ठाक पैसा है और ठीक ठाक सेहत है, हम जैसे जिस ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जिसे बोलेंगे जीना चाहते हैं, वो सब कुछ है। पर फिर भी वो अपनी लाइफ में जो भी प्लेजर्स होते हैं, यानी कि कहीं शॉपिंग करना, मूवी देखना, यू नो, कहीं घूमने जाना, तो वो सब वो इन्जॉय नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो जब इन्जॉय नहीं कर पा रही थी तो एक लेयर उसकी पास्ट लाइफ की निकली और हमने पास्ट लाइफ में देखा कि वो उस लाइफ टाइम में उनके जो पेरेंट्स थे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे।
1: अच्छा,
2: ठीक है। और पेरेंट्स जो थे वो बहुत रईस परिवार के नहीं थे, मतलब बस चल रहा था जीवन कैसे भी, थोड़ा सा इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये बच्चे ने डिसाइड किया, अच्छा इस लाइफ टाइम में वो फीमेल है, उस लाइफ टाइम में वो मेल थी।
1: अच्छा,
2: ठीक है। तो वो जो बच्चा था उसको लगा कि मेरे माँ बाप तो इतने स्ट्रगल से निकल रहे हैं, तो बेटर है कि मैं किसी मॉनेस्ट्री में जाके रह लूँ, ताकि खाना पीना सब वहाँ हो जाएगा। तो वो बच्चा मॉनेस्ट्री चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के। अब जब वो वहाँ गया तो उसने एक वाव ले लिया, जैसे हम बोलते हैं ना, एक खुद में ही एक शपथ ले ली कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं कर सकते।
1: अच्छा,
2: और ये जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलेगी। ठीक है। तो वो क्या हुआ उस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो मॉनेस्ट्री चला गया, उसने अपना बहुत आध्यात्मिकली, अपने आप पर बहुत स्पिरिचुअली काम किया, आध्यात्मिक उसमें ये बहुत ऊपर पहुंचे, बट मरते समय उनको एक दुख था कि मैंने स्पिरिचुअली तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, पर जो जिंदगी के छोटे मोटे प्लेजर्स भी हैं उसको मैंने एंजॉय नहीं किया, बड़े तो छोड़ दो, मैंने कुछ जिंदगी को ठीक से भोगा नहीं।
1: वो यही थॉट्स उसको अपनी,
2: और वो इसके साथ मर गए।
1: अच्छा, ये पुरानी लाइफ में हुआ।
2: हाँ,
1: ठीक है।
2: अब इसके साथ वो इस सैडनेस के साथ चले गए। अब हुआ क्या था कि उस लाइफ टाइम में उन्होंने एक वाव ले लिया था।
1: वाओ यानी शपथ के बारे में बात करें, ऐसा
2: शपथ मान मतलब किसी और ने नहीं दिलवाई, जैसे हम अपने मन में ही एक
1: तय कर लिया था,
2: खुद तय कर लेते हैं कि मैं नहीं एंजॉय करूंगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पा रहे, और उसके साथ वो जीवन खत्म हो गया। अब जब वो जीवन खत्म हो गया तो इस जिंदगी में किसी कारण से वो पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
1: अच्छा,
2: तो देखिए होता क्या है, हमारी जितनी भी पास्ट लाइफ्स
1: मतलब होती है, वर्तमान लाइफ में भी वो उसी अवस्था में आ गए जो पहले था, जब वहाँ भी उन्होंने माना था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा और एंजॉय नहीं कर पा रहा, और अब भी वैसे ही आ गए।
2: हाँ, पर अभी वैसे क्यों हुए, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये पास्ट लाइफ उनकी ट्रिगर हो गई।
1: ठीक है,
2: और ये पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: हमें देखिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स होती हैं पर वो सारी एक्टिवेटेड नहीं रहती।
1: ठीक है,
2: किसी कारण से वो इस जीवन काल में पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो गई और उनका थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड, वो जो पर्सनालिटी थी उस जीवन काल की वो सबकॉन्शियसली प्ले कर रहा था और वो बोल रहा था कि मैं प्लेजर्स ऑफ लाइफ या जीवन में जो भी भोगना है मैं उसको एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं कर पाते। तो वो इस जीवन काल में भी जो कुछ भी अच्छा हो रहा था उसको उसको जी नहीं पा रहे थे वो ठीक से।
1: इसको भी छोड़ दिया अच्छा होते हुए।
2: हाँ
1: अब तो यहाँ तो सब कर सकते हैं, वो जो हो गया वो तो हो गया।
2: करेक्ट।
1: लेकिन अब वर्तमान में कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दिस इज द केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
2: करेक्ट। तो वो जैसे ही उनको पता चला अच्छा ऐसी पास्ट लाइफ थी, उन्होंने अब स्वयं से उन्होंने एक अपने
1: फिर मान लिया
2: कि मेरे को ये एंजॉय नहीं करना, तो वो इस जीवन काल को भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे।
1: तो फिर वो किसी भी तौर पे आप तक पहुंचे, फिर आपने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा होगा।
2: हाँ,
1: यहीं से एक बात की निकल के आती कि ये तो वो केस है जो आपके पास आया था, जैसे कि अपन ने बात करी और आप हमने बात भी कही थी कि ऐसा कोई केस बताएं आप जो आपके पास आया हो ऐसा।
2: जी।
1: अगर हम नए किसी व्यक्ति की बात करते हैं, अभी मान लीजिए कि मेरे मतलब काफी कम लोग हैं, लेकिन कई लोग कई मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते कोई नया अगर कोई व्यक्ति इस चीज से सफर कर रहा हो, तो वो स्वयं या उसका घर का व्यक्ति कब ये तय करे कि उसे आपके पास जाना, इसके कुछ सिम्टम्स उन्हें खुद मिलते हैं क्या, या अगर हम अभी बता पाएं अपने कार्यक्रम के माध्यम से
2: कि
1: अगर वो अपने परिवार में या व्यक्ति में ऐसा कुछ देख रहे हैं तो वो आप तक या आप जैसे किसी क्लिनिकल मतलब थेरेपिस्ट के पास पहुंच सकें।
2: देखिए क्या होता है कि लाइफ में जब भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम हिंदी में चेतन मन बोलते हैं, वो उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं इसका एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ कि किसी के पैर बहुत दुख रहे हैं और वो बहुत टाइम से दुख रहे हैं। सब कुछ कर लिया, मालिश करवा ली, सब करवा लिया, पर पैर दुख रहे हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, डायग्नोसिस होगा और उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण निकलेगा। तो वो कारण जो समझ में आएगा कि कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में, कोई विटामिन कम है, कुछ मिनरल कम है, जो भी है उसके कारण ये तकलीफ हो रही है। तो चेतन मन जो होता है वो हमेशा क्यों का जवाब ढूंढता है। अब लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके पीछे हम कितना भी तर्क लगा लें, लॉजिक लगा लें, हमको क्यों का जवाब नहीं मिलता। तो जब जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, चैलेंज हो रहा है, जिसके पीछे क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है।
1: इससे एक बात और निकल के आती है त्रिशा जी के, मतलब क्या माने हम के भाई, देखिए जैसे अभी अपन ने बात करी कि कोई ये फील करता है, जैसे आपने बताया कि जब उसको अपने क्यों का उत्तर ना मिल रहा हो, तो सामान्यतः लोग आपके पास ही थेरेपी के लिए आ जाएं पहले, ये बेटर है, या वो साइकेट्र, क्योंकि लोग साइकेट्रिस्ट को आप जानते हैं, लोग सामान्यतः साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले ये समझ पाएं
2: जी जी,
1: कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं इस थॉट्स को लेकर या पहले किसी थेरेपिस्ट से मिल लें।
2: देखिए ये जो है ये डिसीजन इंसान ही लेगा जिनको तकलीफ हो रही है, पर मैं थोड़ा सा
1: अच्छा, इसको अगर ऐसे बात करें कि इसको आप जैसे आप थेरेपिस्ट हैं तो आप इसे किस श्रेणी में रखते हैं, क्या उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आप उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे या केवल इसको कैसे मतलब अलग थिन लाइन होगी संभवतः। मैं इसको यूं भी कह लेते हैं कि आपके पास आने वाला जो मरीज है वो और साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला मरीज, इनके बीच में कोई एक थिन लाइन है,
2: पूछे ना तो मैं जो जवाब दे सकती हूं
1: वो बताइए आप, क्या अंतर होगा उनमें, कैसे अंतर करें एक सामान्य आदमी और आप।
2: देखिए जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ब्रेन में काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं या ब्रेन की क्या केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, और वो मेडिसिंस भी देते हैं। जो हिप्नोथेरेपी होता है या उसका जो एक पार्ट होता है विच इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होता है और इसमें हम ऊर्जाओं पे ज़्यादा काम करते हैं।
1: अच्छा।
2: ऐसा नहीं है कि बॉडी पे काम नहीं होता, बॉडी पे भी काम होता है, पर अब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे या क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो पदार्थ या मैटर से पहले आती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हम खुश हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखती है,
1: बिल्कुल,
2: हम दुखी होते हैं तो हमारी शक्ल अलग दिखने लगती है। अब शक्ल तो एक ही है,
1: बिल्कुल,
2: पर क्योंकि अंदर ऊर्जा का प्रवाह चेंज हो गया तो उससे जो मैटर है जो कि हमारा चेहरा है वो अलग दिखने लगता है। तो हमेशा एनर्जी जो होती है वो मैटर को डिटरमिन करती है। तो ये जो थेरेपी है इसमें हम सारे स्तरों पे काम करते हैं। अच्छा। हम थॉट पे भी काम करते हैं यानी कि मानसिक स्तर पे, हम इमोशंस पे भी काम करते हैं यानी कि भावनात्मक स्तर पे, हम ऊर्जा के स्तर पे भी काम करते हैं जिसको एनर्जी बॉडी या प्राण शरीर बोला जाता है, और हम फिजिकल बॉडी पे भी काम करते हैं। अब देखिए किसके पास जाना चाहिए ये हमेशा जो इंसान तकलीफ में है ये उनका डिसीजन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसने रिजल्ट नहीं दिए होते तो वो अभी तक गायब हो गया होता। तो ये निर्भर करता है जो इंसान तकलीफ में है उन पे, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिप्नोथेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो अराउंड 93-94% सक्सेस रेट है इस थेरेपी का। अच्छा। लोग अभी भी इसके बारे में बहुत जानते नहीं हैं, पर ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है।
1: हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अब आप हम एकदम थोड़ा विस्तार से भी कहेंगे आपसे, या जो आपका प्रैक्टिकल तरीका है आप ऐसे ही बताइए कि जो आपके पास मरीज आता है या आया,
2: जी जी,
1: फिर वही किसी वो डिपेंड आप जैसे भी करना चाहें किसी मरीज को ध्यान में रख के कि आपकी जो थेरेपी इसमें क्या क्या, जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास अगर इंसान जाता है
2: अच्छा,
1: तो वो कोई टेस्ट लेते हैं संभवतः और वो मेडिसिन देते हैं, फिर 10 दिन बाद चेक करते हैं, यही एक सामान्य तरीका होता है। वो आपके पास जब कोई आता है तो आपका क्या तरीका होता है, कैसे ट्रीट करते हैं?
2: जो भी हमारे पास तकलीफ लेके आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी उनकी समस्या है वो कहीं से भी आ सकती है, वो पास्ट लाइफ से आ सकती है, इस जीवन काल के किसी ट्रॉमा से आ सकती है, या वो कोई फॉरेन एनर्जी हो सकती है। कभी कभी जो समस्याएं होती हैं वो एंसेस्ट्रली भी आती हैं, जिसको हम आम भाषा में या एक पर्टिकुलर रिलीजन में हम

0: ठीक है, ताकि पता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। दूसरे सेशन से जब हम सम्मोहन चिकित्सा वाले सेशन शुरू करते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो उसका पार्ट होता है, हर सेशन जो होता है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है और शुरुआत में 15-20 मिनट लगते हैं, जिसमें जो भी इंसान है जिनको तकलीफ है उनको एक सम्मोहन की स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हिप्नोसिस के स्टेट में या ट्रांस के स्टेट में पहुंचाया जाता है, जिसमें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को एक्सेस कर लेते हैं। फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कुछ कमांड देते हैं और जैसे जैसे कमांड दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अवचेतन मन उससे रिलेटेड चीज़ें सरफेस पर लाने लगता है। तो अगर कमांड दिया कि आपका वो भाग ऊपर आएगा जिसने इस जीवन काल में पहली बार गुस्सा महसूस किया, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रिसाइज होता है। अभी मैं आपसे कॉन्शियसली पूछूंगी आपको जिंदगी में पहली बार कब गुस्सा महसूस हुआ, आप बोलोगे मुझे याद नहीं है, पर अवचेतन मन को पता होता है। तो वो 2 साल की उम्र में हुआ, 1 साल की उम्र में हुआ कि 4 साल की उम्र में हुआ, जब भी पहली बार गुस्सा महसूस हुआ वो सामने आके खड़ा हो जाता है वो पार्ट। तो 2 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया सपोज, फिर उसको पूरा हीलिंग करने का प्रोसेस होता है। तो ऐसे एक सेशन जो होता है वो 1.5-2.5 घंटे का होता है। इसमें मन की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुछ भी दवाइयाँ नहीं दी जाती, इसमें कुछ भी एनेस्थीशिया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति को लेके, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज यूज टू हील एनी इशू।
1: अभी जितनी बात हुई उसमें प्रश्न दो निकल के आपकी बात से, उसमें पहला प्रश्न मैं आपसे जाना, फिर उस पर दूसरे पाएंगे पितृदोष वाले पे। पहला ये कि जो आपका ये थेरेपी है ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन है? अभी
0: देखिए हिप्नोसिस का जो स्टेट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है।
1: अच्छा,
0: तो हिप्नोसिस को हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें,
1: मतलब मेडिकल साइंस भी उसका पार्ट है।
0: उसमें उसमें ब्रेन वेव्स लोअर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है। जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है वो जो होती है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की,
1: मतलब साइंटिफिकली प्रूव है। एक तो
0: हिप्नोसिस का स्टेट साइंटिफिकली प्रूवन है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की अगर बात करेंगे तो उसका पीछे साइंस हम नहीं लगा सकते, पर उसके देखिए उसके क्या प्रूफ आए हैं कि बहुत लोगों ने पास्ट लाइफ में कुछ देखा,
1: ठीक है,
0: और वो जगह उन्होंने करेंट लाइफ में नहीं देखी है, ठीक है, वो गए भी नहीं उस जगह पे, पर उन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो जगह देखी और उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे एक ऐसा घर है, उसके नीचे ये सामान गड़ा हुआ है, और जब उन्होंने जाके उसको फिजिकली वेरीफाई किया तो वो चीजें एक्चुअली थी। दूसरा, ये बहुत ही आम सवाल होता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं। देखिए एज ए थेरेपिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद अगर जिनको जो समस्या थी वो ठीक हो गई है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट,
0: वो सबसे बड़ा प्रूफ,
1: ये सबसे बड़ी सही बात। मतलब एक थेरेपी हमने करी वो खर, वो आपके पॉइंट में अच्छी बात। दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, पितृदोष का भी आपने जिक्र करा था,
0: जी जी,
1: तो आपकी जो थेरेपी है इसमें पितृदोष पर भी आप जब ध्यान देते हैं तो क्या क्या माने ज्योतिष से जुड़ी हुई है आपकी थेरेपी?
0: देखिए ये ज्योतिष से तो नहीं जुड़ी हुई है, वो अलग ही साइंस है। यहाँ पे हम फिर से अवचेतन मन से देखते हैं कि जो भी समस्या आ रही है उसका कोई एंसेस्ट्रल ओरिजिन तो नहीं है, पितरों से तो नहीं आ रही है, और अगर वो पितरों से आ रही है तो फिर उसको भी हील करने का एक तरीका होता है। पर हम इसमें किसी का नेटल चार्ट या किसी की हम पत्रिका देख के कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें अवचेतन मन के जरिए ही पता लगाया जाता है कि ये एंसेस्ट्रली आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: मतलब कुल मिला के वो हम अगर सरल भाषा में थोड़ा सा समझें तो ये हमारे श्रोता को ये बात समझ में आ पाए कि वो उनके पेरेंट्स से या पेरेंटल से किस तरह से अगर जुड़ा है तो या नहीं है,
0: जी
1: यही मुझे लगता है इसका। यहाँ
0: पेरेंटल या उनसे भी पहले कोई भी जनरेशन
1: हो जाता है, कभी कभी या दो तीन पीढ़ी या जो भी माने उसे,
0: कभी कभी 14वीं 15वीं जनरेशन पहले से चीजें आती हैं।
1: एक चीज और, जो आपका ट्रीटमेंट है जो थेरेपी है इससे आपने जब देखा होगा आपके पास फर्ज करें 2 सेशन 3 सेशन या आपके पास अलग अलग तरह के लोग आए होंगे जो इससे ग्रसित हैं, तो उनको आपने 6 महीने बाद 4 महीने बाद जो भी एक्स टाइम के बाद देखा, तो आप देखते हैं कि उनमें परिवर्तन आया, लाभ आया, मतलब जो जिस अवस्था
0: में खुद ही समझ में आ जाता है।
1: अच्छा, ये वो कहते हैं आपसे?
0: हाँ, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वायरल फीवर हो गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, 3 दिन का फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया, वो बोलते हैं 3 दिन सुबह शाम जो भी दवाइयाँ हैं वो खा के आना, 3 दिन बाद बताना आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमको समझ में आता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं, फिर डॉक्टर या तो प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं या दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो सेम इस थेरेपी में भी ऐसे ही होता है कि हर सेशन के बाद जिनको जो समस्या थी उनको समझ में आता है कि अब मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट आ गया है।
1: अच्छा,
0: तो ये ज्यादा मायने रखता है कि जो थेरेपी ले रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: और थेरेपिस्ट उनके बारे में कैसा फील कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो समस्या में थे
1: वो कैसा फील कर रहा
0: है, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो मेन है,
1: बंद हो गया या कोई वाली बात।
0: करेक्ट।
1: अच्छा, अगर आप कोई ऐसी कोई अपना केस याद करें तो किस कोई मतलब अगर आप एग्जांपल देके बता पाए कि परिवर्तन उनमें वो आए हों आपकी थेरेपी लेने के बाद,
0: किस तरीके के परिवर्तन?
1: आप अगर अपना कोई भी व्यक्ति को याद करती हैं कि वो आपके पास आए और आपने उनको 2 या 3 एक्स नंबर ऑफ सेशंस दिए, तो उसके बाद उनमें वो चेंजेस दिखे आपको, तो आप बता पाएंगे कि जब वो पहली दफा आपके पास आए थे तो उनके अंदर ये था और फिर 3 सेशन के बाद ये परिवर्तन आ गया या ये लाभ उनको मिला उस तरह से?
0: ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ है। जैसे जब आते हैं तो कुछ होते हैं जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं।
1: अच्छा।
0: और कुछ सेशंस के बाद देखो तो उनका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि शरीर में कुछ तकलीफ है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, और 1-2 सेशंस होते हैं और उसके बाद उनको नी पेन चला गया। एक का तो मैंने देखा था कि 1 सेशन में नी पेन चला गया।
1: अच्छा।
0: एक का देखा था 4 सेशन में लोअर बैक पेन चला गया।
1: अच्छा।
0: तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं।
1: कोई ऐसा कोई केस याद करके बताएं आपके कोई विशेष जिसने आपको बहुत प्रभावित करा हो आज तक के आपने जितने सेशंस लिए, जितने केसेस आपके पास आए, उन केस में कोई स्पेशल केस आपको याद है कि उसमें इस अवस्था से फिर वो बेहतर हुए?
0: जी, ये मैंने काफ़ी जगह शेयर किया है। तो मेरे पास एक आई और उनको बहुत तकलीफ होती थी इस मायने में कि उनका सिर बहुत दुखता था।
1: अच्छा।
0: और फिर उनको एक हाथ बार सीजर्स भी हुए। वो ना बहुत टाइम से इस चीज़ से गुजर रही थी।
1: हाँ।
0: और उन्होंने बहुत जगह दिखाया पर उनको कोई
1: फायदा नहीं हो रहा था।
0: राइट। तो फिर वो आई, उनको लगभग 9 सेशंस लगे और उसके बाद मतलब उनकी एक टाइम पे तो ये स्थिति थी कि वो हॉस्पिटल में 15 दिन रहती थी, 15 दिन बाहर रहती थी, 15 दिन हॉस्पिटल, 15 दिन बाहर, ये उनकी स्थिति थी। और वो जहाँ जहाँ दिखा सकती थी, भोपाल में, बाहर, उन्होंने सब जगह दिखाया। फिर बाय गॉड्स ग्रेस ये 9 सेशंस हुए और वो आई भी इसीलिए कि अब कुछ मेरे पास सोल्यूशन नहीं बचा है तो हाँ। चलो ये भी ट्राई कर लो। उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बोला कि ट्राई करके देखो, और 9 सेशंस के बाद उनकी पूरी तकलीफ ठीक हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। और वो इतनी प्रभावित हुई माइंड के पावर से कि उन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। वो इंजीनियर थी, फिर उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा और अब वो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है।
1: अच्छा, गुड। मतलब ये एक जीवंत एग्जांपल।
0: उन्होंने मुझे बिफोर आफ्टर फोटो भी दिए थे। आप पहले के फोटो जो हैं और जो बाद के फोटो हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नाउ शी इज एबल टू लिव हर लाइफ। और आप सोचिए ना, किसी को 24/7 सिर दुख रहा है तो वो कैसे काम करेंगे। फिर एक और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। एक और थी जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी और जब ये थेरेपी हुई, जिस दिन खत्म हुई उसके 3-4 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है।
1: गुड।
0: एंड उनके कुछ ट्रीटमेंट्स थे, IVF थे, IUI थे, वो भी कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे थे और इसके बाद शी वॉज एबल टू कंसीव। तो माइंड का इतना पावर होता है। हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि मन में बड़ी शक्ति है, मन में बड़ी शक्ति है, पर जब प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में ये देखा है अपने साथ और इतने लोग जो आते हैं, कि मन की क्या शक्ति होती है वो मुझे एक्चुअली सामने सेशंस में दिखाई देता है। कि ये सुनना अलग बात है और उसको जब एक्सपीरियंस करो तो समझ में आता है कि क्या पावर है हमारे मन का।
1: लोगों को इस चीज़ को लेके ये जो ये समस्या है या इसका ट्रीटमेंट, दोनों की बताइएगा आप, कि कुछ भ्रांतियाँ भी हैं तो अगर हैं तो आम भ्रांतियाँ क्या हैं?
0: पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, उन्हें लगता है हम पास्ट लाइफ में तो अटक के नहीं रह जाएंगे।
1: हाँ, पर ऐसा
0: नहीं होता।
1: अच्छा।
0: आज हम बैठे हैं और मेरे साथ 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं याद करके आज भी रो रही हूँ। तो मैं क्या 15 साल की उम्र में अटक के तो नहीं रह गई, मैं फिजिकली तो यही हूँ। तो वैसे ही जो माइंड होता है वो थोड़ा और पीछे चला जाता है, पास्ट लाइफ में चला जाता है। तो उनका मन ही बस ट्रैवल कर रहा है, फिजिकली तो वो यही है तो वो वापस फिजिकल बॉडी में ही आएंगे, तो पास्ट लाइफ में कोई भी अटक के नहीं रहता है।
1: ठीक है,
0: ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है।
1: हुँ.
0: दूसरा ये होता है कि पास्ट लाइफ सही में होती है क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि थेरेपी के बाद लोग उठ के बोलते हैं ये हमारा इमेजिनेशन तो नहीं था, हमारी कल्पना तो नहीं थी। तो मैं उनको बोलती हूँ कि इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता भी है कि आपका इमेजिनेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हीलिंग पूरी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हो रही है और सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं होता।
1: अच्छा।
0: इसलिए आप जब इसके थोड़ी और डिटेल में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, लोग विजुअलाइज करते हैं जिंदगी में कोई चीज पाने के लिए, वो कभी कभी काम कर जाती है। क्यों काम करती है?
1: इसी का हिस्सा हो गई वो,
0: क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है वो अभी एक्चुअल में है और वो उसको ले आता है फिर आपके जीवन में।
1: कई बार कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि वो इंसान को लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है,
0: हाँ।
1: रीजन नहीं निकाल पाता उसे, फील होता अचानक। जैसे अपन एग्जांपल दे कि अभी मान लीजिए मुझे या आप में हम दोनों में से किसी को थॉट आए कि मैंने तो ये इंटरव्यू पहले करा है या हम इसी तरह बैठे थे,
0: बिल्कुल
1: ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं सामान्यतः सबके साथ।
0: डेजा वू बोला जाता है,
1: हाँ। उसका आपने साइंटिफिक, हम तो ये मानते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है ये
0: जी,
1: ऐसे आता है। आज आपसे बात करने से ये बात समझ में आएगी, नहीं ऐसा कुछ सभी के साथ होता है। जब मुझे लगता हुआ कि मेरे साथ होता है या हमारे सुनने वाले श्रोता को लगता है शायद उनके साथ होता अकेले
0: जी।
1: ठीक है, एक बार और के जो श्रोता हमारे अभी पहली बार सुन रहे हैं इस टॉपिक को या अभी इसके, कई सारे ऐसे हमारा मानना ऐसे लोग होंगे जो उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस या इसको एक इस सब्जेक्ट के तौर पे नहीं सुन पाए हों, उन्हें आप क्या सलाह देंगी?
0: मैं ये सलाह दूंगी कि अपने जीवन को अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, या हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफें हैं,
1: ठीक है।
0: और वो जागरूकता अगर मेंटेन रहती है,
1: हाँ।
0: तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह सो के उठे या रात को, जब हम वो एक स्टेट होता है जब हम पूरे सोए भी नहीं हैं, हम पूरे उठे भी नहीं
1: हैं,
0: तो हमको ना एकदम से क्लिक करता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ हो रही है उसमें हमको ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए, और हम वो अप्लाई करते हैं तो हमें सोल्यूशन भी मिलता है।
1: हाँ।
0: पर ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है कि हम जब अपनी ज़िंदगी को अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तो हमें समझ में आता है हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, हमारे क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। हम जैसे हम फॉरेन एनर्जी की बात कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिहेवियर होते हैं जो हम खुद नहीं हैं, वो कुछ और हमारे अंदर से एक्ट कर रहे हैं, तो ये तभी पकड़ में आता है जब हम अवेयर हैं। तो
1: मैं या थेरेपिस्ट के पास पहुँच जाएँ ऐसा कह सकते हैं?
0: देखिए, थेरेपिस्ट के पास भी हम तभी पहुंचेंगे जब हम अपनी परेशानी को लेके अवेयर होंगे।
1: अब देखिए, ये अवेयर होने वाली बात है, ये तो खुद इंसान
0: मुझे पता होना चाहिए ना, मेरा सिर दुख रहा है तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अगर मैं उसको इग्नोर करती रहूं। आप समझ रहे हैं?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पहले अपनी तकलीफ तो पकड़ में आनी चाहिए ना, वो भी तभी आएगी जब आप जागरूक हैं। अब देखिए, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत फिजिकल है,
1: दिख भी रहा है,
0: पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा जो है इसको आप मेजर नहीं कर सकते,
1: इसको मेजर नहीं कर
0: सकते। मुझे दूसरों से बहुत जलन है, या मैं अपने जीवन में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स सब ऐसे हैं।
1: जैसे आपने सबसे पहले केस की बात कही थी, आपने बताया था कि वो इंसान ने खुद ही वाव ले लिया, खुद ही ने शब्द मान लिया कि मैं तो अब खुश रह नहीं सकता हूँ, उस तरह की बात।
0: बिल्कुल। तो अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सब बस मतलब से ही दोस्ती रखे हुए हैं, तो मेरे को पहले तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं, और वो कैसे पता चलेगा? जब हम जागरूक होंगे।
1: बिल्कुल, मतलब अभी तक का जो चर्चा हुई आपसे, ये हमारा टॉपिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, अपने आप में एक तो वास्ट टॉपिक है,
0: काफी
1: फिर उसको समझना और फिर उसको इतनी सरल भाषा में हमने प्रयास पूरा करा और हमें आपका सहयोग मिला कि आपने उसको हमें समझाया, कि क्योंकि इसको पहले तो समझना ही बड़ा मुश्किल है, फिर लग भी रहा था कि इस पर क्या ही बात होगी, लेकिन जो आपसे बात हुई अभी तक की उससे मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि इस तरह की समस्या होती है। क्योंकि अभी जो आपसे बात करी इसके पहले हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता होगा, आपसे बातचीत होने के बाद समझ में आया कि ये तो बड़े आम, मतलब आम सी चीज़ें हैं, आम सी समस्याएं हैं जो लगभग लोगों के साथ होती है, और लोग खुद ही उसको कहीं ना कहीं सुलझा भी लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां उन्हें थेरेपिस्ट तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। और अब उस थेरेपी में हिप्नोटिज्म कहेंगे ना, वो एक उसका ही हिस्सा है,
0: हिप्नोथेरेपी का हिस्सा है, रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी,
1: तो वो एक थेरेपी का ये हिस्सा है, उस तरह से ट्रीट करा जा सकता है, अलग अलग सेशन से करा जा सकता है और आदमी सामान्य जीवन वापस से जी सकता है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है या सिर्फ परेशानी के साथ ही इसके साथ अपना समय गुजारा जाए, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक थेरेपिस्ट के पास उसकी मदद ली जाए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल त्रिषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के विषय हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते रहेंगे, और इस विषय पर भी आगे भी हम प्रयास करेंगे कि और जितनी रोशनी डाल सकें, चाहे त्रिषा जी की मदद से और इनकी तरह के और भी कई थेरेपिस्ट की तरफ से, इसको और विस्तार से भी आगे प्रयास करते रहेंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज हमने बात करी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग था कार्यक्रम में सतीश बाथम का, और मैं हूँ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी आपके साथ। और अब मुझे और त्रिषा जी को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आज हम विचार कर रहे हैं कि विश्व सभ्यता पर स्वामी जी का क्या प्रभाव पड़ा था। विषय थोड़ा कठिन है, अतः इस कड़ी में हम विवेकानंद के कुछ शिष्य तथा रामकृष्ण मठ के स्वामी लोकेश्वरानंद जी के विचारों को भी सुनेंगे।
1: सबसे पहले हमें समझना होगा कि विश्व सभ्यता का अर्थ क्या है। विश्व में अनेक सभ्यताएं हैं। भारत में एक तरह की सभ्यता है और आप चीन जाएं तो वहाँ एक अन्य प्रकार की सभ्यता पाएंगे। ये विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं ऊपरी तौर से तो विभिन्न हैं, पर उनमें कई बातों की समानता है। सभी सभ्यताओं का एक ही लक्ष्य है, आनंद, सभी व्यक्तियों की सुख शांति। प्रत्येक सभ्यता हर व्यक्ति को सुख शांति देने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।
0: इसी बात को समझाते हुए स्वामी लोकेश्वरानंद जी कहते हैं,
2: अब हम सुख को कैसे परिभाषित करें? क्या इसका तात्पर्य भौतिक सुख सुविधाओं से है कि खाने के लिए अच्छा भोजन मिल जाए, पहनने को अच्छे वस्त्र मिल जाएं, रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए? हाँ, ये एक प्रकार का सुख है। जहां तक शरीर का संबंध है, हमें इन चीजों की जरूरत है, ये हमारे लिए अनिवार्य है। हमें निश्चित रूप से धन चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, पर यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए केवल रोटी नहीं, मानसिक सुख शांति भी चाहिए। भौतिक सुख सुविधा तो जरूरी है, पर मन की सुख शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच्चा सुख शरीर में नहीं बल्कि मन में है। भारत की दौड़ इसी मानसिक सुख शांति की ओर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भौतिक सुख निंदनीय और उपेक्षित रहा है, परंतु लक्ष्य हमेशा मन का सुख और हृदय की शांति रहा है।
0: जब हम पीछे मुड़कर हजारों साल पहले मोहनजोदाड़ो के समय पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि उस समय देश उन सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था जो आज आधुनिक कहलाने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। नगर के मध्य सामान्य उपयोग के लिए अद्भुत अत्याधुनिक विशाल स्नानागार, चौड़ी सड़कें, भव्य भवन, बेहतरीन मल तथा जल की निकास व्यवस्था और कुछ अन्य नागरिक सुविधाएं थीं जो आज भी अप्राप्य हैं।
2: भारत बुनियादी भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता से विमुख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मन की शांति को इससे भी ज्यादा जरूरी माना गया है, क्योंकि सच्चा सुख इंद्रिय भोग में नहीं मन की शुद्धि में है। इसी कारण भारत में मानसिक स्तर हमेशा उच्च और श्रेष्ठकर रहा है। मैं किसी को प्यार करता हूँ, यदि वो बुद्धिमान है, शिक्षित है, तो वो मुझे नई रोशनी दे सकता है। मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, कुछ पाने के लिए टटोल रहा हूँ, आप मुझे रोशनी दिखा सकते हैं। आपसे मुझे रोशनी मिल सकती है और मैं आपको परम आदरणीय मानकर शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु भले ही बड़ी मामूली सी झोपड़ी में निवास करते हो, उनके पास मोटर, बंगला, ऐशो आराम के सामान भले ही ना हो, तथापि वे मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं, जो हमें ज्ञान की रोशनी देता है, वो हमारे लिए परम आदरणीय है। सचमुच मन शक्ति, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति ही सच्ची शक्ति है।
1: यही विचार आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने हमें दिया था।
3: ब्रिटिश दार्शनिक जॉन रस्किन ने कहा है, एक विचार में संपूर्ण सेना से कहीं अधिक शक्ति होती है। भारत ने सर्वदा इसी मन की शक्ति में विश्वास किया और तदनुकूल यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई वो शताब्दियों से आज तक अक्षुण्य बनी हुई है। भारत पर घोर विपत्तियां आईं, विदेशियों ने भारत को कंगाल बना डाला, लेकिन भारत फिर भी जिंदा है? वो कौन सी चीज है जिसने इसे सजीव बनाए रखा है, जबकि अति प्राचीन तथा सशक्त मानी जाने वाली यूनानी, रोमन तथा अन्य सभ्यताएं धराशायी हो गईं, काल के गाल में समा गईं? इसका क्या कारण है? वो कारण हमें ढूंढना होगा। आधुनिक इतिहासकार इसका कारण बताते हैं कि भारत ने बौद्धिक समृद्धि को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था उतना ही दिया। उसके पीछे पागल नहीं हुआ, परंतु विचार की उदात्तता यहां सर्वोपरि मानी गई। यहां कोई व्यक्ति भव्य भवन की जगह एक दीनहीन कुटिया में ही क्यों ना रहता हो, तथापि वो सुखी है।
0: स्वामी जी के इन्हीं बातों को उनके शिष्य भी दोहराते हैं।
4: मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मैं उन्हें पढ़कर आनंदित होता हूं। आपके पास कुछ अच्छे गीत हैं, उन्हें सुनने में ही आपको सुख मिलता है। बिल्कुल सादा भोजन पाकर ही हम मस्त हैं, बड़े साधारण घर में रहकर भी हम सुखी हैं। मामूली वस्त्र धारण करके भी हमारे मन में सुख शांति विराजमान है, क्योंकि हमारा आदर्श रहा है सादा जीवन, उच्च विचार। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, बस हमारे विचार परिष्कृत होने चाहिए।
1: स्वामी जी ने एक व्याख्यान में कहा था,
3: क्या आपने नहीं देखा कि हमारे देवी देवता भी अल्प वस्त्रधारी हैं? उनके शरीर कोट से ढके नहीं हैं और ना ही वे कमीज पहने हुए दिखते हैं, वे बिल्कुल ही सादे वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहां की जलवायु गर्म है, रूस में वर्ष भर काफी ठंड पड़ती है, इसलिए ओवरकोट की भी जरूरत होती है, पर हमें तो कोट की भी शायद ही जरूरत पड़ती है। कोई कह सकता है कि आप बहुत पिछड़े हैं क्योंकि आपके पास कोट नहीं है, परंतु जब भारत में उतने कपड़े की जरूरत ही नहीं तो फिर हम फिजूल के कपड़े क्यों धारण करें? स्वयं को जब जरूरत महसूस नहीं हुई तो हमारे मूर्तिकारों को देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते समय उन्हें कोट पहनाने का ध्यान ही नहीं आया। बाहरी वैभव और आडंबर को महत्व ना देने वाले उन शिल्पकारों ने इस बात का ध्यान जरूर रखा कि देवी देवताओं की मूर्तियों से उनकी सौम्यता, उनका आंतरिक तेज और ऐश्वर्य अवश्य प्रकट हो।
0: हमारे ऋषि कंदराओं गुफाओं में रहते थे, लेकिन वे थे प्रकांड विद्वान, अत्यंत प्रगतिशील। उनके मौलिक प्रबुद्ध विचार अक्षुण्ण हैं, शाश्वत हैं और हमारी अक्षय संपत्ति है। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था,
5: भारत एक विचार है, चिंतन की एक दृष्टि है, एक जीवन दर्शन है।
1: इस विचार को, इस जीवन दर्शन को स्वामी विवेकानंद विदेशों में ले गए। स्वामी जी ने कहा था, मैं घनीभूत भारत हूँ। सचमुच आज से 100 वर्ष पूर्व जब वे अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में सारी दुनिया के कोने कोने से आए प्रकांड विद्वानों और धर्माचार्यों के बीच सनातन धर्म का संदेश सुनाने खड़े हुए, तो वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भारत बोल रहा था।
6: वे स्वामी विवेकानंद नहीं थे, अपितु उनके माध्यम से सारी भौतिकवादी दुनिया को फिर एक बार आध्यात्मिक संदेश सुनाने के लिए प्राचीन गौरवशाली भारत सिमट आया था। उस युवा सन्यासी के होठों से भारत माता की वाणी मुखरित हुई थी, जिन्होंने कहा था,
3: भगवान बुद्ध ने प्राची को संदेश दिया था और मैं पाश्चात्य देशों के लिए संदेश लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे देशों में भौतिक सुख समृद्धि है, लेकिन ये मत सोचो कि मानव जीवन के लिए इतना ही काफी है। खाओ, पियो और मौज करो। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? कदापि नहीं। मानव जीवन ने इंद्रिय सुखों के लिए, सांसारिक वासनाओं के भोग हेतु जन्म नहीं लिया है, अपितु उसका जन्म तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए और सर्वोच्च सत्य प्राप्त होने तक निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर पहुंचने के लिए ही हुआ है।
0: 100 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों को आगाह किया था,
3: मैं देख रहा हूं कि तुम युद्ध की ज्वालामुखी के कगार पर खड़े हो। वो ज्वालामुखी अगले 20 वर्षों में फूट पड़ेगा।
1: संभवतः उन्होंने ये बात 1894-95 में कही थी। 20 वर्ष होते होते मानवता ने 1914 में सर्वप्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका देखी, फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ा, जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी अत्यंत प्रलयकारी था।
3: लड़ाइयां क्यों होती हैं? इसलिए कि हम केवल सांसारिक सुख सुविधा को ही मानव जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। अगर आप कहें कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए जीना चाहता हूं, तो स्वाभाविक रूप से ही मेरे और आपके बीच होड़ लगेगी, विभिन्न राष्ट्रों के बीच जंग छिड़ेगी, तब आपके पास घातक हथियार होंगे और हम उससे भी ज्यादा विनाशकारी हथियार हासिल करने की कोशिश में लगी रहेंगे।
0: राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र इन शब्दों के साथ शुरू होता है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के हृदय में होता है। स्वामी जी कहते हैं,
3: युद्ध मार काट खून खराबा होता ही क्यों है? इसलिए कि युद्ध का बीज ईर्ष्या, लोभ, घृणा, क्रोध, संदेह, अविश्वास के रूप में हृदय में अंकुरित होता है। मैं आपको पसंद नहीं करता तो आपके सर्वनाश की कामना करता हूं। पहले आपके मन में मुझे बर्बाद देखने की इच्छा होती है और फिर आप मेरा सर्वनाश करने पर तुल जाती हैं। पहले बकझक और फिर हाथापाई होती है। मैं आपको मार देना चाहता हूं, आप मुझे मिटा देना चाहते हैं। यह बड़ा सामान्य किस्सा है, सदियों से ऐसा ही होता आया है।
1: पश्चिम को स्वामी जी ने संदेश दिया, जियो और जीने दो। उन्होंने कहा,
3: भारत एक ऐसा देश है जिसने युद्ध की समस्या का हल ढूंढा है और सारी मानवता को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया है। सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली होने के बावजूद इसने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इसकी दृष्टि समग्र रही है और इसने मानवता को एकत्व का बोध कराया है। आप और हम एक हैं, सारा विश्व एक ही मानव परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। फिर किसकी जीत और किसकी हार, किससे द्वेष और किससे घृणा। भारत का संदेश है, सुख शांति चाहते हो तो स्वयं पर विजय प्राप्त करो। भगवान बुद्ध ने कहा है, असली विजेता कौन है? जिसने स्वयं को जीत लिया, यही भारत है।
0: कितना सुंदर विचार है, दूसरों को काबू में करने की चाहत क्यों हो, बस स्वयं को अपने अधीन कर लो। महिमा मंडित प्राचीन भारत का ये अमर संदेश स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को सुनाया। स्वदेश वापस आने पर उन्होंने आह्वान किया,
3: हे भारत, तुम्हें जीवित रहना ही होगा। अपनी रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए।
1: स्वामी जी मात्र हिंदू नहीं थे, मात्र भारतीय नहीं थे, समस्त मानव समाज के मित्र थे। जो कोई भी सत्य की खोज कर रहा है, स्वामी जी उनके साथ हैं।
0: नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, उनके जन्म के 100 वर्ष बाद भी आज विश्व इतिहास की तुला पर उनके महत्व का मूल्यांकन कर पाना अत्यंत कठिन है। किसी पाश्चात्य इतिहासकार अथवा अधिकांश भारतीय इतिहासकारों के लिए भी ये कार्य उनके देहांत के समय जितना कठिन था, अब उससे कहीं अधिक ही कठिन हो गया है, क्योंकि तब से अब तक के अंतराल के वर्षों में होने वाली अनेक विस्मयकारी एवं अप्रत्याशित घटनाओं से ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाली शताब्दियों में, विशेषकर जहां तक एशिया का सवाल है, वे आधुनिक विश्व को गढ़ने वाले लोगों के अन्यतम के रूप में याद किए जाएंगे और भारतीय धर्म के संपूर्ण इतिहास में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोगों में से एक के रूप में गिने जाएंगे, जिनके महत्व की तुलना शंकर और रामानुज के समान आचार्यों से ही हो सकती, परंतु कबीर, चैतन्य और दक्षिण भारत के आलवार एवं नायनार आदि स्थानीय और आंचलिक संतों की तुलना में तो वे निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण थे।
1: महान व्यक्तित्व के प्रति न्याय करने में हम तभी सक्षम होंगे जब हम उनके उन पूर्ववर्तियों के प्रति भी न्याय करें जिन्होंने उनके पहले ही हिंदू धर्म में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ की और जो उनसे होते हुए बाद में श्री अरविंद, महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे शिक्षकों के कार्य के माध्यम से जारी रही। हमें राम मोहन राय का स्मरण करना होगा जो इन सब में अग्रणी थे। अनेक मायनों में उन्होंने अपने बाद के सुधारकों से भी कहीं अधिक पाश्चात्य विचारों, आदर्शों और मूल्यों के साथ समझौता कर लिया था।
0: उन्होंने युक्ति सम्मत विचारों पर आधारित एक तरह हिंदू कृत यूनिटेरियनिज्म, एक व्यक्तिवाद का प्रचार किया, जिसका काफी कुछ उन्होंने अपने ईसाई मिशनरी मित्रों से सीखा था। तदुपरांत देवेंद्रनाथ ठाकुर थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को थोड़ा अधिक ही रहस्यवादी मोड़ दिया। फिर केशव चंद्र सेन हुए जो अपनी आस्था में बड़े उदारवादी थे, व्यवहार में अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक राष्ट्रवादी थे और जिन्होंने ब्रह्म आंदोलन को थोड़ी अधिक भारतीयता प्रदान की, पर साथ ही इसका विभाजन भी किया और इस प्रकार संभवतः इसके द्रुत विघटन में सहायता की।
1: हमें विवेकानंद के अद्भुत गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी स्मरण करना होगा जो एक बड़े सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ लिखा नहीं परंतु अपने काल की बंगाली विचारधारा के संपूर्ण वातावरण पर अद्भुत प्रभाव विस्तारित किया। रामकृष्ण विवेकानंद तथा ईसा मसीह सेंट पॉल की समरूपता में संभव है कोई तात्पर्य निहित हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेकानंद को अपने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत और अपनी अधिकांश प्रेरणा अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई थी, परंतु उन्होंने उन पर अपनी निजी व्याख्या की थी।
0: मेरा विश्वास है कि महान स्वामी विवेकानंद का विश्व इतिहास में सर्वदा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि समकालीन भारतवर्ष के किसी भी अन्य शिक्षक की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से उन्होंने अपने देशवासियों को प्राचीन के साथ अर्वाचीन का सामंजस्य करना सिखाया था।
1: अपनी पीढ़ी के किसी भी आचार्य से कहीं अधिक विवेकानंद ने भारतवर्ष को स्वाभिमान सिखाया, अपने देशवासियों को अपनी परंपरागत संस्कृति, अपने परंपरागत मूल्य और अपना परंपरागत जीवन दर्शन अपनाने की कहीं अधिक प्रेरणा दी। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वैसा ही ग्रहण मत करो, वरन आवश्यकता अनुसार उन्हें गढ़ लो, बदल लो, सूखी डंठलों को काटकर नई शाखाएं उगा लो, पाश्चात्य और अन्य स्रोतों से ग्रहित नवीन विचारों को यहां वहां आरोपित कर लो, पर ध्यान रखो कि मूल वृक्ष जीवंत और समृद्ध बना रहे। इस कार्य के लिए भारतवर्ष अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा स्वामी विवेकानंद का कहीं अधिक ऋणी है।
0: और जो महान नेतागण उनके कार्य को अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाते रहे, वे सभी अधिकांशतः अपनी प्रेरणा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकानंद के ऋणी हैं। महात्मा गांधी भी मूलभूत प्राचीन हिंदू शरीर में अभिनव विचारों को आत्मसात करने तथा उन्हें पूर्णतः स्वाभाविक रूप देने में अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हैं।
1: विवेकानंद ने अपने देशवासियों को अपनी विरासत पर लज्जित होना त्याग कर गर्व करना सिखाया, ऐसे विचारों से विरत किया कि हमारी आस्था बड़ी दुर्व्यवस्था को प्राप्त हो गई है, जरा सती प्रथा को तो देखो आदि आदि। और यही नहीं, उन्होंने भविष्य के लिए आशावादी होना भी सिखाया। उन्होंने पीछे मुड़कर सुदूर अतीत की ओर, पौराणिक सत्य युग की ओर न देखते हुए भविष्य में उसकी पुनः स्थापना की संभावना पर ध्यान देने का आह्वान किया और कहा कि हम अपनी गुलामी की मनोवृत्ति के वशीभूत हो अपने अल्पकालिक शासकों का अंधानुकरण न करके केवल उनमें जो कुछ अच्छा हो उसी को ग्रहण करें, जो कुछ आवश्यक हो वही उनसे सीखें।
0: विवेकानंद के संदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य ये है कि उन्होंने निर्धनों और पीड़ितों की सेवा को मानव के मूलभूत धार्मिक कर्तव्यों में से एक बताकर एक नया ही पथ प्रशस्त किया। हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु और केशव चंद्र सेन ने भी इस दिशा में उनके पहले कुछ कदम उठाए हों। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदू धर्मग्रंथ अपने मानव भाइयों के प्रति ऐसी व्यवहारिक स्नेहपूर्ण सेवा पर बल नहीं देते, वे निश्चय ही देते हैं। प्राचीन भारत के और विशेषकर दक्षिण के धर्म ग्रंथों के कई उद्धरण और उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां इस सद्गुण पर विशेष बल दिया गया है, और जिन्हें ईसाई धर्म ग्रंथों के ऐसे ही संदेश देने वाले अनेक सुप्रसिद्ध अंशों के समकक्ष रखा जा सकता है। परंतु भारत में इस क्षेत्र में विवेकानंद ही महात्मा गांधी के एक ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती थे जिन्होंने निर्धनों एवं पीड़ितों के कल्याणार्थ विधेयात्मक सेवा कार्यों को बढ़ावा दिया।
1: विवेकानंद विश्व इतिहास में अपने उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी सदा स्मरण किए जाएंगे जिसे स्वर्गीय डॉक्टर C.E.M. जोड ने एक बार द काउंटर अटैक फ्रॉम द ईस्ट यानी प्राच्य का प्रति आक्रमण कहा था। प्रायः 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए भ्रमण करने वाले भारतीय धर्म प्रचारकों के बाद आधुनिक काल में विवेकानंद ही सर्वप्रथम एक ऐसे धर्म शिक्षक हुए जिन्होंने भारत के बाहर प्रभाव विस्तार किया।
0: यहाँ पर हम केशव चंद्र सेन के रूप में एक छोटा सा अपवाद पाते हैं जिन्होंने लंदन तथा अन्य स्थानों में कुछ व्याख्यान दिए परंतु उनका प्रभाव नगण्य था। पश्चिम में उन दिनों पहले से ही ऐसे लोग थे जहां हिंदू धर्म की महिमा और उसमें निहित सौंदर्य की थोड़ी समझ थी और वे उसके प्रति प्रशंसा का भाव भी रखते थे। परंतु आधुनिक जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक भारतीय ने भारत की सीमा के बाहर जाकर शिक्षा दी और वे अपने व्यक्तिगत आकर्षण, गहन आध्यात्मिक भाव तथा अद्भुत वाग्मिता के द्वारा पाश्चात्य लोगों को अपने अनुयायियों के रूप में भारत लाकर उन्हें अपने कार्य में नियोजित करने में समर्थ हुए।
1: संपूर्ण विश्व अथवा कम से कम इसके धार्मिक लोग तो अवश्य ही अब अधिकाधिक अनुभव करने लगे हैं कि अन्य धर्म के लोग भी अपने अपने तरीके से वही युद्ध लड़ रहे हैं जिसे पारसी लोग प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई कहा करते हैं।
0: ईसाई, हिंदू, बौद्ध और सैद्धांतिक दृष्टि से जगत के शांतिप्रिय अधिकांश धर्मों में एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन की तुलना एक सैनिक से की गई है और कई दृष्टियों से ये ठीक भी है। अतः इस उपमा को अब यदि हम और भी आगे बढ़ाएं तो भले ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य धर्मों के लोग स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी सेनाओं के तौर तरीकों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर वे अब अन्य धर्म के लोगों को अपना शत्रु मानने के बदले अपना मित्र मानने के अधिकाधिक तैयार होने लगे।
1: इस प्रकार विविध धर्मों के बीच आपसी मित्रता स्थापित करने का प्रयास करने वालों में अग्रगामी होने के कारण ये संसार स्वामी विवेकानंद का महान ऋणी है। स्वामी विवेकानंद के संदेश को सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत करने के लिए संभवतः उन्हीं के लेखन में से उदाहरण देना उचित होगा।
3: हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। और ये रही सत्य की कसौटी, जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वो पवित्रता है, वो ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वो है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। अब वीर्यवान होने का प्रयत्न करो, कमजोर बनाने वाली इन सब रहस्य विद्याओं को तिलांजलि दे दो। सत्य जितना ही महान होता है उतना ही सहज बोध गम्य भी होता है, स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज।
0: हमें उनके वो महान विचार भी याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था,
3: जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े, और जिस विराट को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही ना करें। सबसे पहले जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी।
1: ये वाक्य संपूर्ण मानव जाति की एक विस्मयकर और लज्जास्पद टीका है, और ये और भी एक तरह से उतने ही सत्य है जितने की स्वामी जी के व्याख्यान के समय थे। मानव जाति के पुनर्जागरण के लिए, निर्धनों के उत्थान के लिए और प्रत्यक्ष दिखने वाले मानवीय दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए विवेकानंद ने जो 50 वर्ष का समय दिया था वो अब बीत चुका है, पर आज भी जगत में शायद उतने ही मानवीय दुख और संताप बने हुए हैं। अंत में स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म महासभा में प्रदत्त अंतिम व्याख्यान में से उन सुप्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी शब्दों को दोहराना चाहिए जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति बना दिया था।
3: वो जो हिंदुओं का ब्रह्मा, पारसियों का अहुरमज़्द, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको शक्ति प्रदान करे। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना चाहिए और ना हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हां प्रत्येक को चाहिए कि दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करें और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र पुरुषों को जन्म दिया है। शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत, प्रभाव ग्रहण ना कि प्रभाव विनाश, समन्वय और शांति ना कि मतभेद और कलह।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।